0: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए अनमोल विचार।
1: लोभ मनुष्य को वो भी पाने की चाह देता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकताएं सीमित हैं, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं होती। अधिक पाने की लालसा हमें मिली हुई खुशियों और संतोष से दूर कर देती है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ संतोष, ईमानदारी और संयम को भी अपनाना चाहिए। याद रखें, सच्ची समृद्धि अधिक पाने में नहीं बल्कि जो मिला है उसमें संतुष्ट रहने में है।
0: और अब लीजिए सुनिए भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम में पहले लीजिए सुनिए एक मात्र वंदना।

0: भाई अमरीक सिंह जख्मी की गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 5:55 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा और लाभप्रद व्यवसाय है, जिसे कि आप एक सह व्यवसाय के रूप में खेतीबाड़ी के साथ भली भांति अपना सकते हैं। इससे जहां खाने के लिए अंडे व मांस की प्राप्ति होती है, जो कि पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, वहीं आपको इससे अतिरिक्त आय भी मिलता है। मुर्गी पालन से आपके व आपके परिवार के अन्य सदस्यों की श्रम शक्ति का भी भरपूर उपयोग होता है। पर जैसा कि अन्य व्यवसायों के साथ होता है, सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता के लिए आपको उन कारणों व उनसे बचाव के

0: विषय में ज्ञान होना जरूरी है जो कि असफलता की ओर ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, मुर्गी पालन की सफलता के लिए आज हम आपको मुर्गियों की एक भयंकर बीमारी रानीखेत के लक्षण, कारण व बचाव के संबंध में जानकारी देंगे। रानीखेत मुर्गियों का सबसे भयंकर रोग है और इसके प्रकोप से कभी कभी 100% मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। ये रोग प्रायः सभी आयु की मुर्गियों में पाया जाता है, लेकिन चूजे ही मुख्यतः इनका शिकार बनते हैं। चूजों में जब ये रोग लग जाता है तो वे बहुत सुस्त नजर आते हैं, उनके पंख मुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं और आंखें बंद हो जाती है। उनको भूख नहीं लगती तथा सांस लेते समय कभी कभी सीटी की सी आवाज भी निकलती है। साथ ही चूजे मुंह से जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और पीले रंग की दस्त करते हैं। प्रायः ऐसे चूजे गर्दन हिलाते नजर आते हैं और रोग बढ़ने से चूजे मरने लगते हैं। इस रोग के मामूली आक्रमण से जो चूजे बच जाते हैं उनके डैनों, गर्दन व टांगों को लकवा मार जाता है। मुर्गियां इस रोग से ठीक हो जाने के बाद स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन वे आमतौर पर अंडे नहीं दे पाती। कभी कभी मुर्गी की गर्दन पीछे की ओर मुड़ जाती है। रोग की भयंकर अवस्था में चूजे इस बीमारी के केवल कुछ ही लक्षण दिखाई पड़ते ही मरने लगते हैं, पर प्रौढ़ पक्षी प्रायः देर से मरते हैं। किसान भाइयों, ये रोग विषाणुओं के कारण होता है और ये रोग मुर्गी घरों में जंगली चिड़ियों, कबूतरों, नई मुर्गियों, कौओं या देखभाल करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से पहुंचते हैं। झुंड में एक बार रोग के आरंभ हो जाने पर ये रोगी पक्षियों के थूक, बीट आदि से स्वस्थ पक्षियों में तेजी से फैलता है। इस रोग से मुर्गियों के बचाव का एकमात्र तरीका इसके रोकथाम का ही है। एक बार इस रोग के लग जाने पर इसका कोई इलाज नहीं है। इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है चूजों को रानीखेत का टीका लगवाना। आप एक दिन के चूजों को RD1 व 8 सप्ताह पर RD2 का टीका लगवाना कदापि न भूलें। यदि किसी चूजे या प्रौढ़ पक्षी में कोई असाधारण बात दिखाई पड़े तो उसे तुरंत ही समूह से अलग कर दें और ऐसे पक्षी को किसी सूखे स्थान पर अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि स्वस्थ पक्षी उसके संपर्क में न आने पाएं। जिस बाड़े में रोग फैला हो उसे कुछ महीनों तक खाली छोड़ दें और बाद में कीटाणुनाशक दवाओं के छिड़काव के बाद ही मुर्गियों को वहां रखना शुरू करें। पक्षियों के मरने पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर उन्हें दूर गड्ढों में दबा दें।
1: एग्री टिप्स, अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में

0: पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है। आयोग ने पार्टी के दोनों प्रतिद्वंदियों गुटों को उपचुनाव में इनका इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। आयोग ने ममता बनर्जी और अरूप राय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से आज सुबह 11 बजे तक अपने अपने समूह के लिए तीन नाम और तीन मुक्त चुनाव चिन्ह प्राथमिकता के क्रम में देने को कहा है। आयोग इनमें से एक नाम और एक चुनाव चिन्ह को मंजूरी देगा। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान सौंपेगी। कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्सट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उपस्थित होंगे। इन विमानों को शामिल करना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूसी थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता का विकास को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका सहित कई देशों से ऊर्जा खरीदता है। एशियाई खेल 2026 में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान से आज सुबह 10:30 बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से पराजित किया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल। Prime Minister Narendra Modi has positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi yesterday.
0: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल शनिवार 19 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी रविवार 20 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैंबल बे रविवार सुबह 9 बजे

श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जहाज उसी रोज रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार के लिए रविवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जहाज की वापसी सोमवार 21 तारीख को शाम 4 बजे कार निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा तेरेसा और नानकौरी होते हुए कैम्बल बीक की यात्रा पर बृहस्पतिवार 24 तारीख को श्री विजयपुरम से चलेगा। ये जहाज 27 सितंबर को सुबह 8 बजे कैम्बल बे से छूटकर इन्हीं मार्गों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। नालंदा जहाज मंगलवार 22 तारीख को सुबह 9 बजे नानकौरी होते हुए कैम्बल बे के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी 24 सितंबर को सुबह 8 बजे कैम्बल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

सुबह 9 बजे नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी 24 सितंबर को सुबह 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी।

एमवी जॉलीबॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर बाद 1 बजे ये जलयान शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा। वापसी कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल यानी 19 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी कमोटा शहीद द्वीप के लिए कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी होगी सुबह 8:30 पर। स्वराज द्वीप के लिए एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी रंगत कल सवेरे 7 बजे शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए श्री विजयपुरम से छूटेगा। वापसी अगले रोज यानी 20 तारीख को सवेरे 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी जॉलीबॉय कल दिन में 11 बजे शहीद द्वीप के लिए श्री विजयपुरम से रवाना होगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए चलेगा तथा इसकी वापसी स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए कल ही दोपहर बाद 2:30 पर होगी। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी प्रस्तोता फातिमा। प्यारे श्रोताओं, जिंदगी में हम सब कोई ना कोई सपना जरूर देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ही उस सपने को दीवानगी की आखिरी हद तक चाहकर उसे पूरा कर पाते हैं। किसी सपने को शिद्दत से चाहना और उसे पाने के लिए जुनून, लगन, हिम्मत और अपने लक्ष्य को पाने की जिद ही तो दीवानगी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब कोई चाहत इतनी गहरी हो जाए कि वो हमारे सोचने, समझने और जीने का एक खास हिस्सा या मकसद बन जाए तो उसे दीवानगी कहते हैं, और उस दीवानगी की जुनून दिल में आग बनकर जलता है, रातों की नींद और दिन का चैन और सुकून छीन लेता है और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है।

किसी ने क्या खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ श्रोताओं, ये बात बिल्कुल सही है कि दिल में जुनून हो, दीवानगी की हद हो, तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं, वरना मुश्किलें तो हर कदम पर बाहें खोले खड़ी मिलती है। हम सब ने सुना है कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, क्योंकि शायद यही दीवानगी की खूबसूरती और जुनून की आखिरी हद है। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं होता, उसे पाने की दीवानगी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि जब चाहत के साथ मेहनत, जुनून के साथ धैर्य और सपनों के साथ हौसला जुड़ती है, तो मुश्किल से मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।

0: प्यारे श्रोताओं, आज की खूबसूरत मुलाकात में हमने जाना कि दीवानगी सिर्फ पागलपन नहीं बल्कि एक ऐसा जुनून है जो जीवन को एक सधा हुआ मकसद देता है। बस जरूरत है अपनी दीवानगी को सही दिशा देने की। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम इंद्रधनुष सुन रहे थे, प्रस्तुत कर रही थी फातिमा। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 365वीं कड़ी।

अवधपुरी में स्वयं भगवान राजा रामचंद्र के रूप में विराजमान हैं। नारद सनकादि मुनीश्वर नित्य प्रति उनके दर्शनों के लिए अयोध्या आते हैं और नगरी की शोभा देख अपना वैराग्य भूल जाते हैं। घरों में जब मणियों के दीप प्रज्वलित होते हैं तो मूंगों से निर्मित देहरियां चमक उठती हैं। पन्नों से जड़ी सोने की दीवारों को मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। नगर निवासियों ने सुंदर उद्यान लगाए हैं जिनमें अनेक प्रकार की लताएं वसंत ऋतु की सुषमा बिखेरती रहती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा के रूप में विद्यमान हों, वहां के हाट बाजार की शोभा का वर्णन

अभी आप शोभना राव की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 365वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:40 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए गांधी चर्चा।

नमस्कार श्रोताओं, गांधी चर्चा में बातें शांति दूत गांधी की। श्रोताओं, उन दिनों गांधी जी कोचरब वाले आश्रम में रहते थे। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय। जैन विद्वान सुखलाल जी उनसे मिलने के लिए आए। उस समय वहां दीन बंधु एंड्रूस आदि और कई व्यक्ति थे। पंडित सुखलाल जी के साथ भी कई मित्र थे। बातों ही बातों में गांधी जी ने पंडित जी से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? पंडित जी ने जवाब दिया, पाटन से। गांधी जी ने पूछा, पाटन तो सिद्धपुर के पहले आता है ना? पंडित जी ने जवाब दिया, नहीं, पाटन मुख्य लाइन पर नहीं है, मित्राणा से जाने वाले ब्रांच लाइन पर है। गहरे अचरज में डूबकर गांधी जी बोले, ऐसा? फिर कई क्षण तक वह जैसे मंथन कर रहे हो मौन ही रहे। फिर बोले, ओह, मेरे अज्ञान

कभी कुछ पार है। उसके बाद उन्होंने उस प्रदेश का नक्शा निकाला और सब रेलवे लाइन देख डाली। श्रोताओं, गांधी जी बैठे हुए थे, आसपास और भी नेता बैठे हुए थे, गंभीर मंत्रणा चल रही थी। एक छोटी सी काली चींटी बापू के पेट पर दिखाई देती है। बापू जगजीवन राम उसे देखते हैं। वह ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है, फिर घूमकर पीछे जाती है, फिर ऊपर गले के पास आ जाती है। बाबू जगजीवन राम देख रहे हैं। उनके मन के भीतर एक जिज्ञासा जाग आई। देखें, बाबू की अहिंसा की कसौटी क्या है? वह इस चींटी के साथ अब क्या करते हैं? इसलिए वह चींटी की ओर से अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते। लेकिन बाबू क्या बिल्कुल अनभिज्ञ हैं? वह सब कुछ देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि बाबू जगजीवन राम की दृष्टि चींटी पर से हटाए नहीं हटती और उनके अंतर पर एक प्रश्न कौंद रहा है। वह धीरे से अपना हाथ हटाते हैं और गले पर रेंगते हुए चींटी की ओर और भी धीरे धीरे से हटा देते हैं। तभी सहसा जगजीवन राम उनकी ओर देखते हैं, वह भी देखते हैं, दोनों की दृष्टि मिलती है। जगजीवन राम अपने प्रश्न का उत्तर पाकर मुस्कुरा देते हैं और गांधी जी हंस पड़ते हैं। ये हंसी बाबू राजेंद्र प्रसाद का ध्यान आकर्षित करती है। वह पूछते हैं, क्या बात है? गांधी जी बाबू जगजीवन राम की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, इनसे पूछो। जगजीवन राम चींटी की कहानी बताकर कहते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि बापू के मन में संघर्ष चल रहा है कि चींटी को हटाऊं या नहीं। उसको अपने शरीर पर से हटा देने की क्रिया से उसे कष्ट पहुंचेगा, क्या वो हिंसा नहीं मानी जाएगी? ये सुनकर गांधी जी बड़े जोर से हंसे और फिर हंसकर बोले, तुम्हारा अंदाज ठीक ही है। गांधी जी के जर्मन मित्र क्लैनबैक को दूरबीनों का बहुत शौक था। 2-3 बहुमूल्य दूरबीनें वह सदा अपने पास रखते थे। इस बात को लेकर गांधी जी से उनकी रोज ही बहस होती थी। गांधी जी उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करते कि इस प्रकार बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास रखना हमारे आदर्श के, विशेषकर उस सादा जीवन के जिसका हमने व्रत लिया है, बिल्कुल अनुकूल नहीं है। एक बार दोनों समुद्र से यात्रा कर रहे थे। सहसा इस विषय को लेकर फिर गर्मा गर्मी बहस हो उठी। उस समय वे दोनों कैबिन की खिड़की के पास खड़े हुए थे। सहसा गांधी जी ने कहा, आपके और मेरे बीच इस प्रकार झगड़े हो, इससे तो यही अच्छा कि दूरबीन को समुद्र में फेंक दिया जाए और फिर कभी इसकी चर्चा न की जाए। श्री क्लैनबैक ने तुरंत उत्तर दिया, जरूर इस झगड़े की जड़ को फेंक ही दीजिए, मानो जैसे उनको परख रहे हो। गांधी जी ने फिर कहा, देखो मैं फेंके देता हूँ। क्लैनबैक ने उसे दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं सच कहता हूँ, फेंक दीजिए। और गांधी जी ने दूरबीन फेंक दी और उस समय उसका मूल्य 7 पाउंड था, परंतु उसका मूल्य उसके दामों में नहीं बल्कि श्री क्लैनबैक के उसके प्रति जो मोह था उसमें था। फिर भी उन्होंने इस बात के लिए अपने मन को कभी दुखी नहीं होने दिया। खादी प्रचार के संबंध में भ्रमण करते हुए गांधी जी ढाका गए थे। एक दिन संध्या के समय क्या हुआ कि एक 74 साल का बूढ़ा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह 30-40 मील चलकर आया था और उनके दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल हो रहा था। सामने आते ही उसने कहा, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। ये सोचकर कि वह जल्दी चला जाएगा, गांधी जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया, लेकिन वह तो भावावेश में आ गया, चरणों में लोट लोट कर रोने लगा। सब विस्मित विमूढ़ से खड़े थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। उस वृत्त के गले में गांधी जी और बा की तस्वीर लटक रही थी। हृदय का तूफान निकल जाने पर जब वह शांत हुआ तो बोला, मैं नाम शुद्र हूँ, मुझ पर आपकी कैसी कृपा है। 10 साल पहले मेरे पैर रह गए थे, कितनी दवाइयां की, परंतु बिछौने से उठ ना सका। भगवान से मौत के लिए प्रार्थना करता रहता था, फिर आपका नाम लेने लगा। अब देखिए चलने फिरने लगा हूँ, कोई दवा दारू नहीं की, बस आपका नाम लिया है। इतना कहकर वह फिर पैरों में लोटपोट होने लगा। उसे मना करते हुए गांधी जी बोले, भाई भगवान का भजन करो, उसी ने तुम्हें चंगा किया है। गांधी के पास किसी को चंगा करने की करामत नहीं है। एक सज्जन ने एक बार गांधी जी से पूछा, बहुत से व्यक्तियों का ये विचार है कि आपका ये आश्रम नाना प्रकार के मनुष्य के नमूनों का

अजायब घर अथवा पागलखाना है, इस बारे में आपका क्या विचार है? गांधी जी बोले, इस पागलखाने का सरदार कौन है, मैं या दूसरा और कोई? तुम ही बताओ, सेवाग्राम आश्रम में सयाने लोग कितने हैं? उन सज्जन ने उत्तर दिया, जितने विवाहित हैं, जैसे महादेव भाई, किशोरलाल भाई, नरहरि भाई और बा। गांधी जी बोले, अच्छा यही सही, लेकिन इन सब का सरदार तो मैं ही हूं ना, तब मैं सयानों का सरदार भी हुआ ना। मुझे तो ये उपाधियां सम्मान रूप से प्रिय है। सहसा वे गंभीर हो उठे, बोले, तुम्हारी बात सच है, ये आश्रम पागलों की प्रयोगशाला के रूप में पहचाना जाए तो इसमें छोटेपन का अनुभव नहीं होना चाहिए। सचमुच मैं यहाँ भांति भांति के प्रयोग करके जीवन के सत्यों को परखता हूँ। तुमने जिन तरह तरह के नमूनों की बात कही है, उनके साथ मुझे दिन रात अपने मन और मस्तिष्क को ठंडा रखकर व्यवहार करना पड़ता है, गम खाना होता है, ये सब मेरे प्रयोग ही तो हैं। तो श्रोताओं, आज बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर हमारी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं के लिए मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक या दो स्थानों पर हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। मछुआरों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि अंडमान व निकोबार तटों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जो बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। मछुआरों को 20 सितंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कल शाम तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी सुबह 7 बजे सुनिए जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। 7:15 पर विविध भारती मुंबई से सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ठीक उसी समय प्राइमरी चैनल पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम देश रागिनी। गुड मॉर्निंग अंडमान में सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम आप 100.9 विविध भारती FM पर भी सुन पाएंगे। कार्यक्रम सुगम संगीत के तहत सुबह 8:30 कलाकार होंगे कमलिनी मल्होत्रा और प्रद्युम्न शर्मा। श्रोताओं, आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रृंखला, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10:00 दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। दिन में 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

दिन में 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम के तहत सुनिए कुछ लोकगीत। तेलुगु में दोपहर 12 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:30 पर मलयालम में अन्य कार्यक्रमों के अलावा कुछ फिल्मी गीत सुनवाए जाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम के तहत कव्वाल होंगे यूसुफ आज़ाद, शाहिदा बानो और रानी रूपलता। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के पश्चात प्राइमरी चैनल पर हमारे कार्यक्रमों की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके तहत 2:30 पर लाइव फोन आउट प्रोग्राम होगा हेलो डियर फ्रेंड्स, तथा 3:30 फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें एक ही श्रोता के पसंद पर गाने सुनवाए जाएंगे। 5:30 बांग्ला कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और शरद चंद्र चैटर्जी की जयंती पर चर्चा की जाएगी। कृषि जगत कार्यक्रम 6:00, जिसमें डॉक्टर कमल शर्मा से बातचीत का विषय रहेगा मछली पालन, तालाबों का निर्माण कुछ सुझाव। 6:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंगिणी, 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी आप सुन पाएंगे। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जनसूचनाएं 7:15 पर। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युववाणी के तहत 7:30 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा हेलो फ्रेंड्स, तथा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर चर्चा की जाएगी। 8:30 आप सुनेंगे रोजगार समाचार और गौरव गान, और रात्रि 10:00 व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:00 जापान में खेले जाने वाले 20वें एशियाई खेलों पर पूर्वालोकन कार्यक्रम, रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, तथा रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम करंट अफेयर्स हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, जबकि रात 10:00 100.9 विविध भारती FM पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने, और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: ततः परं कार्यक्रमस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् सेमिकॉन 2.0 इति पारिस्थितिकतन्त्रस्य अन्तर्गतम् अद्यावधि प्रायः 1,00,000 कोटि रूप्यकाणां निवेश सम्बद्धाः प्रतिबद्धताः प्राप्ताः सन्ति। भाजपेति दलेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः 76वें जन्मदिवसस्य उपलक्ष्ये ह्यः मासैकपर्यन्तं प्रवर्तमानस्य राष्ट्रव्यापिनः सेवा संकल्पाभियानस्य शुभारम्भः कृतः। अस्य अभियानस्य मुख्योद्देश्यं जनसेवायां प्रधानमन्त्रिणः प्रतिबद्धतां प्रकाशयितुं तथा जनान् विशेषतः युवकान् सेवाकार्येषु प्रवर्तयितुं प्रोत्साहयितुं च अस्ति। अनेन अभियानेन गुजरात राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण श्रीमोदिनः 1,00,000तम वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 7वें दिनांके शपथग्रहणस्य 25वर्षपूर्तिरपि स्मर्यते। अभियानम् आगामी मासस्य 17वें दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। विदेश मंत्रालयेन पारपत्र संशोधन नियमाः 26/26 इति अधिसूचिताः, येन 80-90वर्षस्य पारपत्र नियमेषु संशोधनं कृतमस्ति। संशोधनानुसारं 15 वर्षात् न्यून वयस्काय बालकाय प्रदत्तं 36 पृष्ठयुतं साधारण पारपत्रं 5 वर्षपर्यन्तं उतवा तस्य 18 वर्षवयः प्राप्तिपर्यन्तं एतयोः यत् पूर्वं भवति तत् पर्यन्तं वैधं भविष्यति। अमेरिका देशे भारतस्य राजदूतः विनय मोहन क्वात्रा उक्तवान् यत् भारतं विश्वस्य शीघ्रतम वर्धमानासु प्रमुखासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमं तथा ऊर्जसः तृतीयः बृहत्तमः उपभोक्ता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः थिम्फू नगरे भूटान नरेशेन जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे डॉ जयशंकरः उक्तवान् यत् भारत भूटानयोः मध्ये विद्यमानां विशिष्टां मैत्रीम् इतोऽपि सुदृढीकर्तुं भूटान नरेश द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शनं महत्वपूर्णमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ नवदिल्ल्याम् आयोजिते तृतीये 20-20 अन्ताराष्ट्रिय द्वन्द्वे भारतेन अफगानिस्तान दलं 27.1 शत धावनांकैः पराजित्य त्रिस्पर्धात्मिका श्रृंखलायां सर्वासु तिसृषु स्पर्धासु विजयः अधिगतः इति वार्ताः।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं जन सूचनाएं। आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा 30.6 मिलीमीटर हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 97% और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 5:09 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:18। और अब एयर इंडिया से प्राप्त सूचना। दिल्ली से आ रहा विमान 2937 दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा तथा श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए विमान संख्या 2936 ग्यारह

श्रोताओं, आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन सेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष श्रृंखला, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

सवेरे 10 बजे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग आप सुन पाएंगे। जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।

द्वीपों के उपराज्यपाल डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कल स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से कल आशा मानदेय और बकाए राशि के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मॉडल कल्याण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और CFO नाला स्टील बेली ब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र 20 से 29 सितंबर तक सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल गर्ल्स स्कूल के सभागार में आयोजित एक समारोह में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद विष्णु पद्रे, मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती, प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, छात्र और नागरिक उपस्थित थे। इस वर्ष के अभियान की थीम स्वच्छता ही सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत है। कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के तहत द्वीप समूह को श्रेष्ठ अंडमान में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। भगवान विश्वकर्मा को दिव्य शिल्पकार और निर्माता के रूप में याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसर सभी समुदायों को एकजुट होकर विकास कार्यों के लिए प्रार्थना करने का अवसर देता है। उन्होंने

0: पेयजल संकट को दूर करने, बिजली, परिवहन, सस्ती हवाई सेवाओं, स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने द्वीपों में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी बल दिया। उपराज्यपाल ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनज़र पर्यटन स्थलों पर सफाई और 2 अक्टूबर को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण और कचरा न फैलाने की शपथ लेने की अपील की। उन्होंने सेलुलर जेल के स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अंडमान निकोबार को शहीदों की पवित्र भूमि बताया। उपराज्यपाल ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए छात्रों के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर दौरे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपराज्यपाल, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वयं स्वच्छता श्रमदान में भाग लेकर सफाई अभियान का नेतृत्व किया। इस अवसर पर सांसद ने स्वच्छ भारत अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि द्वीपों में जनभागीदारी और निरंतर प्रयासों से सिंगल यूज प्लास्टिक बैग के उपयोग में भारी कमी आई है। ये स्वच्छता अभियान 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल लोक निवास में वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पारंपरिक पूजा अर्चना की। इसके पश्चात उन्होंने चाथम सॉमिल में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में विकास और निर्माण कार्य बेहतर और प्रभावी ढंग से किए जाएंगे। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बढ़ाए गए आशा मानदेय और बकाए राशि के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सांसद विष्णुपद रे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सांसद ने आशा कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई मानदेय राशि और बकाए के भुगतान का प्रतीकात्मक चेक प्रदान किया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की निष्ठा और जन स्वास्थ्य प्रणाली तथा समुदाय के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं के समर्पित योगदान को देखते हुए उनके मासिक मानदेय को बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। द्वीपों में कुल 106 सक्रिय आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। हिंदी पखवाड़ा के सिलसिले में आज सुबह 10 बजे टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में प्रशासन के विभिन्न विभागों, कार्यालयों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पणी एवं आलेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: अब श्री विजयपुरम में हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलीघट लेकर आया है। महिलाओं के लिए विशेष स्त्री रोग एवं आधुनिक अल्ट्रासाउंड सेवाएं एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग एवं निसंतानता संबंधी परामर्श के लिए उपलब्ध है गायनेकोलॉजिस्ट एवं इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। माहवारी की समस्या PCOS, गर्भावस्था की देखभाल, गर्भधारण में कठिनाई तथा महिलाओं की अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध है। साथ ही आधुनिक अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर सेवाएं, प्रेगनेंसी स्कैन, एनोमली स्कैन, एब्डोमेन पेल्विस अल्ट्रासाउंड एवं डॉपलर स्टडीज। तो देर न करें, अपने स्वास्थ्य को दें विशेषज्ञ देखभाल। आज ही अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें 9933219444 या 89000914124। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, अनन मार्ग रोड, जुंगलीघाट, श्री विजयपुरम।
0: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्देशानुसार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मॉडल कल्याण योजना के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भवन एवं अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंजीकृत लाभार्थियों और उनके आश्रितों के कौशल को अपग्रेड करना है। ये कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क है। इच्छुक लाभार्थी अपने पसंदीदा ट्रेड का उल्लेख करते हुए अपना आवेदन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पते पर जमा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के साथ सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

2014 में देश की बागडोर संभाली। सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने की सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए माई गोव प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी की सुनिश्चित किया जा सके। सीएफओ नाला स्टील बेलीब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र 20 सितंबर से 29 सितंबर तक 10 दिनों की अवधि के लिए पुल पर आवाजाही और सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मध्योत्तर अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यपालक अभियंता को स्टील बेलीब्रिज का मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पौंडचेरी विश्वविद्यालय अंडमान कॉलेज में NEP और CBCS पाठ्यक्रम के तहत नवंबर दिसंबर माह में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण के इच्छुक छात्र आज से 5 अक्टूबर तक कॉलेज के परीक्षा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय

0: 20 सितंबर से 29 सितंबर तक 10 दिनों की अवधि के लिए पुल पर आवाजाही और सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मध्य उत्तर अंडमान के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कार्यपालक अभियंता को स्टील वैली ब्रिज का मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पौंडचेरी विश्वविद्यालय अंडमान कॉलेज में NEP और CBCS पाठ्यक्रम के तहत नवंबर दिसंबर माह में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं आयोजित करेगा। इस परीक्षा के लिए पंजीकरण के इच्छुक छात्र आज से 5 अक्टूबर तक कॉलेज के परीक्षा प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी कर दी है। परीक्षार्थी इसे UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। उद्योग निदेशालय ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तथा GIZ के सहयोग से श्री विजयपुरम के लिए सिटी लॉजिस्टिक प्लान तैयार करने के उद्देश्य से एक दिवसीय किक ऑफ एवं हितधारक ओरिएंटेशन कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें शहर की लॉजिस्टिक्स चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, एजेंसियों और हितधारक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के साथ इसके तालमेल और द्वीप समूह के लिए इसके संभावित लाभों की जानकारी दी गई। अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष रंगलाल हलदर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल लोक निवास में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने द्वीप समूह से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उपराज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को उठाए गए सभी मुद्दों पर शीघ्र ध्यान देने और उनका जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल और अन्य पार्टी सदस्यों ने भी लोक निवास में उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने कल स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से कल आशा मानदेय और बकाया राशि के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए मॉडल कल्याण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और CFO नाला स्टील वैली ब्रिज के मरम्मत कार्य के मद्देनज़र 20 से 29 सितंबर तक सड़क बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7:15 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागिनी।

श्रोताओं, कार्यक्रम देश रागिनी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, दुनिया में खूबसूरत जगह तो बहुत हैं, लेकिन अपने देश की बात ही अलग है। भारत की मिट्टी, इसकी संस्कृति और इसकी विविधता इसे सबसे खास बनाती है। यही वजह है कि हर भारतीय के दिल में अपने देश के लिए एक खास जगह है।

कल से हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए नई सोच और नए सपनों की ज़रूरत होती है। जब हम साथ चलते हैं तो आने वाला कल और भी खूबसूरत बन जाता है। श्रोताओं, देश प्रेम की भावना उम्र नहीं देखती। बचपन से ही अगर दिल में देश के लिए सम्मान और कुछ करने का जज्बा हो, तो यही भावना आगे चलकर हमारी ताकत बनती है।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह की 7:30 हुए हैं और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

श्रोताओ नमस्कार, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी किसी दिन की खासियत इस बात में नहीं होती कि उस दिन क्या नया हुआ, बल्कि इस बात में होती है कि हम अपने आसपास की जानी पहचानी चीज़ों को आज किस नज़र से देखते हैं। आज की सुबह भी ऐसी ही कुछ बातों के साथ शुरू करते हैं। काम में बराबरी, प्रकृति में बांस और जीवन में पानी, तीनों अलग हैं लेकिन तीनों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। मैं हूं श्रीविद्या। श्रोताओं, आज 18 सितंबर है और आज दुनिया भर में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इंटरनेशनल इक्वल पे डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाने का निर्णय वर्ष 2019 में लिया था और इसे हर साल मनाने की शुरुआत 2020 में हुई थी। इस दिन का मूल संदेश है समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन। इसका मतलब केवल एक जैसे काम के लिए समान वेतन नहीं,

की अलग अलग काम होने पर भी अगर उन कामों का मूल्य समान है तो उनके लिए उचित और समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करना है। महिलाओं और पुरुषों के बीच वेतन के अंतर को कम करना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना भी इस दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आखिर काम की पहचान व्यक्ति के लिंग से नहीं, उसके काम, जिम्मेदारी, योग्यता और योगदान से होनी चाहिए।

श्रोताओं, हमारी जिंदगी में प्रकृति कई ऐसी संसाधन देती है जिनकी उपयोगिता शायद हम रोज देखते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही एक प्राकृतिक संसाधन है बांस। आज 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये दिवस 2009 में शुरू किया था ताकि बांस के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाई जा सके। बांस का इस्तेमाल हस्तशिल्प, फर्नीचर, कागज़ निर्माण और कई दूसरे क्षेत्रों में होता है। इससे ग्रामीण और स्थानीय समुदायों की आजीविका भी जुड़ी हुई है, इसीलिए बांस को कई जगह हरित सोना भी कहा जाता है। और 2026 में वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का संदेश है बैम्बू फॉर अ रीजेनरेटिव फ्यूचर, यानी प्रकृति के साथ मिलकर एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की दिशा में आगे बढ़ना। बांस की खासियत शायद यही है, जड़ें मिट्टी में रहती है लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत दूर तक जाती हैं।

श्रोताओं, और अब बात उस चीज़ की जिसके बिना हमारी सुबह भी शुरू नहीं हो सकती, पानी। आज 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है। ये दिन लोगों को अपने आसपास के जल स्रोतों और पानी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने से जुड़ा है। इस पहल की शुरुआत 2003 में अमेरिका में एक वैश्विक शैक्षिक कार्यक्रम के रूप में हुई थी। शुरुआत में इसे 18 अक्टूबर को मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 2007 में इसकी तारीख बदलकर 18 सितंबर कर दी गई, ताकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग इसमें बेहतर तरीके से भाग ले सकें। आज इस पहल से जुड़े वाटर चैलेंज कार्यक्रम का प्रबंधन अर्थ इको इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। पानी की बात सिर्फ उसे बचाने तक सीमित नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि हमारे जल स्रोत साफ और सुरक्षित रहें।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, कभी कभी ज़िंदगी हमारी समझ से परे लगती है, तो कभी छोटी सी खुशी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। शायद हर पल को समझना ज़रूरी नहीं, कुछ पलों को बस महसूस करना ही काफ़ी होता है।

श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं और अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए पुनः कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। टाटा ट्रस्ट ने इसे अवैध बताया। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने तीसरे टी20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनावों में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके आरक्षित फूल और घास चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी है।
1: निर्वाचन आयोग ने कल जारी अंतरिम आदेश में कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और अरूप राय के नेतृत्व वाला गुट दोनों ही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नाम और पार्टी के आरक्षित फूल और घास चुनाव का चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दोनों गुटों को आगामी उपचुनाव अलग अलग नामों और निर्वाचन आयोग की ओर से आवंटित

0: चुनाव चिन्हों पर लड़ना होगा। यह व्यवस्था विवाद के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगी। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों की ओर से पेश दस्तावेजों और दावों से पता चलता है कि तृणमूल कांग्रेस में फिलहाल दो प्रतिद्वंदी गुट हैं और दोनों खुद को वास्तविक पार्टी बता रहे हैं। आगामी उपचुनाव से पहले विवाद का अंतिम निपटारा संभव नहीं होने के कारण आयोग ने फिलहाल पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर यह अंतरिम व्यवस्था की है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
2: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। लोकसभा से तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सुले, जबकि राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
1: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर दो दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्मेलन में शामिल होंगे।
3: सम्मेलन में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन सुशासन में नई प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश के विकास से जुड़ी वित्तीय चुनौतियों और नीतिगत प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। इनमें अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र और ऊर्जा क्षेत्र के लिए वित्तीय व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL आज बेंगलुरु में वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान, दो सीट वाले तेजस विमान और HTT-40 प्राथमिक प्रशिक्षण विमान सौंपेगी।
4: कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम पवन हंस लिमिटेड को ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता दे रही है। निशा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर कुंजी UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन संख्या और पासवर्ड के जरिए देख सकते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान कल से शुरू हुआ। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर और आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इसी कड़ी में प्रस्तुत है नक्सलवाद के अंत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट।
6: छत्तीसगढ़

0: बस्तर इलाके में नक्सलवाद के अंत के बाद अब बंदूक की गोलियों की जगह एक बार फिर स्कूल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं। बस्तर अंचल में सुरक्षा कैंपों को बदलकर शहीद वीर गुंडा धुर सेवा डेरा के नाम से आधुनिक जन सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन बदलते बस्तर की तस्वीर पेश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहां कभी टेरर था वहां अब टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
1: हमने संकल्प लिया कि नक्सलवाद माओवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और आज पूरा देश नतीजा देख रहा है। जहां पर विकास की बात बोल तक नहीं सकते थे, ऐसे क्षेत्रों में हम विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़े। बस्तर जैसे इलाकों में बम बंदूक नहीं, बस्तर ओलंपिक्स की धूम है। यानी जहां कभी टेरर था वहां टैलेंट को अवसर मिल रहा है।
0: सरकार की ठोस इच्छा शक्ति का ही परिणाम रहा है कि बस्तर में हजारों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों को अब कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर जिले के ऐसे ही एक आत्मसमर्पित माओवादी लखमू पोयाम ने बताया कि नक्सली संगठन में काम करते हुए उन्हें हमेशा जान का डर बना रहता था, लेकिन अब वे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं।
2: अभी तो यहाँ सरेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, गोली लगेगा बोल के उधर डर था। अभी यहाँ आराम से खाना है, पीना है, सोना है, काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
0: लखमू पोयाम जैसे सैकड़ों आत्मसमर्पित माओवादियों की यह कहानी बताती है कि बस्तर में नक्सलवाद के अंत के बाद अब विकास का सूर्योदय हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
3: भारतीय जनता पार्टी आज पंजाब के पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा की शुरुआत करेगी। ये यात्रा राज्य की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी और नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने पर बल देगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यात्रा को रवाना करेंगे। यात्रा 30 सितंबर को जालंधर में समाप्त होगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक और तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें आगे भी बढ़ेंगी और ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमरीका, यूरेशिया और अमरीका समेत विभिन्न क्षेत्रों से ऊर्जा प्राप्त करता है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने रूस की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा के दौरान रूस के थल सेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करने, प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने तथा सेनाओं की क्षमता विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किया है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पृष्ठों वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक वैध रहेगा। इनमें से जो अवधि पहले पूरी होगी वही मान्य होगी। टाटा सन्स ने एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला किया है। टाटा सन्स के बोर्ड ने कल 4-1 के बहुमत से उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हालांकि 66% हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट ने इस मतदान को अवैध बताया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अगले 2 दिन के दौरान तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम, माहे, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
4: भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान से 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला 3-0 से जीत दी है। दिल्ली में कल तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 127 रन से हराया। भारत के 221 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 94 रन पर सिमट गई। अभिषेक शर्मा ने शानदार 108 और संजू सैमसंग ने 50 रन बनाए। 30 गेंद में शतक लगाकर अभिषेक T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उधर जापान में एशियाई खेलों में वर्तमान चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से आज सुबह 10:30

0: बजे से खेलेगी। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। खेलों का औपचारिक उद्घाटन कल होगा और प्रतियोगिताएं 4 अक्टूबर तक चलेंगी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने पुंछ जिले के मेंढर इलाके के बेहरी कासब में आधुनिक जनजातीय पर्यटन गांव विकसित करने को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र

0: सिन्हा।
1: धन्यवाद जागृति। सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन की खबर आज प्रकाशित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया का भारत पर बढ़ रहा भरोसा, वैश्विक बाजार में पहुंच रही देश की सेमीकंडक्टर चिप। जनसत्ता के शब्द हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को भरोसेमंद चिप विनिर्माण का केंद्र बना रही है। पंजाब केसरी लिखता है, भारतीय चिप की दुनिया भर में सप्लाई शुरू, दूसरे चरण में लक्ष्य $30.5 मिलियन। अमरीकी संसद में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाले विधेयक के पारित होने की खबर को अखबारों ने प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ट्रंप को मिला 100% टैरिफ वाला हथियार। अमर उजाला लिखता है, टैरिफ पर अमरीका की दो टूक, भारत अपने हित खुद तय करेगा। हिंदुस्तान ने 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नए नियम की खबर दी है। पत्र लिखता है, पंजीकरण के नियमों को सख्त बनाने वाला कानून 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा। पंजीकरण में 2 वर्ष से अधिक की देरी होने पर पंजीकरण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होगा। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, पढ़ाई के बाद नौकरी में काम आएगी अपार आईडी, डिग्री देख सकेंगे नियुक्ता, मंत्रालय ने निजता नीति बदली। पंजाब केसरी ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के परीक्षा कार्यक्रमों के जारी होने पर लिखा है, जेईई मेन यूजीसी नेट परीक्षा की डेट शीट जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता दी है, सीसीटीवी की निगरानी में बिके दवा, सरकार लाई प्रस्ताव, फुटकर दुकानों में ही सीसीटीवी अनिवार्य होगा, थोक दवा दुकानों को बाहर रखा गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह निलंबित किया। दोनों गुटों को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए नया नाम और चिन्ह चुनने को कहा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों के लिए यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की। बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस, इलेक्शन कमीशन फ्रीजेस तृणमूल कांग्रेस नेम एंड सिंबल, आस्क्स राइवल फैक्शंस टू पिक न्यू वंस फॉर वेस्ट बंगाल बाय पोल्स। Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. The Election Commission of India has barred both factions of the Trinamool Congress from using the party's name and election symbol in the upcoming assembly by-polls in Nandigram and Rajinagar in West Bengal. Here's a report from our correspondent.
3: In an interim order issued yesterday, the Commission said neither the Mamata Banerjee-led group nor the Arup Roy-led group can use the name All India Trinamool Congress or the party's reserved twin flower symbol. Both groups will have to contest the by-polls under the different names and with election symbols allotted by the Commission. This arrangement will continue until the dispute is finally settled. The Commission said documents and claims submitted by both sides show that there are currently 2 rival groups within the Trinamool Congress, with both claiming to be the real party. As the dispute cannot be settled before the upcoming by-polls, the Commission has taken the temporary step to decide who can use the party's name and symbol for now. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
2: The first meeting of the Joint Parliamentary Committee on the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 will be held in New Delhi today. The committee will receive a briefing from representatives of the Ministry of Home Affairs on the provisions of the bill. More from our correspondent.
4: Both houses of the parliament on 12th August gave their note to referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2020.

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जो हम शहर में आए अपने देर तलक चाहने वालों से लिपट कर रो।

ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप कमलिनी मल्होत्रा और प्रद्युम्न शर्मा को सुन रहे थे, और इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए फिल्मी गीत।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने, उठने बैठने, पढ़ने काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1-3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
3: श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए आपकी कसम फिल्म का गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के हैं व धुन तैयार की RD बर्मन।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 9:10 होने वाले हैं और अब लीजिए सुनिए हमारा अति विशिष्ट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा। इसके अंतर्गत आज सुनिए 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नेतृत्व जब विचारों से आगे बढ़कर संकल्प बनता है तो नीतियाँ केवल कागज पर नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बना देती हैं। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने जब कमान संभाली तो एक नए प्रशासनिक मॉडल की नींव रखी गई। शिकायतों का सीधा समाधान देने वाला स्वागत पोर्टल हो, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचाती ज्योतिग्राम योजना या फिर प्यासी जमीन तक जल लाती सोनी परियोजना, कन्या केलावणी से बेटियों का सशक्तिकरण, कृषि महोत्सव से किसानों की प्रगति और गरीब कल्याण मेले से अंतिम व्यक्ति का अधिकार, विकास की इसी सोच ने वाइब्रेंट गुजरात और गिफ्ट सिटी के रूप में वैश्विक पहचान बनाई। गुजरात के इन्हीं जमीनी प्रयोगों और अनुभवों को आधार बनाकर आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त और आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। जनसेवा से देश सेवा के इस 25 वर्षों के निरंतर सफर को जानने के लिए पेश है आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हमारे साथ दो जाने माने विशेषज्ञ वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारिता एवं नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए के अस्थाना जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
3: जी।
1: केतन जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। 2001 जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली उस समय राज्य भूकंप, सूखे और प्रशासनिक चुनौतियों से गुजर रहा था। एक पत्रकार के तौर पर उस समय गुजरात की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं और अगले कुछ वर्षों में सरकार ने किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी?
2: एक पत्रकार के तौर पर

मैंने 7 अक्टूबर 2001 को जब नरेंद्र भाई ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तब से उनका जो कार्यकाल रहा है आज दिन तक का, उसको बहुत नजदीक से फॉलो किया है। जब गुजरात में नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बन के आए 7 अक्टूबर 2001 को, तब गुजरात भूकंप की छाया से अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकला था। एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही, उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं आपणो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा देके उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये

0: रिहेबिलिटेशन और रीबिल्ड करने की एक बहुत बड़ी चुनौती तो सामने थी ही। उसके साथ साथ उसके पहले 1998 और 9 में कच्छ में जो साइक्लोन आया उसका भी काफी गहरा असर था। इनस्टेबिलिटी का, एक अनसर्टेनिटी का एक माहौल पूरी तरह से बना हुआ था जब नरेंद्र भाई ने 7 अक्टूबर को शपथ ली। मुझे अभी भी याद है, इसको गुजराती में कहते हैं आपणो गुजरात आगवो गुजरात, मतलब हमारा गुजरात अग्रसर गुजरात। वो नारा दे के उसने एक गुजरातियों को एक व्यापक अपील की थी, जिस नारे से गुजरात के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके पार्टी में और इन जनरल गुजरातियों में एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ कि ये बंदा कुछ कर सकेगा, ये बंदा कुछ, गुजरात को ध्यान में रखते हुए उनके पास कुछ विजन है, उनके पास कुछ गाइडलाइंस है, उनके पास एक स्पष्ट नीति और दिशा है। और तब से जो हुआ, कई सारी योजनाएं आई जिसकी हम आगे बात करेंगे, ज्योति ग्राम, स्वागत, कृषि महोत्सव, गरीब कल्याण मेला से लेके बहुत सारी वाइब्रंट और गिफ्ट सिटी तक कई सारे इनिशिएटिव उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लिए गए। जब से वो 2014 में प्रधानमंत्री बने उसकी एक लंबी इम्पैक्ट भी रही। और एक गुजरात मॉडल जो 2010 के बाद 2000 स्पेशली 2012 और 13 में जो नेशनली काफी चर्चा में रहा कि गुजरात ने एक डेवलपमेंटल मॉडल पेश किया कि कैसे एक राज्य को डेवलप किया जाता है। और फिर आगे की जर्नी हम सबको मालूम है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो शायद 2001, 2 और 3, ये 2-3 सालों में रखा गया था। उसकी नींव है वो इन सालों में रखी गई थी।
1: डॉक्टर अस्थाना, 2003 की बात करते
0: जी
1: हैं, जब देश में लोग
0: जी
1: कंप्यूटर और इंटरनेट सीख ही रहे थे, तब गुजरात में
0: जी
1: स्वागत पोर्टल आया। सीधे
0: जी
1: मुख्यमंत्री का जनता की शिकायतें सुनना और ऑन द स्पॉट 99% से ज्यादा मामले निपटा देना। आधिकारिक आंकड़े
0: जी
1: बताते हैं कि 6,07,299 मामले तुरंत निपटारा कर दिए गए थे। आपसे समझना
0: जी
1: चाहेंगे कि उस दौर के प्रशासनिक रवैये के बीच स्वागत जैसी योजना किस तरह का सरप्राइज था, और इसने ग्राउंड पर अफसरशाही का जो रवैया है कितना बदला और कैसे बदला।
0: जैसा कि केतन जी ने बताया कि 2001 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जब शासन की बागडोर संभाली, उस समय जनता को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि कच्छ की जनता और गुजरात की जनता जिस त्रासदी से गुजर रही थी, उस समय प्रशासन से उनकी उम्मीद थी कि जनता की जो शिकायतें हैं उनका निवारण तत्कालीन किया जाए, जवाबदारी के साथ किया जाए, और इस पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता की जरूरत थी। गुजरात में उस समय जो प्रशासन का जो एक ढांचा था, उस ढांचे में कमी ये थी कि जो जनता की शिकायत थी वो प्रशासन तक आते आते कहीं दब जाती थी, और जो शिकायतों का निवारण करने के लिए एक से अधिक एजेंसी की जरूरत होती थी, वहां जनता की शिकायत का निवारण नहीं हो पाता था। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक प्रयोग किया कि हम जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए हम तकनीकी का सहारा लेंगे, और इस तकनीकी के सहारा से जो प्रशासन है वो हर एक स्तर पे, गांव के स्तर पे, तालुका के स्तर पे, जिला के स्तर पे और राज्य के स्तर पे सीधे जनता से जुड़ने का उनको एक व्यवस्था मिला। तो ये जो स्वागत की जो योजना है, ये स्वागत की योजना 2003 में लागू की गई थी, और इस योजना का उद्देश्य था कि जनता की शिकायत, खासकर वो शिकायत जिसका निवारण वर्षों से नहीं हो पा रहा है, उसके निवारण को प्राथमिकता के आधार पे अब सरकार उसका निवारण को दूर करे, उनकी शिकायतों को दूर करे। तो ये जब व्यवस्था लागू की गई थी, जैसे आपने कहा कि अभी तक 99% जनता की शिकायतों का हल मिल चुका है, और इसका प्रमाण इससे मिलता है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और अभी के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो ये पहल शुरू की, इस पहल का गुजरात के अंदर जो प्रभाव पड़ा उसका ये आंकड़ा इसका इम्पैक्ट बताता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यूनाइटेड नेशन ने इसको 2010 में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से, गवर्नेंस के अवार्ड से इसको नवाजा। तो जनता की शिकायतों का हल मिलने लगा, जनता का सरकार के ऊपर विश्वास बढ़ा, सरकार जो है सो सीधे जनता के साथ जुड़ी, और इसका जो प्रयोग जो हुआ, ये प्रयोग जो है सो आज के समय में पूरे देश में इसको अपनाया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से इसको नवाजा गया है, साथ में इसको ई गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए भी सुशासन का बड़ा अच्छा मॉडल माना गया है। तो ये जो है वो देश के अंदर प्रशासन की जवाबदारी तय करती है और प्रशासनिक ढांचे में भी कहां कमी है जिसके कारण जनता की

0: आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, उन बिंदुओं को चिन्हित करती है और तत्कालिक उसका निवारण करती है। तो ये मॉडल जो है सिर्फ गुजरात में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन आज देश के दूसरे राज्यों में भी इसको अपनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको मान्यता मिली है। तो
1: जी
0: ये एक गुजरात के तरफ से पूरे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका नेतृत्व, इसकी शुरुआत, इसका संचालन और इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
1: केतन जी, इतिहास के पन्ने को थोड़ा और पलटें। आपको याद होगा 2000 के शुरुआती सालों में गांव में बिजली का मतलब होता था आ गई तो गनीमत, चली गई तो आदत। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए और 18,000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली रहने लगी। एक पत्रकार के नाते जब आप उस समय गांव में जाते थे तो इस एक रोशनी की किरण ने वहां के छोटे कारोबारियों और लोगों की जिंदगी को रातों रात कैसे बदल दिया। अगर कोई दिलचस्प वाकया इस ज्योति ग्राम योजना से कोई जुड़ा हो और आपको याद आ रहा हो तो वो भी हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें।
2: पहले मैं ये जो अस्थाना जी ने कहा स्वागत की हम चर्चा कर रहे थे उसको कड़ी से एक बात कहना चाहूंगा। जो प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र भाई बने और जो प्रगति प्लेटफॉर्म जो डेवलप किया, हम सबको मालूम है कि देश से जुड़ी हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं का एक रेगुलर रिव्यू होता है प्रगति के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूं कि ये प्रगति एक तरह के उन्होंने मुख्यमंत्री काल में जो स्वागत किया था, हालांकि उसका स्वरूप अलग है, भिन्न है, लेकिन उसका ही एक एक्सटेंशन है कि रिसेंटली लास्ट दिसंबर में ही हमने प्रगति के 50 मीटिंग पूरे होने पर एक कार्यक्रम किया था। तो नरेंद्र भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे कई सारे नए नए उपक्रम के लिए जाने जाते हैं, हमने गुजरात में देखा है। ज्योतिग्राम की जहां तक सवाल है, 2003 में जब ये योजना शुरू हुई उससे पहले गुजरात पानी के साथ साथ बिजली के संकट से काफी जूझ रहा था। गांव में बिजली दे तो एग्रीकल्चर को क्या करे, एग्रीकल्चर को बिजली दे तो रेसिडेंशियल और नॉन कमर्शियल यूजेस है और नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है उनको कैसे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, ये अपने आप में बड़ी चैलेंज थी। तो ज्योतिग्राम योजना के तहत मुझे याद है कि उत्तर गुजरात के गांव ले लो, सौराष्ट्र के गांव में हम ट्रैवल करते थे तो दिन में चार चार छह छह घंटे बिजली नहीं मिलती थी। इवन इन अ हॉट समर के दिनों में भी दिन में 5-6 घंटे बिजली न होना कितना त्रासदी होता है हम सबको मालूम है। गांव की छोड़ो, जो सेमी अर्बन टायर टू सिटीज है उसमें घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट रहता था। उस हालात में इस सिचुएशन को सिर्फ कोई एक योजना ने बदला है तो वो ज्योतिग्राम है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ज्योतिग्राम योजना के तहत एग्रीकल्चर फीडर को नॉन एग्रीकल्चर रूरल सप्लाई से अलग कर दिया पूरा। तो उससे ये हुआ कि जो हाउस होल्ड और नॉन एग्रीकल्चर रूरल एक्टिविटीज है उनको 24 आवर 3 फेज बिजली मिलने लगी, और जो एग्रीकल्चर के लिए बिजली चाहिए थी वो बिजली का एक सेपरेट फीडर के जरिए प्रावधान किया गया। जब किसानों की जरूरत हो, किसानों को जब चाहिए बिजली तब उनको बिजली मिले, और जब किसानों को बिजली नहीं चाहिए तब बिजली का कोई वेस्ट ना हो उसका भी ख्याल रखा गया।
1: जी हाँ, ज्योतिग्राम योजना
2: जी
1: के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को इस योजना से लाभ हुआ और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव भी देखने को मिला। संकल्प से सिद्धि के इस सफर में आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव रहा वाइब्रेंट गुजरात। 2003 में जब पहली बार वाइब्रेंट गुजरात हुआ तो बहुत से लोगों को लगा कि यह सिर्फ एक सरकारी इवेंट है, लेकिन देखते ही देखते गुजरात सिर्फ कपड़ा या केमिकल का गढ़ नहीं रहा बल्कि टाटा नैनो से लेकर बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियों का हब बन गया। ये एक राज्य से निकलकर ग्लोबल ब्रांड बनने का टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ। वाइब्रेंट गुजरात पर चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं ये विशेष रिपोर्ट।
3: गुजरात के विकास की कहानी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसकी शुरुआत 28 सितंबर 2003 को तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य था गुजरात की निवेश क्षमता को दुनिया के सामने रखना और राज्य को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। पहले संस्करण में करीब 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हुए थे। समय के साथ यह आयोजन एक बड़े वैश्विक मंच में बदलता गया। वर्ष 2019 तक इनमें 135 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, यानी एक राज्य केंद्रित निवेश सम्मेलन।

0: सम्मेलन से शुरू हुई पहल धीरे धीरे वैश्विक कारोबारी और निवेश मंच का रूप ले चुकी थी। वाइब्रेंट गुजरात की यात्रा में जनवरी 2024 में आयोजित 10वां संस्करण भी महत्वपूर्ण रहा। इसका विषय था गेटवे टू द फ्यूचर। इस संस्करण में निवेश के साथ साथ भविष्य की तकनीक, नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे विषयों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इसे गुजरात से आगे बढ़कर भारत के विकास और वैश्विक साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण मंच के रूप में रेखांकित किया। वाइब्रेंट गुजरात का प्रभाव केवल बड़े निवेश समझौतों तक सीमित नहीं रहा। इस मॉडल के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर भी निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। वर्ष 2025 और 26 में गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस आयोजित किए गए। जनवरी 2026 में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के सम्मेलन में सिरेमिक, इंजीनियरिंग, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 12 जनवरी 2027 तक गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। इस वैश्विक सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और मंत्री, कॉरपोरेट जगत के नेता, वरिष्ठ नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल होंगे। जनवरी 2027 में होने वाले इस वैश्विक आयोजन का मुख्य फोकस विकेंद्रित क्षेत्रीय विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उभरती तकनीकों और विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य पर होगा।
1: डॉक्टर अस्थाना, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी योजना देश में नहीं थी कि कोई एक राज्य इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात जैसा कोई कार्यक्रम करे और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों से वहां कंपनियां आए, इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें, वहां कंपनी लगाने की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो। कैसे देखते हैं, चूंकि आज का जमाना अलग है, आज से 23 साल पहले 2003 में इस सोच के साथ किसी आयोजन को करना और उसमें सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2003 में इस तरह की योजनाओं के बारे में सोचना भी अपने आप में दूरदर्शिता का एक घोतक है कि एक दूरदर्शी राजनीतिक व्यक्ति हमारे राज्य को, अभी तो वो देश की कमान संभाल रहे हैं लेकिन उस समय अपने राज्य को किस स्तर पे स्थापित करना चाहते थे, ये उनकी सोच को बताता है। जैसा कि आपको ख्याल होगा कि गुजरात, महाराष्ट्र के साथ गुजरात भी औद्योगिक क्षेत्र में एक सफल राज्य माना जाता है, तो उद्योग धंधा यहाँ के DNA में है, लेकिन ये उद्योग जो है एक क्षेत्र तक सीमित था, जैसे सूरत का कपड़ा उद्योग, सूरत का हीरा का उद्योग या अहमदाबाद का फार्मेसी का उद्योग। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जो है एक विजनरी लीडर थे और उनका शुरू से एक स्वप्न था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का काम करें। आप सोचिए कि गुजरात राज्य में रह के एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे निवेश को आकर्षित करना एक बहुत बड़ी एक सोच थी, और इसीलिए उस समय कुछ लोग जो उनकी सोच के समक्ष खड़े नहीं रह सकते थे, उन्होंने उनको चैलेंज भी किया और उसका एक अलग दृष्टिकोण से देखा। लेकिन 2003 से लेकर अगर आज तक आप जो वाइब्रेंट गुजरात का सफर देखें, तो 2003 में जहां पर मात्र 300 डेलीगेटों के साथ ये वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था, वहां पे आज जो है सो इसकी संख्या 40,000 तक पहुंच गई है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जो कि ये वाइब्रेंट गुजरात को अटेंड नहीं करना चाहता है, या वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा उसको जो गुजरात के अंदर जो निवेश का मौका मिल रहा है उस निवेश के मौके को वो चूकना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात के अंदर निवेश करने की बहुत सारी क्षमताएं हैं, और इन्हीं क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में बिजली पहुंचाई, जल की व्यवस्था की, गुजरात के अंदर जो पोर्ट है उसके सुधारे पे उन्होंने जोर दिया, इसके बाद जो गुजरात के अंदर जो रोड का नेटवर्क है उसके अंदर जोर दिया, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता लाई, तो ये सब का जो परिणाम है वो हमें वाइब्रेंट गुजरात के अंदर देखने को मिला। आज के दिन अगर आप बात करें तो वाइब्रेंट गुजरात जो है एक सिर्फ सरकारी योजना नहीं रह के पूरे देश के अंदर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर, केमिकल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, हर एक क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को खोजने की और उसके अंदर निवेश करने का एक बड़ा उचित प्लेटफॉर्म बन गया है। और इस साल से तो इसका 4 चैप्टर शुरू हो गया है।

0: अब ये क्षेत्रीय पहल बन गया है। अभी नॉर्थ गुजरात में, साउथ गुजरात में, मध्य गुजरात में और सौराष्ट्र गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय जो व्यवस्था है, जहां पे क्षेत्रीय रोजगार या जो निवेश के अवसर है उसको, संभावनाओं को तलाशने का ये एक पहल बन गया है। जैसा कि अभी आपने बात की कि कच्छ के अंदर जो 2001 में जो भूकंप आया था और उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने जो कमान संभाला था,
1: जी
0: तो आज कच्छ जो इसका सबसे बड़ा लाभार्थी प्रदेश बना है। आज कच्छ के अंदर आप जाके देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भूकंप आया था। इस वाइब्रेंट गुजरात ने इतनी ज्यादा तरक्की के अवसर खड़े किए हैं।
1: सफर को आगे बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव रहा केतन जी, गिफ्ट सिटी। गांधीनगर में जब गिफ्ट सिटी का विचार आया तो 2008 के आसपास दुनिया वैश्विक मंदी से जूझ रही थी। लोग सोच रहे थे कि गुजरात में सिंगापुर या दुबई जैसा फाइनेंशियल हब कैसे बनेगा। और आज जब हम वहां बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को काम करते देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के उस विजन को किस तरीके से आंकते हैं आप? फिर वही बात कि एक तरफ वैश्विक मंदी थी और दूसरी तरफ गिफ्ट सिटी का विचार, अपने आप में विरोधाभास जरूर था, लेकिन कह सकते हैं कि वो दूरदर्शिता ही थी जो इसे न सिर्फ मुकम्मल कर पाई बल्कि सफलता के नए अध्याय भी जोड़ पाई।
2: जब गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, गिफ्ट सिटी, ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब बनाने का कॉन्सेप्चुलाइज हुआ और GIFTCL इनकॉर्पोरेटेड हुई 21 जून 2007 को, तब से शुरू के दिनों में बहुत लोगों को ये लगता था कि गुजरात अहमदाबाद गांधीनगर के बीच में, जहां आज ये पूरा डेजर्ट जंगल एरिया है साबरमती नदी के किनारे पे, वहां क्या होगा, बड़ी कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, जब हमारे पास मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे बड़े मेट्रो शहर है उसको छोड़ के, और स्पेशली जब मुंबई नजदीक है और देश का फाइनेंशियल हब है, तो उसको छोड़ के ग्लोबल कंपनियां यहाँ क्यों आएगी, यहाँ ना तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना तो कुछ है। तो शुरू में जब नरेंद्र भाई ने ये अपना विजन प्रस्तुत किया, तब बहुत सारी दुविधाएं थी, लोगों के मन में सवाल था, लेकिन आज 2026 में यदि आप गिफ्ट सिटी की मुलाकात लोगे, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेके बहुत सारी टेक कंपनियां, वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका एक एकम गिफ्ट सिटी में प्रेजेंस है। नरेंद्र भाई खुद एक स्टेट के सीईओ के तौर पे गिफ्ट सिटी का मार्केटिंग कर रहे थे, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बातें कर रहे थे, उनको गुजरात आने का न्योता दे रहे थे, जो भी सुविधा उनको चाहिए थी वो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा कर रहे थे। 2014 में जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, तब से जाके उसकी जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो काफी हद तक बढ़ी है, और आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, उनके सबके इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ काम कर रहे हैं। दो तीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, डिकिन से लेके काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज अपना कैंपस गिफ्ट सिटी में लगाए बैठी है। तो कुल मिला के ये जो पूरा प्लांड एक फिनटेक सिटी है, वो
1: जी
2: फिनटेक सिटी उभर के आ रहा है गुजरात और अहमदाबाद में। इनके साथ साथ उनको रेल कनेक्टिविटी मेट्रो के जरिए दी दी गई है, अलग से प्रावधान किए उनके लिए, काफी कुछ एयर कनेक्टिविटी भी आगे आने वाले सालों में डायरेक्ट गिफ्ट सिटी से देने की एक संभावना भी सोची जा रही है। तो शुरू में केवल एक स्वप्न लगता था, आज वो सबके सामने एक हकीकत बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। और वाइब्रेंट गुजरात समिट जब 2024 में आयोजित हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी को लेकर अपने मन के विचार लोगों के साथ साझा किए।
3: गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहाँ केंद्र, राज्य और IFSC अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए।
1: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अस्थाना, सौराष्ट्र की थोड़ी चर्चा कर ली जाए यहाँ पर। सौराष्ट्र में पानी की समस्या तो जग जाहिर थी, सूखा और पलायन वहां की नियति थी। सोनी योजना में खुली नहरें बनाने की बजाय 1100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर 115 बांधों को नर्मदा के पानी से भर दिया गया। उस समय ये सुनने में और वहां के लोगों को महसूस करने में थोड़ा आश्चर्यचकित जरूर कर रहा था, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या मानते हैं, जमीन अधिग्रहण की झंझटों से बचाकर पाइपलाइन बिछाने का ये फैसला जल प्रबंधन के क्षेत्र में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ?
0: जी, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का फिर से

0: एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम और बहुत ही साहसिक कदम था, क्योंकि सौराष्ट्र की जो जिले थे जिसमें राजकोट, जामनगर, मौरवी, भावनगर, सुरेंद्रनगर, अमरेली, जूनागढ़ आता था, इसमें हमेशा पीने के पानी की त्रासदी रहती थी। पीने के पानी के अलावा वहां के जो किसान थे उनको भी अपनी खेती के लिए उचित मात्रा में सिंचाई के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हो पाता था। इधर जो साउथ गुजरात और मध्य गुजरात तक जो नर्मदा का पानी आ चुका था, इसका लाभ सौराष्ट्र के क्षेत्र तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती थी, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण की बात चलती थी तो उस समय बहुत सारे प्रशासनिक दुविधाएं आती थी, बहुत सारे लिटिगेशन आते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि हमें पीने का पानी, क्वालिटी वाला पानी हमें लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वहां पे पाइपलाइन का मदद लिया गया। लेकिन अगर आप उस क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति के अगर आप एक अवलोकन करें तो ये अपने आप में एक तकनीकी एक चुनौती थी कि कैसे बिना किसी के जमीन का अधिग्रहण किए हुए हम शुद्ध पानी, पेयजल को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो सुनई योजना थी जिसमें 1371 किलोमीटर नहरों को और 115 बांधों को जोड़ा गया और पीने का शुद्ध पानी इन राज्यों तक, इन जिलों तक पहुंचाया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जैसे कि केतन भाई ने भी कहा और आपने भी अपने उद्बोधन में से चिन्हित किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो हमेशा नई पहल को वो जोड़ देते थे कि कुछ नया करना है। वो तकनीकी को अपनाने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे और कोई भी काम जो है वो वैश्विक स्तर पे करना चाहते थे कि इसका एक जो इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट पूरे लोगों तक मिले, पूरे राज्य को मिले, पूरे बड़े भूभाग के लोगों को मिले। तो ये जो लिंक योजना थी जिसके अंतर्गत सौराष्ट्र को जल सुरक्षा दी गई और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में पानी पहुंचाया गया, इससे वहां पे कृषि को बढ़ावा मिला, इससे वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में नल के द्वारा पीने लायक पानी पहुंचाया गया, तो काफी ज्यादा लोगों को वहां पे फायदा हुआ है।
1: जी बिल्कुल। केतन जी, एक बार फिर थोड़ा पीछे चलते हैं। 2003, गर्मी का मौसम, जून की तपती दोपहरी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ गुजरात के गांव गांव में जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में नहीं, पैदल घूमते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप अपनी बच्चियों को, बेटियों को स्कूल जरूर भेजें। और जब स्कूल में वो बच्चियां आती हैं तो उन्हें खिलौने, मिठाई, बैग देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता है ताकि जो स्कूल का डर था मन में वो डर न रहे। और इससे भी एक कदम आगे बढ़कर उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनको उपहार मिला करते थे, गिफ्ट मिला करते थे बतौर मुख्यमंत्री, उनको ऑक्शन में सेल आउट करके जो पैसे आए उससे एक योजना शुरू की और योजना का नाम था कन्या केलावणी योजना। कैसे देखते हैं इस पर्सनल टच को और क्या मानते हैं आप कि इससे जो बेटियों के स्कूल छोड़ने, जिसे ड्रॉप आउट रेट कहते हैं, इसमें जो ड्रास्टिक चेंज आया उसमें कितनी बड़ी भूमिका थी इस पर्सनल टच की?
2: आपने जिस बात का जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो जब कोई फंक्शन में जाते थे और उनको जो उपहार दिया जाता था, वो नॉर्मली ऐसा होता है कि वो सब स्टेट की जो ट्रेजरी है, जो तोशाखाना बोला जाता है, उसमें जमा करवाना होता है। लेकिन आज तक परंपरा यही चलती रही थी कि किसी को कुछ पता रहता नहीं था कि तोशाखाना में क्या हुआ, क्या नहीं, कितनी चीजें आई, उसका बाद में क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं था। ये पहली बार हुआ कि नरेंद्र भाई ने ये सब उपहारों, और जब खुद मुख्यमंत्री अपने को मिले हुए उपहारों को ट्रेजरी में जमा करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली मंत्रीज और सेक्रेटरीज भी उसको फॉलो करने लगे, तो बहुत सारी चीजें ये तोशाखाना में आने लगी और उसका एक ऑक्शन होने लगा। चीजें सिंबॉलिक थी लेकिन ऑक्शन में जो बड़े बड़े लोग आते थे वो उनका कोज देख के उनको खरीदते थे, कि उनका कोज ये था कि इनमें जो इनकम होगी वो इनकम गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्पेंड की जाएगी। नरेंद्र भाई ने लोगों को प्रेरित भी किया कि आप ये उपहार चीजें ऑक्शन में खरीदे, ऊंचे दामों में खरीदे, ताकि ये फंड में ज्यादा रकम आए और वो रकम हम एक कोज के लिए, कन्या केड़वने के लिए हम स्पेंड कर सके। मुझे बराबर याद है कि एक बार जब मैंने उनसे इसी विषय पर साक्षात्कार किया था तब उन्होंने कहा था कि ये गर्ल्स एजुकेशन मेरे दिल को छूता हुआ एक विषय है। मतलब आपने जो पर्सनल टच की बात की वो यही कनेक्ट होती है। उन्होंने कैटेगरी कहा था कि बहुत सारी योजनाएं तो सरकारी तौर पर चलती रहेगी लेकिन बच्ची को पढ़ाना, बच्ची को स्कूल ले जाना और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसको

0: स्कूल तक आए, क्योंकि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा था उस समय, गर्ल्स ड्रॉप आउट रेशियो, तो उनको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करे, वो मेरे लिए मेरे दिल को छूने वाली बात है। उनके दिल से काफी करीब ये विषय था, और इसीलिए उन्होंने ये हर साल कन्या केलवनी उपक्रम शुरू किया। गांव गांव जाने लगे, उसका मंत्रियां और बड़े बड़े अफसर भी जाने लगे। नो डाउट उसको फिर गर्ल एजुकेशन के बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने काफी सारे, बहुत सारे इनिशिएटिव और भी लिए, लेकिन ये उपक्रम था उसके, उसने उसकी नींव रखी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बतौर मुख्यमंत्री उनको 12 साल में जो सैलरी मिली थी, वो सारी रकम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ने अपने लिए खर्च नहीं किए, वो सारी रकम उन्होंने कन्या केलवनी के लिए डोनेट कर दी थी। तो ये बताता है कि ये विषय उनके दिल से कितना करीब था, और वो एक इमोशनल टच दे रहे थे इन उपक्रम को।
1: गुजरात में कन्या केलावणी की उन्होंने शुरुआत की और जब देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी आरंभ
0: जी
1: किया, जो आज
0: बिल्कुल,
1: पूरे देश में बहुत लोकप्रिय है। डॉक्टर अस्थाना, थोड़ी चर्चा किसानों की भी कर लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि सूखा ग्रस्त जो इलाका होता है, जो सूखा ग्रस्त राज्य होते हैं, वहां खेती का विकास बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको याद होगा 2005 गुजरात ने कृषि महोत्सव का आयोजन किया, और वहां हमने देखा कि एसी कमरों में बैठने वाले वैज्ञानिक और पूरी सरकारी मशीनरी चिलचिलाती धूप में सीधा किसानों के खेतों तक पहुंच गई, और इस एक पहल ने गुजरात के कृषि विकास दर को डबल डिजिट में पहुंचाने का करिश्मा कर दिया। क्या थी रणनीति और कैसे उसे जमीन पर इम्प्लीमेंट किया गया?
2: जी बहुत ही अच्छा आपने एक प्रयोग जो गुजरात के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो किया गया 2005-06 में, उसका आपने बहुत ही अच्छा जिक्र किया। जैसे मैंने आपको कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का एक पहल रहता था कि कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिसका इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों पर पड़े। उद्योग के साथ गुजरात की कृषि को भी विशेष महत्व दिया गया सरकारी योजनाओं में। और जैसा कि अभी हमने पिछली चर्चा में देखा कि बिजली की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण बहुत सारे कृषि जो क्षेत्र थे वहां पे कृषि का सही उपयोग या सही दिशा में उनका बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा था। इसलिए सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका मूल मंत्र था कि अब कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी सरकारी महकमे हैं उनके अधिकारी किसानों तक पहुंचेंगे, किसानों के गांव तक जाएंगे, न कि किसान जो है सो इन चीजों का लाभ लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाए। तो ये जो सरकार जो है वो जनता के दरवाजे तक पहुंचे, इसके पहल के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में ये एक अनूठा प्रयास था।
1: इस अनूठे प्रयास ने न सिर्फ गुजरात की कायाकल्प की, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर भारत के कई गांवों जो सूखे से परेशानी में थे, उनका भी परिवर्तन हुआ। 25 वर्षों का ये सफर हमें सिखाता है कि जब शासन में विजन हो, नीतियों में स्पष्टता हो और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी प्रगति के अवसर में बदला जा सकता है। गुजरात का ये विकास मॉडल आज केवल एक राज्य का अनुभव नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत के सपने की सबसे मजबूत रीढ़ है। केतन जी आपका, डॉक्टर स्थाना आपका, इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे 25 वर्ष गुजरात से राष्ट्र निर्माण तक। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी और सहकारी नीति विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. अस्थाना। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर है 9289094044।
4: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 9:44 हुए हैं।

0: वो भी ऐप से। वाह, फसा।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लीजिए सुनिए अब कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म तेज से सुनिए। आवाज है राहत फतेह अली खान की, गीत रचना कुमार की और संगीत साजिद वाजिद का।

राजू सिंह के संगीत निर्देशन में तैयार कुमार के लिखे गीत को स्वर दिया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में अनविता दत्त गुप्तन का लिखा एवं सलीम सुलेमान का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म नीलन निकी का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं।
1: Play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: लीजिए अब सुनिए दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नंदन वंदन अभिनंदन। संदिष्ट सोल्जर्स के आज के इस अंक में मैं गीतिका उनियाल आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और यकीन मानिए, हर बार की तरह हमारा आज का ये अंक भी बहुत ही मार्मिक होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। और हमारे लिए आज बहुत ही हर्ष की बात है कि इनके कार्यकाल में इनकी उपलब्धियां हम सभी के साथ आज ये शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में, जिसे आप और हम कहते हैं संदेश टू सोल्जर्स। तो आइए तहे दिल से हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल विवेक चौहान का, जो है एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर। कर्नल विवेक चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम में। और हर बार की तरह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक सफल परीक्षण के बाद, ट्रेनिंग के बाद आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। और जब आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, क्योंकि आप यही मानते हैं कि आपका देश सर्वप्रथम है। आपकी यात्रा, आपका वृत्तांत जरूर आपकी

0: सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, आपने भारतीय सेना को ही क्यों चुना? किस तरह भारतीय सेना आपके लिए सर्वोपरि हो गई? कौन सा ऐसा निर्णय था जिसने आपका जीवन बदल दिया और आज आप हमारे साथ हैं अपनी यात्रा को सुनाने के लिए?
1: गीतिका जी, थैंक यू वेरी मच. आपका बहुत धन्यवाद है इस प्रोग्राम पे इनवाइट करने के लिए, और आपके सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से तहे दिल पर नमस्कार, गुड इवनिंग. बढ़िया क्वेश्चन है, यू नो, कि क्यों फौज ज्वाइन करी और क्या मोटिवेशन थी फौज ज्वाइन करने के लिए. तो हम पहाड़ी इलाके से हैं, मैं हिमाचल से हूँ, और वहाँ जो है फौज, डिफेंस फोर्सेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखता है, हमारी कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, एंड काफ़ी लोग एस्पायर करते हैं फौज ज्वाइन करने के लिए. ऑन अ मोर पर्सनल लेवल, मेरे दादाजी फौज में थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई करी. नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे उसमें उन्हें गोली लगी. उसके बाद मेरे पिताजी भी फौज में थे और उन्होंने 1971 वॉर में हिस्सा लिया. बाद में उनको भी जो है ऑपरेशंस में गोली लगी थी. तो वाइल ग्रोइंग अप, बड़े होते समय उनसे कई बार उनकी गाथाएं सुनी, उनकी कहानियां सुनी, दैट वाज अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी. तो यू नो, और उस एनवायरनमेंट में एज अ इम्प्रेशनेबल यंग मैन जो है फौज जो है बिल्कुल जहन में रही, और इसलिए यू नो इट वाज ऑलवेज अ विश एंड अ डिज़ायर एंड एस्पिरेशन कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा. सो दैट इज़ हाउ आई यू नो एंडेड अप ज्वाइनिंग.
0: इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत भारतीय सेनाओं में अपने लिए एक मुकाम हासिल कर पाए, उससे पहले अगर आपके जीवन की बात की जाए, आपके बचपन की बात की जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का ना बचपन उसके जीवन में, आने वाली जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो अगर आपके बचपन की बात की जाए, एज अ स्कूल किड, कर्नल विवेक चौहान जो उस वक्त सिर्फ विवेक थे, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस तरह के बच्चे थे?
1: तो मैं बेहद बदमाश बच्चा था, है ना. मतलब मेरे माँ बाप भी शायद मुझसे काफ़ी तंग थे, और शैतानियाँ करने में और शैतान बच्चों के साथ रहने में मुझे अत्यंत आनंद मिलता था. यहाँ तक कि यू नो एज अ 5-year-old पूरी कॉलोनी के जो साइकिल्स के टायर, उस टाइम साइकिल्स होती थी सबके पास, तो उनके जो है वॉल निकाल के फिर उसके बाद बड़ी मज़ा आया उनको देख के कि सब चल रहे हैं, यू नो. सो मैं शैतान बच्चा था. पॉसिबली जैसे जैसे उम्र बढ़ती रही तो थोड़ा सा और जो है डिसिप्लिन्ड हो गया और थोड़ा शांत हो गया, बट डेफिनेटली एज अ यंग चाइल्ड आई वाज नॉट एन आइडियल फॉर एनीबडी.
0: और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने, आपकी सर्विसेज ने, आपकी ट्रेनिंग्स ने, भारतीय सेना ने आपको पूर्ण रूप से बदल दिया.
1: हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही होगा. मैं NDA से हूँ और फिर IMA से पास आउट हुआ, और ये दोनों इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया में नोन हैं, जानी पहचानी है, दैट दे टर्न मैन इनटू बॉयज इनटू मैन, एंड डिसिप्लिन इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इट. एंड यू नो वंस, जैसे मैंने कहा, एक बारी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो स्वभाव में बदली, ऊपर से जो ये डिसिप्लिन की बाउंड्रीज थी, इससे जो है आई हैव बिकम अ मोर डिसिप्लिन्ड और पॉसिबली अ बेटर पर्सन.
0: बिल्कुल, आपकी व्यक्तिगत रूप से बचपन से इंजीनियरिंग, यानी कि इंटरनल इंजीनियरिंग कैसी भी क्यों ना हो, आर्म फोर्सेज उसे पूरी तरह से बदल देती है, हर पेज पुर्जे को अपने उचित स्थान पर जोड़ देती है. जिस तरह का ऑफिसर आपको बनाना है उस तरह का ऑफिसर बनाती है.
1: ये बिल्कुल आपने सही पहचाना. दी ट्रेनिंग अकेडमीज़, ये विभिन्न किस्म के लोग अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड से लेते हैं, एंड दे ट्रेन यू इन टू द फाइनेस्ट दैट द कंट्री प्रोड्यूसेस, समटाइम्स विद पेन, समटाइम्स विदाउट पेन, बट द एंड रिजल्ट इज ऑलवेज गुड.
0: बिल्कुल, निश्चित रूप से. तो पहले NDA, उसके बाद फिर इंडियन मिलिट्री अकेडमी, क्योंकि एक साल का आपको वहाँ पर भी ट्रेनिंग पूरी करनी होती है. कहाँ ज़्यादा

0: आया, क्योंकि कहते हैं कि बेसिक बिहेवियर नहीं बदलता है, वो अंदर शैतान बच्चा भले ही उसने आगे शैतानी ना की हो, लेकिन उसने जीवन का लुत्फ, जहां पर भी वो रहा, जो भी काम उसने किया, उसने जरूर उसको एंजॉय किया। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, चाहे स्कूल में रहे, भले ही शैतान रहे, लेकिन जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन की, भले ही सोचने का तरीका बदला, काम करने का तरीका बदला, पर जो अंदर का बच्चा था ना, वो जीवित रहा और वहां पर भी उसने एंजॉयमेंट पूरा किया, तो कहां ज्यादा मजा आया।
1: सो व्यक्तिगत तौर पे मेरे को लगता है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। जब हम इंडिया गए तो वी वर यंग स्कूल चिल्ड्रन, बट व्हेन वी केम टू द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम IMA पहुँचे तो काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारे कोर्समेट्स जो हैं वो कॉलेज बाहर अपना एजुकेशन करके हमें ज्वाइन किए थे। सो दैट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस, यू नो, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी कहानी सुनना, उनके फ्रेंड्स ग्रुप में, सोशल सर्कल्स में घूमना, दैट वाज अ लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी फ्रीडम का एहसास थोड़ा ज़्यादा है, एंड देयरफॉर आई एंजॉयड माय स्टे इन IMA। नॉट दैट NDA में नहीं था, बट कंपैरेटिवली IMA वाज अ मच बेटर टाइम।
0: NDA आप एकदम स्कूल पास आउट करने के बाद ज्वाइन करते हैं, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी आप CDS का एग्जाम देने के बाद, या फिर वो जो NDA से जाकर फिर IMA ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ बच्चे आते हैं जिन्होंने हो सकता है कि पहले आर्म फोर्सेज लाइफ ना देखी हो। एक बात और जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को जानने के बाद ना मुझे कहीं ना कहीं जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो हमें सुन रहे होंगे जो चाहते हैं उनके बच्चे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करें। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब बच्चा स्कूल से निकल कर ना आर्म फोर्सेज जाता है तो एक अलग माइंडसेट के साथ जाता है, हम तो राजा हैं अब, लेकिन वहाँ जाके एकदम एंटायर डिफरेंट माहौल। आपके घर में भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल में पले होंगे, क्योंकि कहते हैं कि आर्मी ऑफिसर्स का जो घर होता है वहाँ लाइफस्टाइल इतनी ईजी नहीं होती, एवरीथिंग इज डिसिप्लिन, तो आपके लिए तो डिसिप्लिन से निकल कर डिसिप्लिन में जाना था, फिर भी क्या अंतर था कि एक शैतान सा बच्चा एकदम शांतशालीन ऑफिसर बन गया?
1: सो ये आपकी बात सही है कि क्योंकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, फादर फौज में थे, तो घर पे भी काफ़ी डिसिप्लिन का और तौर था, लेकिन एक ट्रांजिशन है, यू नो, जब आप डिसिप्लिन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, और जब आप अफसर बनने के बाद डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट एंड फेथ रहते हैं, जो आपके कंधों पे जो है सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है, और आपके सहयोगी होते हैं, आपके जूनियर्स होते हैं, जिनके लिए आपको यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम, यू हैव टू वर्क फॉर देम, यू आर यू नो, यू हैव टू डू मैनी थिंग्स फॉर देम। सो वाइल डिसिप्लिन इज एवर प्रेजेंट, दोनों क्षेत्र में रहता है, लेकिन डिसिप्लिन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ यूनिक ट्रांजिशन, एंड दैट आई थिंक इज व्हाट ट्रेनिंग टीचेस यू ओवर 4 years, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, और आप कैसे जो है प्रेशर को सहते हैं, उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। सो आई थिंक दैट इज द ट्रांजिशन बिटवीन यू नो बिफोर ज्वाइनिंग द फोर्सेज एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द फोर्सेज।
0: जी, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत समय से, जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी और मेरे दोस्त जब इंटरमीडिएट एकेडमी उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद वो काफ़ी बार कहते थे कि अंतिम पग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंतिम पग इंटरमीडिएट एकेडमी देहरादून में स्थित, जब भी इसका नाम लिया जाता है तो आधी से ज़्यादा लोगों का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और हम जैसे लोगों के लिए वो मंदिर है और हमारा सर झुक जाता है, अंतिम पग क्या है?
1: सो अंतिम पग इज दैट फाइनल स्टेप विच चेंजेस यू फ्रॉम अ केयर फ्री बिंदास अंडर ट्रेनी टू अ रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग ऑफिसर। कहने को तो वो एक सेकेंड का और एक कदम है, लेकिन दैट ट्रांजिशन इज वेरी वाइड, यू नो, आप उस दिन रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और हर डिसीजन, हर जो आप सोच है वो आपकी बदल जाती है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ लैंडमार्क इवेंट इन एक फौजी ऑफिसर के लाइफ में, जब वो ये ट्रांजिशन करते हैं।
0: वाह, क्या बात है। उस दिन से समझ में आने लगता है कि देश की मिट्टी का मोल क्या है, और उसी का तिलक लगाकर आप कहना चाहते हैं कि हमने अपना जीवन अपने देश के नाम कर दिया। केसरी फिल्म से आप ही की फरमाइश पर ये गाना हमारे लिसनर्स तक पहुंचा रहे हैं हम, और कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो हमारी धड़कन होते हैं, वो हमारे दिल की बात कहते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, और संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ हैं कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, लेकिन इनका जोश, इनका जज्बा, हर एक एक शब्द इस बात का यहाँ पर परिचायक है, साबित करता है कि इनके लिए भारतीय सेना क्या मायने रखती है। कर्नल चौहान, आपसे पूछना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स कहीं ना कहीं आपको तैयार करती हैं, लेकिन क्या जब एक ऑफिसर जब कमीशन्ड हो जाता है और जब उसको पोस्टिंग्स दी जाती हैं, जब उस पर कार्यभार सौंपे जाते हैं, तो जिंदगी जैसे 360 डिग्री टर्न लेती है, ऐसा होता है क्या?
1: जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा अंतिम पग, सो दैट अंतिम पग या लास्ट स्टेप जो है वो आपको ऑफिसर बना देता है, पर आप सही मायने में ऑफिसर तभी बनते हैं जब यू कैन कमांड एंड अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ योर सोल्जर्स। सो ये जो ट्रांजिशन है, जब आप यूनिट जाते हैं तो वहाँ विभिन्न

0: किस्म के सोल्जर्स मिलेंगे आपको, कुछ आपकी उम्र के होंगे, बिकॉज यू गेट कमीशनड एट 21, 22, 23 इयर्स ऑफ एज. सो कुछ आपकी उम्र के होंगे, कुछ उम्र में आपसे ज़्यादा होंगे, कुछ काफ़ी ज़्यादा होंगे. रैंक में आप शायद उनसे ऊपर हों, बट कॉम्पिटेंस में, स्किल लेवल में, एक्सपीरियंस में अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं. सो जब आप वहाँ पहुँचते हैं, यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा स्टेप्स. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है टू मेक योर सेल्फ इक्वल टू, इफ नॉट बेटर देन देम, एंड देन ओनली यू विल कमांड देयर रिस्पेक्ट, अर्न देयर रिस्पेक्ट एंड बिकम एन ऑफिसर इन द ट्रू सेंस. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज दैट सडनली फ्रॉम अ वेरी स्केड्यूल्ड इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको कब उठोगे, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ट्रेनिंग करोगे, कब सोओगे, वो सब जो है वो राइटिंग में आपको मिलता था. एंड नाउ यू कम इन टू अ सिचुएशन वेयर देर इज लॉट ऑफ अनसर्टनिटी. अनसर्टनिटी के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 30, 35, 40, 50 पीपल. यू हैव टू मेक डिसीजंस, यू हैव टू यू नो डू मल्टीपल थिंग्स, यू हैव टू टेक रिस्क, बिकॉज दीज आर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन. So, you know, suddenly maturity is thrust on your shoulders, and this is a very interesting, very painful, and very necessary stage. आप तभी जब जब आपके soldiers आपके साथ आराम से बात कर सकते हैं, they can approach you, आपके साथ train कर सकते हैं, आपके साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं. That is the day you truly become an officer.
1: और मुझे लगता है कि शायद ये वो एक क्षण होता होगा जहाँ पर आप स्वयं से लड़ते हैं. मैदानी जंग में लड़ना तो अभी बाकी है, लेकिन यहाँ सबसे पहली लड़ाई खुद के साथ है.
0: बिल्कुल, बिकॉज यू हैव टू लीड, यू हैव टू गेट अप एंड गेट गोइंग. है ना, वो आराम का कि कोई बता देगा कब उठना है, कब करना है, वो जमाना चला गया, वो टाइम चला गया. एंड देयरफॉर यू हैव टू फाइट अगेंस्ट योरसेल्फ टू प्रूव दैट यू आर as good as the troops that you lead, jinke jinki command aapko di gayi hai. So ye pehli ladai aapke sath hai, because that hard work takes effort.
1: Abhi aapne jitni baatein mujhe batayi hain, kahin na kahin ek prashn aur mere dimag mein aaya hai. Aur aksar jab hum in teen shabdon ko dekhte hain to ye matra shabd nahi reh jate, inka maayna, inki paribhasha bahut zyada badi ho jati hai. Agar main kisi bhi officer se puchungi to bas wo yahi kahenge, naam namak nishan. नाम नमक निशान क्या है?
0: सो दिस इज द इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड मैं इसको थोड़े कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ. जब मैं कमीशन हुआ तो जो मेरे ट्रूप मेरी यूनिट के ट्रूप्स थे वो हिल्स और हिल ट्राइब्स में से थे. तो वो कश्मीर घाटी से, जम्मू से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, असम से, और जो नॉर्थ ईस्ट की सेवन सिस्टर्स हैं उन सब के से आए हुए थे. नागास थे, मीज़ोस थे, मणिपुरीज थे, मेघालय से थे, त्रिपुरा से थे. एंड अगर देखा जाए तो जो कश्मीर से है और जो नागालैंड से है, उसके बीच में देर इज़ नो अफिनिटी, देर इज़ नथिंग कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है. लेकिन एक यूनिट में, एक टुकड़ी में होने के बनस्पत, बिकॉज यू ट्रेन टुगेदर, यू ईट टुगेदर, यू लिव टुगेदर, एंड समटाइम्स यू डाई टुगेदर, आपस में वो एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जीवन व्यतीत करने के लिए, यू ब्रेक, जैसे बोलते हैं ना, आपने नमक जो है एक दूसरे का खाया है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एसेंस, दैट कमराडरी या आपसी भाईचारा ये फौज आपको सिखाती है. देन ये टुकड़ी जो है आपके ऊपर आँच ना आए, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए. आप लड़ाई में, ऑपरेशंस में जा रहे हैं या ट्रेनिंग में कर रहे हैं, आपकी कोई गलती ना निकाले. दैट इज़ व्हाई यू ऑपरेट एज अ ग्रुप, टुकड़ी, वो जो है आपके निशान के लिए, आपके नाम के लिए. ठीक है, वो जो है कि आपकी यूनिट का नाम खराब ना हो. एंड इफ़ यू लुक एट इट एट अ लार्जर लेवल, ठीक है, यूनिट्स, ग्रुप्स ऑफ यू नो जो भी फॉर्मेशंस हैं, कि देश का निशान, फौज का निशान जो है उस पे आँच ना आए. ठीक है, सो राइट फ्रॉम द फैक्ट दैट एट द लेवल आप अपने भाई के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी यूनिट के लिए लड़ रहे हो, और आप अपने देश के झंडे के लिए लड़ रहे हो, दैट इज द कोर इथॉस ऑफ द इंडियन आर्मी. एंड देयरफॉर

0: नाम नमक निशान।
1: जी, नाम नमक निशान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर सिपाही, हर ऑफिसर, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आर्म फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप भटिंडा में डिप्लॉय हुए, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आई, उसके उपरांत फिर कैसे सिलसिला आगे बढ़ता रहा?
0: मैं ऐसी यूनिट में था जिनकी कुछ जगहों पे टेन्योर्स थोड़े लंबे रहते हैं, तो भटिंडा में इनिशियली कमीशन हुआ और बीच में हमें काफ़ी कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो 1.5-2 साल जो है हमारे कोर्सेज में निकल जाते हैं। अलग अलग विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग होती है और वो जब ख़त्म हुए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। एक डिप्लॉयमेंट हो रही थी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये इसराइल लेबनन बॉर्डर पे यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग मिशन है। उसमें नॉर्वे हट रहा था और इंडियन कंटिजेंट वहाँ डिप्लॉय हो रहा था, तो उसका हिस्सा बनने का मेरी सिलेक्शन हो गई और फिर मैं वहाँ डिप्लॉय हो गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि हालांकि मैं इंडियन आर्मी के साथ और इंडियन यूनिट के साथ गया था, आई वॉज इन अ मल्टी नेशनल यूनिट मोबाइल रिजर्व, जिसमें 7 डिफरेंट नेशंस के ट्रूप्स थे। तो एक एक प्लटून जो है अलग अलग देश से थी, तो वी हैड आयरलैंड के थे, फिनलैंड के थे, घाना के थे, फिजी के थे, पोलैंड के थे, नेपाल के थे, विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू नो ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी क्लोजली हम जो है एक दूसरे के साथ रहते हैं, ऑपरेट करते हैं और ट्रेन करते हैं।
1: जी, एक ही उद्देश्य के साथ एक साथ रहना अपने आप में ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत क्षण होते होंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग देशों के सिपाही, अलग अलग देशों से ऑफिसर्स, वहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ पर आपके साथ एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कितना सुखद होता है, कितना प्यारा होता है, क्योंकि काम के अलावा भी आपको बहुत से क्षण ऐसे मिलते होंगे या काम के दौरान मिलते होंगे जहाँ आप को दूसरी की जबान में या दूसरे जो हमारा दूसरे देश का जो सिपाही है, सोल्जर है, ऑफिसर है, उसके बारे में जानने को मिलता है, उस देश के बारे में जानने को मिलता है, अपने देश को का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, वो कितना प्यारा रहा?
0: बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। यू नो दिस वाज द पहली बार था कि मैं ऐसी डिप्लॉयमेंट पे था, और जब आप ऐसे जाते हैं तो थोड़ी बहुत आशंकाएं होती हैं कि कैसे दूसरे कैसे लोग होंगे, कैसे ऑपरेट करते होंगे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। बट एडवांटेज ये रहता है कि आप साथ में रहते हो, दिन रात साथ में ऑपरेट करते हो, ट्रेन करते हो, खाना पीना साथ में खाते हो। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम अपने देश का, अपने कल्चर का, अपनी प्रोफेशनलिज्म का डिस्प्ले करें, उसी प्रकार हम उनके बारे में सीखें। ये बड़ा आप अगर कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, नहीं तो इतनी क्लोज क्वार्टर्स पे इतने लंबे टाइम के लिए साथ रहना, साथ ऑपरेट करना बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। एंड यू नो यू गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को आप इंटीमेट तरीके से जान पहचानते हो। इट इज़ अ वेरी गुड फॉर शोकेसिंग आवर नेशन, शोकेसिंग द इंडियन आर्मी, its capabilities and what kind of people you know operate in that. So and you know on a matlab apart from training and all social events, games, mm-hmm. sports, isme bhi interaction hota tha. So this was a very unique experience and I think this kind of a cross cultural communication is very good for exposure and for displaying our capabilities to the world.
1: बहुत खूब। कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई बात, कोई याद जो यहाँ शामिल करना चाहते हैं, हमारे लिसनर्स तक पहुँचाना चाहते हैं?
0: या सो जस्ट ऑन द साइड, बाकी तो चलो करते थे हम, लेकिन हमने अपनी लोकल इंडियन राम और छम्मा छम्मा, उस टाइम पे जो है बड़ा फेमस गाना था, वो इंट्रोड्यूस किया अपने कैंप में। एंड जब भी सोशल इवनिंग होती थी, बाकी हो ना हो, छम्मा छम्मा पे जो है खूब जो है वहाँ पे भंगड़ा निकलता था। इट डिड नॉट डिपेंड वेदर यू आर फिन और यू आर आयरिश और यू आर यू नो फ्रॉम फिजी, लेकिन सब जो है छम्मा छम्मा पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज खूब दबा के डांस और मजे लेते थे।
1: तो ये बात निश्चित है कि जब वो अपने घर लौटे होंगे तो उन्होंने अपने देश में भी जाकर खूब छम्मा छम्मा किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उन्हें छम्मा छम्मा की धुन पर नाचने के लिए मजबूर कर दिया।
0: हाँ जी, बात

0: में भी मिशन जब हम वहाँ से वापस आ गए, लेकिन ये बातें जो है काफ़ी सालों तक चलती रही कि कैसे जो है बाकी कंटिंजेंट्स जो है इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन डांस से बड़े प्रभावित हुए और बड़ा आनंद लेते थे।
1: हमने ये तो सुना है, भले ही आपके यूनियन मिशन की बात हो, हम जब भी आर्म्ड फोर्सेस पर्सन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अपनी अंतिम सांस तक करते हैं, लेकिन जिंदगी जीना तो कोई आप लोगों से सीखे, क्योंकि जब भी आपको क्षण मिलते हैं ना, आपको यही लगता है कि कल हो ना हो, बस यही एक क्षण है, इसको जी लिया जाए और इसको खूब तहे दिल के साथ उसे एंजॉय करते
0: बिल्कुल जी,
1: हैं।
0: आपने बहुत सही बात पकड़ी है।
1: तो कहते हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा एक दिन होता है, लेकिन उसे एक दिन में पल कैसे चुराए जाए वो आप इनसे सीखिए। जिंदा दिली अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे भारतीय सैनिक के नौजवान या फिर वो ऑफिसर्स जो रिटायर हो गए हैं, जो कार्यरत हैं, बस उन्होंने एक ही बात जानी है कि जीवन अमूल्य है और इस जीवन को ना आप जिस तरह से जिस शिद्दत के साथ जीना चाहते हैं जिए, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कार्यभार को या फिर अपने उद्देश्यों को कभी भी आप अपने आप से दूर ना कीजिए, आप फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी।

0: वेलकम बैक संदेश टू सोल्जर्स. आज के संग में आपका पुनः स्वागत है. और आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद कर्नल विवेक चौहान, जो एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं. और हर बार की तरह ये शो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी किसी आर्मी ऑफिसर से बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस होने लगता है कि जैसे मैं देश के प्रति अपनी कृतज्ञता को यहाँ पर आप सभी के सामने रख रही हूँ. तो बहुत ही खूबसूरत पल जिस तरह से आपके लिए, उस तरह से मेरे लिए, क्योंकि मेरे सामने बैठे हैं कर्नल विवेक चौहान. कर्नल विवेक चौहान, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ऑपरेशन विजय हम सबके लिए किसी न किसी मायने में, चाहे वो आर्म फोर्सेस में रहा है या नहीं रहा है, पूरे देश के लिए ही ऑपरेशन विजय कहीं ना कहीं बहुत ही दिल के करीब रहा है. ऑपरेशन विजय का आपके लिए, आपका चयन होना, आपका वहां पहुंचना कैसा सीधा रास्ता था, क्या हुआ था जो आप उस मिशन का हिस्सा बन पाए?
1: तो एक्चुअली मेरे डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन विजय में वाज अ लिटिल कॉमेडी ऑफ एरर्स. वो थोड़ी गलती से हो गया. तो मैं लेबनन से वापस पहुंचा ही था. ऑपरेशन विजय अभी स्टार्ट हुआ था, मई का वक्त था, और प्लेन्स में भी जो है डिप्लॉयमेंट थी. हम लोग अपने अपनी जगह डिप्लॉयड थे. तो उससे पहले हमारी एक दस्ता जो है लगभग 22 आदमी का, वो द्रास में चला गया था, डिप्लॉय हो गए थे. और उसमें से दो कैजुअल्टीज हो गई और दो हमारे साथी नहीं रहे. सो जब ये हुआ तो वहाँ ऑफिसर नहीं था, तो मेरे सीओ साहब थे, उनको लगा कि ऑफिसर होना चाहिए, स्पेशली आफ्टर कैजुअल्टीज हो गए. तो किसी टाइम सुबह उन्होंने अपने बॉस जो जनरल साहब थे उनसे बात करी कि, और क्योंकि सीधे में बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला दैट मैंने एक ऑफिसर नॉर्थ भेजना चाहता हूँ. जनरल साहब को लगा नॉर्थ मतलब प्लेन्स के नॉर्थ में कहीं डिप्लॉयमेंट. तो उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, वेरी गुड, और आज ही निकालो. तो वो आज ही निकालो का इफ़ेक्ट ये हुआ कि सीओ साहब ऑफिस से निकले, मेरे को बोला 2 घंटे और आप निकलो सीधा द्रास के लिए. तो आपको समझना चाहिए कि 99 का टाइम था, मोबाइल फोन्स वगैरह वर नॉन एग्जिस्टेंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट ढीला था, रिजर्वेशन वर नॉट इजी टू गेट. तो हमारे को अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग करी, 2 हथियार पकड़ा दिए, एमिनेशन पकड़ा दिए, 4 ग्रेनेड पकड़ा दिए, और मेरे साथी थे जो मेघालय से, हमको बोला कूच करो, चलो पहुँचो. तो रीचिंग द्रास इन इटसेल्फ वाज एन एडवेंचर. वो क्या ट्रेन के गार्ड के कैबिन में पीछे बैठ के, एंड ही वाज मोर देन हैप्पी, बड़े खुश हुए कि हम जा रहे हैं लड़ाई के लिए, तो आप हम मेरे साथ चलो. लिफ्ट लेते लेते जो है हम द्रास पहुंच गए. 3-4 दिन लगे पर हम पहुंच गए. एंड इट वाज अ वेरी यूनिक टाइम. आपके शो में मैं उन सबको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ जो हमारे साथी वहाँ आज नहीं रहे बिकॉज ऑफ ऑपरेशंस, और उनको भी जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, क्योंकि दोज आर वेरी डिफ़िकल्ट टाइम्स. जब एक वैली के अंदर शेलिंग होती है या गोले गिरते हैं तो बड़ी दहकाने वाली गूंज होती है, बड़ा सीरियस टाइम होता है. सो इट इज़ यू नो क्रेडिट टू all the soldiers of the Indian Army who did a very impressive job. And जो लोग वहाँ जाते हैं they will understand कि high altitude में उन heights पे चलना, खाना पीना, लड़ना कितना मुश्किल है. वहाँ का एक interesting वाक्या सुनाता हूँ. तो मैं पहुँच गए हम, तो ऊपर नीचे जाना पड़ता था अलग अलग locations में. तो हमारी गाड़ी जो थी उसके ऊपर cover नहीं था, क्योंकि वो हमारा equipment वैसा था. तो मेरे ड्राइवर थे जगतार सिंह, जो सरदार जी थे. अभी हम जा रहे होते तो वहाँ हुक्म था कि सब जो है हेलमेट पहनेंगे, तो मैंने भी हेलमेट पहना होता. फिर मैं जगतार की तरफ देखता जो जिसने पगड़ी पहनी.

0: हुई थी। अब जब शेलिंग स्टार्ट होती तो मेरे को गिल्ट हो जाता कि जगतार ने जो है वो पगड़ी पहनी है, उसने हेलमेट नहीं पहना, तो मैं अपनी हेलमेट निकाल के आउट ऑफ गिल्ट जो है अपनी बेरे पहन लेता। फिर पास में कुछ आवाज़ें आती तो मेरे को डर लगता और कि नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती कि हमें बोला गया नहीं हेलमेट पहनना है, तो मैं हेलमेट पहन लेता। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी तरफ़ देखता और मैं देखता उसकी तरफ, तो मुझे लगता ये तो गलत है, ये बिना हेलमेट के चल रहा है और मैंने हेलमेट पहना हुआ। फिर वही कहानी उल्टा, फिर बेरे पहनो फिर हेलमेट। सो दिस वॉज यू नो दिस बिकम अ वेरी ह्यूज लाफिंग फैक्टर फॉर जगतार एंड फॉर अदर ट्रूप्स ऑल्सो।
1: बट ये बहुत अच्छा उदाहरण है नाम नमक निशान का, कि जहाँ अपने साथ साथ अपने साथी की भी उतनी ही रक्षा करना जो आपके साथ उसी मिशन में शामिल है।
0: या आई थिंक दिस इज द इथॉस विच वी आर ब्रॉट अप विद, है ना। एंड वाइल इट वॉज नॉट फनी दैट टाइम, टुडे इन हाइंडसाइट आई कैन लाफ ओवर इट एंड सो कैन जगतार।
1: जी बिल्कुल, जगतार साहब भी जब इस बात को सोचते होंगे तो उनको ज़रूर हंसी आती होगी। लेकिन जिस तरह की अपब्रिंगिंग, कहूँगी मैं यहाँ इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि परवरिश हम अपने बच्चों के लिए ही कहते हैं, हमने अच्छी परवरिश दी है, और इंडियन आर्मी भी इसी तरीके की परवरिश देता है कि अपनी रक्षा करो, अपने साथियों की रक्षा करो और वापस अपने साथी को लेकर आना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मिशन में फतेह तो हासिल करनी ही करनी है, पर इसे कभी नहीं भूलना कि साथी को कभी आधा अधूरा यानी कि आधे रास्ते पर नहीं छोड़ना।
0: बिल्कुल, इफ़ यू आर रेडी टू सैक्रीफाइस फॉर अ फेलो सोल्जर यू कैन डेफिनेटली सैक्रीफाइस फॉर योर कंट्री।
1: जी
0: आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
1: जी अब मुझे एज अ हेलीकॉप्टर पायलट क्या चैलेंजेस रहे और क्या कोई ऐसी बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना थल से एकदम आप वायु, थल से एकदम जमीन से एकदम आसमान में पहुंच गए, तो किस तरीके से एक आर्म्ड फोर्स पर्सनल जब एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपने कर्तव्य निभाता है क्या बदलाव आते हैं?
0: सो मैंने एविएशन के लिए अप्लाई किया बिकॉज यू नो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई फील एंड माई प्रिंसिपल इज दैट देर इज़ वन लाइफ, एक जिंदगी है और हमें उसको वी हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट, है ना। ऐसा कोई चीज़ छूटे ना कि हम 20 साल बाद रिग्रेट करें कि ये कर सकता था और नहीं किया। सो दैट इज़ वाई मैं अप्लाई किया, मैंने एविएशन के लिए सिलेक्ट हो गए, 1.5 साल ट्रेनिंग करी अलग जगह पे और फिर मैं श्रीनगर में जो है अपनी पहली पोस्टिंग मैंने मांगी थी वहाँ के लिए ऑपरेशन एरिया के लिए, तो वहाँ पे मेरे को पोस्ट कर दिया गया। सो वो ये जो बदलाव है ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि जब आप ग्राउंड फोर्सेस में होते हैं तो आपकी रीच जो बड़ी लिमिटेड होती है, और जब आप एविएशन में स्पेशली आर्मी एविएशन में जाते हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी और ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा होते थे वैली में। सो पूरे कश्मीर घाटी, अलग अलग जगह जहाँ लोग जाते भी नहीं हैं वहाँ जाने का मौका मिला, वहाँ अलग अलग ऑपरेशंस करने का मौका मिला। लेकिन सबसे यूनिक वो रहा कि जब कोई कैजुअल्टी हो जाती थी ऊंचाई में डिफ़िकल्ट एरियाज़ में, वहाँ पहुँच के उनको टाइम से हॉस्पिटल तक लाना वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग इवेंट्स। देर आर मैनी जहाँ हम नहीं कर पाए, बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू डू at some risk and sometimes quite a bit of risk is one of the few satisfying things that mere ko lagta hai in my career as a helicopter
1: kya khoob hamare hum jo bhi kaam karte hain usme ek satisfying point zarur hota hai aur aapke liye satisfying point tha jahan par jeevan daan yani ki jeevan bachaya aur apne jeevan ko jab hum uske bare mein nahi sochte hain aur aisa sirf ek armed force person hi soch sakta hai ki jeevan ko to hatheli pe lekar chalte hain और इस उद्देश्य से चलते हैं कि मेरा जीवन तो दूसरे के लिए है।
0: और इसका यू नो आई आल्सो वांट टू फोकस ऑन कैमराडरी, जो हमारी आपसी मिलाप और एक दूसरे के लिए जो करने के लिए, ठीक है, इवन एट प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिस्क। तो उसके 5-6 साल बाद मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था और एक टुकड़ी के ऊपर था, कमांड कर रहा था, ऑपरेशन चल रहे थे जंगल में और कुछ कैजुअल्टीज़ हो गई, 2 आदमी हमारे उनको गोली लग गई और एक उनमें से बहुत क्रिटिकल था, बारिश का मौसम था एंड उनको इवैक्यूएट करना बड़ा मुश्किल रहता।

0: क्योंकि रोड दूर था। तो मेरे एक साथी थे जिन्होंने मेरे साथ एविएशन में पहले सर्व किया था, तो उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, वी आर इन अ डिफ़िकल्ट एरिया, और अगर यहाँ से नहीं निकाल पाए तो ये शायद नहीं बचेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ दैट कमराडरी, आपसी जो एक दूसरों के करने की जो ज़िद होती है जिसको बोलते हैं, उन्होंने बोला बाकी तो आप करते रहो जो भी आपका प्रोसेस होता है हेलीकॉप्टर डिमांड के लिए, लेकिन मैं यहाँ से टेक ऑफ करूँगा। और वो आए ऐसी जगह पे आए जहाँ 200-300 मीटर दूर गोलियाँ चल रही थी, ऐसी जगह लैंड किए जहाँ पे खेत में पानी था, लेकिन उन्होंने एट प्रोफेशनल रिस्क, एट पर्सनल रिस्क ये किया। सो यू नो दिस इज़ पार्ट ऑफ द इथॉस, दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट फॉर ईच अदर देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ असिस्टेंस दैट वी गिव टू ईच अदर।
1: कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा जाता होगा ना, यहाँ पे भी एक तरह का एक्सचेंज है। आप अपने फेलो को कोई डिसीजन लेते हुए, कोई निर्णय लेते हुए, कोई जिम्मेदारी लेते हुए सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता था। दिस ऑल बट इट रिवॉल्व्स अराउंड यू।
0: यस, एंड इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द टू योर सोल्जर्स, टू योर कॉलीग्स कि यू नो वी आर नॉट गोइंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, हमें पीछे नहीं छोड़ेगा कोई। ठीक है, अगर आज हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, देयर इज समबडी लुकिंग आफ्टर अस। So that's a very strong feeling and that's a very strong ethos.
1: जी, इसके बाद फिर राष्ट्रीय राइफल्स में आप रहे, जैसलमेर, दिल्ली, यहाँ सभी आई मीन पोस्टिंग्स में आपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। 23 साल बाद रिटायरमेंट, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्या आज भी इस बात को महसूस करते हैं? और जब रिटायरमेंट लिया तो क्या उस रिटायरमेंट फेज से बाहर निकलना आसान था, मुश्किल था? ये जहन को मालूम हो रहा था कि कुछ कुछ छोड़ आया हूँ?
0: एक्चुअली रिटायरमेंट से पहले ज़्यादा मुश्किल था, और रिटायरमेंट से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल था। एंड अभी आपने सोशल मीडिया और बाकी जगह भी देखे होंगे, देर इज़ अ यंग ऑफिसर हु हैज टेकन रिटायरमेंट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। आप एक जज्बे के साथ फौज में आते हैं, उस जज्बे के साथ फौज में रहते हैं, एंड इफ़ यू हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट environment, from that us group se aap nikalna chahte hain, that is a very difficult decision. So it took me almost 3-4 months of sleepless nights to decide ki chhodu ya nahi chhodu, but finally jab maine choda, uske baad actually mujhe realize isliye nahi hua kyunki mere paas time nahi tha. I went to Indian Institute of Management Ahmedabad, एंड वो ख़त्म होते ही मैं न्यूयॉर्क चला गया, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में। सो दैट जब तक मुझे जो रियलाइज़ होना चाहिए था, जो फ्री टाइम होना चाहिए था फौज से निकलने के बाद कि मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या कैसे हूँ, वो रियलाइज़ हो नहीं पाया। एंड यू आर राइट, वंस एन ऑफिसर ऑलवेज एन ऑफिसर, और वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। आज भी आई फॉलो द सेम टाइम लाइन, सुबह उसी टाइम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू शेक ऑफ दैट हैबिट।
1: जिस तरह से इंटर मिलिट्री अकेडमी में अंतिम पग उसको पार कर, यानी कि उस अंतिम क्षण तक ट्रेनिंग का प्राप्त कर फिर अपनी सर्विसेज देना, और फिर अंतिम सांस तक सिर्फ भारतीय सेना के साथ जुड़े रहना, इसके बीच का जो समय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंतिम सांस तक जो व्यक्ति सोच लेता है कि मैं तो भारतीय सेना को ही समर्पित हूँ, उसके लिए ये डिसीजन लेना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, निश्चित रूप से। लेकिन मैं जानना चाहूँगी, व्हाट आर प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स, अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो?
0: ओके, सो प्री मैच्योर रिटायरमेंट, बाय द जो नाम जैसे सजेस्ट करता है, इट इज़ रिटायरमेंट, अप्लाइंग फॉर रिटायरमेंट और टेकिंग रिटायरमेंट बिफोर योर मैंडेटरी सर्विस पीरियड और योर मैंडेटरी बॉन्ड पीरियड हैज़ एक्सपायर्ड। परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 20 साल मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसी प्रकार सोल्जर्स के लिए अलग अलग रैंक पे टाइम निर्धारित है। सो समटाइम्स बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स, बड़े सारी, इट्स अ लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस, एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ वेरियस कंपल्शंस और पर्सनल रीजन्स, a man is forced to break away from the organization or go away from the organization, which is a very difficult time. So you apply, and if the organization

0: agrees on the justification ki ha aapki baat mein merit hai, they will let you go before your mandatory time. So that is what premature retirement is.
1: Ji, बहुत सारे हमारे पास यहाँ संदेश आए हैं एंड आपको बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत मैसेजेस के जरिए अपना प्यार अब तक बरसा रहे हैं. यहाँ पर अनिल कुमार हैं जिन्होंने संदेश भेजा है उत्तराखंड से, और इन्होंने आपको नमस्कार कहा है, विश्वकर्मा पूजा की कुछ शुभकामनाएं दी हैं. बिल्कुल, एक ऑफिसर को जिसने आर्म फोर्सेज में अपना दमखम साबित किया अपने कार्यकाल में, उसको विश्वकर्मा पूजा का बिल्कुल मतलब पता है, क्योंकि उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र शारी मशीनरी ही है जो जिससे उसे सशक्तिकरण महसूस हुआ है. तो विवेक सर, देश की सेवा के लिए आप जो कर रहे हैं, तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है. जय हिंद, जय भारत. तो आज भी जब इस तरह के संदेश मिलते हैं, यू आर द हीरो, द रियल हीरो, हम यही कहेंगे कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको लोग इतना प्यार करते हैं, काबिले तारीफ है. संदेश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से आया है, सबलपुर से नाम चारुण है इनका, जय हिंद इन्होंने लिखकर भेजा है. पंकज का अमरावती से आया है संदेश, कहते हैं कर्नल विवेक चौहान रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिसे बातचीत बढ़िया लगी है और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, और ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि. और आकाशवाणी एफएम रेनबो के माध्यम से तो हम नित्य प्रति सभी सोल्जर्स को, ऑफिसर्स को नमन कहते हैं कि आपकी कर्तव्य निष्ठा हमारे लिए सर्वोपरि है. अगला संदेश यशवंत का आया है महाराष्ट्र से, और ये भी आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं यशवंत. संदेश हमारे पास आया है तमिलनाडु से, शूरवीर सेना नायक अधिकारी को मेरा प्रणाम, जय हिंद विजय कुमार वी का संदेश है. और जिन कठिन परिस्थितियों में हमारे जवान, हमारे सैन्य अधिकारी काम करते हैं, अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं, उनको सल्यूट करते हैं हमारे ये दोस्त. जय हिंद लिखकर भेजा है दीपांशु ने भटिंडा से, जहां आप पहली बार एज अ कमीशन्ड ऑफिसर तैनात हुए थे. तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक एफिनिटी हो जाती है, जैसे कि जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी का नाम सुनते ही मेरी आपके साथ हो गई सर, ऑफिसर के साथ हो जाती है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होता है. अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके माता पिता इंडियन आर्म फोर्सेस, और अब आपका परिवार जिसमें खास तौर पर आपकी स्पाउस आपकी बेटर हाफ है, आपको ऑफिसर बनाने में आपके माता पिता का आर्मी का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन करने में आपकी बेटर हाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी. आपके पीछे आपका घर बखूबी वैसा ही चल रहा होगा जैसे आप उसे छोड़कर आते होंगे जब अलग अलग पोस्टिंग्स के लिए अकेले जाते होंगे. तो क्या कहना चाहते हैं?
0: सो आई हैव द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर जो वाइव्स हैं हमारे सोल्जर्स की, हमारे ऑफिसर्स की, बिकॉज यू नो इट इज़ उनकी सपोर्ट के बगैर आप ठीक से काम नहीं कर सकते. अगर आपके घर के घर से पीस है, आपकी वाइफ जो है आपके डिसीजन सपोर्ट करते हैं, कभी डिफ़िकल्ट डिसीजन होते हैं, कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास काम है, आपको रिस्क लेना है. सो दैट इज़ अ सैक्रिफाइस फॉर द फैमिली. And I have absolute respect for the ladies, for the wives of all our soldiers who let them go, who gladly let them go to their field postings for their deployments, for their trainings, bina ro dho ke, bina ruckus create kare hue, bina complaints kare hue, aur unki absence mein akele ghar sambhalna, bachchon ko padhana, bachchon ko dekhbhal karna, parents ko dekhbhal karna, सोशल एंगेजमेंट जो है उनको सिंगल हैंडेडली हैंडल करना, दैट इज़ अ क्रेडिट टू द लेडीज, टू ऑल ऑफ देम, एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर देम.
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी कमांडिंग ऑफिसर रही हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर के दरवाजे के अंदर घुसते ही आप जो है अपना रैंक जो है दूसरे अपनी स्पाउस को पहना दीजिए और सैल्यूट कर दीजिए.
1: वाह क्या बात है. तो ऑल दी आर्मी ऑफिसर्स हु आर लिसनिंग टू अस, जितने भी सुन रहे हैं, रिटायर भी हो चुके होंगे, तो शायद आपकी बात से वाकिफ होंगे कि सच में ऐसा ही होता है, और शायद एक घर चलाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को सिविलियंस को भी अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए. सो मैं यही कहना चाहूंगी कर्नल विवेक चौहान, यू आर नॉट रिटायर्ड, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप समय समय पर अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि एक ही जिंदगी है, बाद में जीवन में रिग्रेट्स ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो मिलता जाए या जो आप अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसे पा लीजिए. हमारे यूथ जो है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
0: मैं यूथ को सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, यू नो

0: please be proud of the defense forces, because they do sacrifice a lot on your behalf, and they feel proud of the fact that whatever they do it for the future of our country, and for the people of this country. So support them, be proud of them, and that is how you can thank them for their services.
1: जी, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा संदेश. और अब जो नगमा मैं यहाँ प्ले करने वाली हूँ, निश्चित रूप से उन सभी वाइफ्स के लिए है जो जिनका संबंध आर्मी से है, आर्म फोर्सेस से है, आर्म फोर्स्ड पर्सनल से, वो उनकी अर्धांगिनी है, स्पाउस हैं. तो हमारी ओर से आपको, आपके लिए ये गाना, और एक बार फिर से हम धन्यवाद करना चाहते हैं कर्नल विवेक चौहान का, जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, पर जैसा कि उन्होंने खुद कहा, वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, क्योंकि वो ऑफिसर जिंदा दिली के साथ जीना चाहता है और दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना चाहता है. तो मैं गीतिका आपसे लेती हूँ इजाज़त, होगी आपसे फिर मुलाकात.

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी की 1375वीं कड़ी।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक खूबसूरत विचार से, जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी ने। लिखते हैं, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक सच्चा व्यवहार और प्रेम ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। आप सबका आभार संदेश भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल। ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जो गीत कार्यक्रमों में जवानों उठो, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के जीवन पर प्रकाश डाला, वो बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। सबसे बढ़िया मुझे देशभक्ति गीत लगे। आप सबके उम्दा संदेशों के लिए एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की उन मजेदार लेकिन साथ ही साथ गंभीर परंपराओं के बारे में रोचक जानकारियां। तो श्रोता मित्रों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी अजब गजब परंपराओं की। अब तक हमने बात की उन जंगलों की जहां लोगों को संदेश दिया जाता है कि जंगल मत काटो, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जिसे काटना तो दूर कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। पिछले दो दिनों में हमने जापान और रूस का भ्रमण किया, आइए अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। वहाँ की खासी जनजाति एक अद्भुत पर्यावरण से जुड़ी परंपरा का पालन करती है। वहाँ के कुछ विशेष जंगलों को लाव क्यंटांग कहते हैं। खासी भाषा में लाव यानी वन और क्यंटांग यानी पवित्र होता है, यानी पवित्र वन या जंगल। इसे लेकर एक सुंदर लोक कथा है जो अलग अलग प्रकार से सुनाई जाती है। बहुत पहले की बात है, एक गाँव के किनारे घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली फूल, पक्षियों की आवाजें और बीच से बहती छोटी सी जलधारा। गांव के बच्चे उस जंगल को देखकर कहते, ये हमारा जंगल है। लेकिन गांव के बुजुर्ग उन्हें रोककर कहते, नहीं, ये हमारा जंगल नहीं है, हम तो बस इसके रखवाले हैं। गांव के मुखिया और बुजुर्ग सबको यही समझाते, जंगल हमारा नहीं है, ये प्रकृति का वो वरदान है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है। लोक कथा कहती है, एक दिन गांव में एक व्यक्ति को लकड़ी की जरूरत पड़ी। उसने सोचा, जंगल इतना बड़ा है, अगर एक पेड़ काट भी दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में पहुंचा। जैसे ही उसने पेड़ पर पहला प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, उसे बुजुर्ग की बात याद आई, कुछ लेने से पहले इस जंगल से जरूर पूछना, क्योंकि ये जंगल तुम्हारा नहीं है। उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। जितने भी लोग जंगल में पेड़ काटने आते, यदि उन्हें अपने बुजुर्गों की बात याद आ जाती तो वे भी अपनी कुल्हाड़ी वहीं छोड़ जाते। समय बीतता गया, एक पीढ़ी गई, दूसरी आई, फिर तीसरी। लोगों ने घर बनाए, खेती की, बाजार बनाए, लेकिन उस पवित्र जंगल को वैसा ही रहने दिया। न कोई पेड़ काटता, न शिकार करता, न वहां से लकड़ी उठाता, और जंगल वो हर वर्ष और घना होता चला गया। उसकी जड़ें मिट्टी को थामे रहीं, उसकी जड़ों ने और वनस्पतियों ने जल स्रोतों को संभाला, पक्षियों

0: छोटे जीवों को आश्रय मिला। लोग कहते, इस गांव में सबसे ज्यादा हरियाली है। श्रोताओं ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं पेड़ लगाइए, जंगल बचाइए, जल बचाइए, तो खासी समुदाय की ये पुरानी परंपरा हमें एक और गहरी बात सिखाती है। वो ये कि प्रकृति की रक्षा केवल नियम बनाकर नहीं, उसके प्रति सम्मान पैदा करके भी की जा सकती है, क्योंकि नियमों से जो काम नहीं होते वे सम्मान देकर आसानी से किए जा सकते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, लोक कथा बताती है कि वहां एक जंगल को बचाने के लिए हजारों पहरेदारों या वन रक्षकों की जरूरत नहीं पड़ी। बस एक विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, हम जंगल के मालिक नहीं, रखवाले हैं। और शायद आज हमारी धरती को इसी विचार की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो खासी समुदाय के पुराने लोगों ने दिया है। और वो विचार है, ये जंगल हमारा नहीं है, हम जंगल के रखवाले हैं। तो श्रोताओ, आप तो सुविचार भेजते ही रहते हैं, आज सुनिए उमंग कार्यक्रम की ओर से ये सुविचार। आज अगर हम परिवार और आसपास के एक पेड़ को सिर्फ पेड़ न मानकर परिवार का सदस्य मान लें, तो दुनिया और ज्यादा खुशहाल बन जाएगी। अगर ये विचार आज हम धारण कर लें, तो शायद हमारी धरती थोड़ी और हरी हो जाए। शायद आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद दें कि हमने उन्हें केवल इमारतें नहीं, एक जीवित धरती भी विरासत में दी है। तो श्रोता मित्रों, कैसी लगी जानकारी पवित्र वन की, जरूर लिखकर बताइएगा। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, खासी समुदाय के बुजुर्गों और ग्राम प्रधानों का जवानों और बच्चों को जंगल के बारे में दिया जाने वाला मूल संदेश क्या है। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करें। किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को तुच्छ, निकृष्ट और छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी कभी भी किसी के काम आ सकता है।
1: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।

0: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
1: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
0: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए।
4: शेर और चूहे की दोस्ती, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब सुनिए अबला को सबला बनाने वाली अबला। ये कार्यक्रम सुप्रसिद्ध भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस की पत्नी श्रीमती अबला बोस के जीवन और नारी उत्थान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के बारे में बताता है।
1: इतिहास में बहुत सारी नायिकाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शायद बहुत अधिक स्मरण नहीं किया जाता, जिनका नाम दुनिया के प्रसिद्ध लोगों की सूची में नहीं मिलता, उनकी सराहना में प्रशस्ति गान नहीं लिखे गए और न ही उन्होंने अखबारों की सुर्खियां बटोरी, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया उसकी मिसाल दुर्लभ है।
5: जनस्मृति से भले ही वे नाम धूमिल और विस्मृत हो जाएं, लेकिन इतिहास उन्हें आदर सहित याद रखता है और कभी ना कभी उन्हें आभार सहित प्रकट अवश्य कर देता है। ऐसा ही एक नाम है अबला बोस का।

0: 19वीं सदी का अविभाजित भारत, देश में बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार, दहेज जैसी कई स्त्री विरोधी कुप्रथाएं थीं, जिन्हें चाहकर भी समाप्त नहीं किया जा सका था। ऐसे समय में प्रादुर्भाव हुआ बंगाल की महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, संघर्षशील और नारी अधिकारवादी विदुषी अबला बोस का।
1: उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया, लेकिन कौन थी अबला बोस? बता दें, वे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की पत्नी थीं। जगदीश चंद्र बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी और जीव भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया।
0: कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यदि कहा जाए कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की सफलता के पीछे भी उनकी पत्नी अबला बोस का हाथ था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अबला बोस का जन्म 8 अगस्त 1865 को बरिशाल में हुआ था। बरिशाल तब अविभाजित भारत का हिस्सा था और अब ये बांग्लादेश में है।
1: अबला के पिता दुर्गा मोहन दास ब्रह्म समाज के

0: सिद्ध नेता और समाज सुधारक थे। अबला की माँ ब्रह्ममयी परित्यक्त, विधवा और घरेलू हिंसा के शिकार स्त्रियों के उत्थान के लिए काम किया करती थी। एक दिन की बात है, अबला की माँ ब्रह्ममयी किसी मोहल्ले में रहने वाली मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
1: पानी ले आ रहा है?
0: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
2: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: न कमाता है, न धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है।
2: दीदी,
0: अरे इनको तो
2: दीदी।
3: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
2: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
3: अरे
2: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
3: हाँ हाँ,
2: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल

0: मजदूर स्त्रियों का हाल चाल पूछने गई थी। उनके साथ अबला भी थी।
1: पानी ले आ रहा है?
0: कल रात तो फिर भी कर आ गया।
2: क्या बताऊं दीदी, रोज का यही है। हम औरतों की तो हालत बहुत बुरी है दीदी।
0: ना कमाता है ना धमाता है, ऊपर से रोज जमाता है
2: दीदी।
0: अरे इनको तो
2: दीदी।
3: अरे आलोका, तुम सब ठीक तो है ना?
2: नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।
3: अरे
2: जिस दिन आप परिवार वालों को समझाने आई थी,
3: हाँ हाँ,
2: उसके बाद कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन अब फिर।
3: अब फिर क्या?
2: मुझको कहते हैं तू अपने आदमी को खा गई।
3: अरे?
2: हमारे साथ नहीं रह सकती, कहीं और अपना इंतजाम कर ले। कल रात मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँ दीदी, मायके में भी कोई स्वीकार नहीं करेगा।
3: रो मत आलोका। आज तुम नारी रात्रि पाठशाला में ही रुक जाओ, मैं सारी महिलाओं के साथ तुम्हारे घर जाऊंगी। बहनों कल सभी तैयार रहें।
4: जी दीदी।
3: हम सब आलोका के घर चलेंगे।
4: बिल्कुल चलेंगे।
3: आज इसके साथ हो रहा है, कल किसी के भी साथ हो सकता है।
4: जी दीदी।
5: जी दीदी,
4: हम सब तैयार हैं।
6: उन दिनों स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सिस्टर निवेदिता जैसे प्रगतिशील विचारों के प्रभावशाली लोगों के कारण समाज में परिवर्तन आ रहा था। इस कारण ब्रह्ममयी दीदी के नेतृत्व में आलोका जैसी अनेक स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा हो सकी।
0: बालिका अबला ने ऐसी बहुत सी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो ऐसे वातावरण और परिवार में पली जहां नारी उत्थान के लिए काम किया जाता था, नारियों को सशक्त, स्वावलंबी और शिक्षित बनाने पर जोर दिया जाता था।
6: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना हुई। वे मात्र 10 वर्ष की थी कि तभी उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अबला के बाल मन पर उनकी माता की जो छाप पड़ी वो आजीवन उनके साथ रही।
0: प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने बंग महिला विद्यालय और फिर बैथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया और फिर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए वे मद्रास चली गईं, जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है।
6: लेकिन सेहत खराब होने के कारण वे बंगाल लौट आईं और कभी वापस चेन्नई नहीं गईं। वापस नहीं जाने का कारण था 23 वर्ष की आयु में उनकी सर जगदीश चंद्र बोस से शादी। ये था वर्ष 1887 का।
0: समय बदल रहा था। व्याख्यान देने और शोध कार्य के लिए उनके पति सर जगदीश चंद्र बोस को अक्सर विदेश जाना होता था, तो वे भी उनके साथ हुआ करती थीं।
6: एक बार की बात है, शोध के सिलसिले में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए।

0: लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बहुत से देशों के वैज्ञानिक इस अवसर पर निमंत्रित थे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन वेलकम्स यू ऑल एट दिस ओकेजन। We have gathered here to facilitate Dr. Jagdish Chandra Bose, the great scientist from India. Now, I request the President of Royal Society to confer knighthood to Dr. Bose. From today, he will be the esteemed Fellow of the Royal Society. Now, I request him to kindly come on the dais to receive the knighthood. And ladies and gentlemen, it is said, behind every successful man, there is a woman. So now I request the great woman, Lady Bose, his wife, to come on the dais. Give this lady a standing ovation.
0: तब से वे लेडी बोस के नाम से जानी जाने लगी। उस रात डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस अपनी पत्नी अबला बोस के साथ भोजन के बाद बातें कर रहे थे।
2: वाह, सचमुच खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट था ना?
3: जी।
2: बैठो। अच्छा एक बात बताओ, आखिर बात क्या है? आज तुम थोड़ी चुप चुप सी लग रही हो।
3: नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ सोच रही थी।
2: सोच रही थी क्या?
3: मैं सोच रही थी कि यहाँ की स्त्रियाँ कितनी स्वतंत्र और सशक्त हैं। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ समाज में उनका बराबर का स्थान है, उनका भी सम्मान उतना ही होता है जितना कि पुरुषों का होता है।
2: बिल्कुल।
3: आपने देखा नहीं, आज आपके नाइटहुड सम्मान के दौरान आपकी पत्नी होने के नाते मुझे कितना सम्मान मिला।
2: हाँ, वो तो है अबला। इसीलिए इन लोगों ने इतनी तरक्की की है।
3: वो तो है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे अपने देश की स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
2: हाँ।
3: हमें उन्हें शिक्षित और स्वावलंबी बनाने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
3: आपको नहीं लगता?
2: लगता है अबला, बिल्कुल लगता है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात होगी। देखो अबला, तुम जो कुछ भी कर सकती हो जरूर करो। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
3: हाँ, हमें उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ही हमारे देश की स्त्रियों को उनका अस्तित्व दिलाएगी।
2: सही कहा तुमने, मुझे तुम पर गर्व है अबला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा।
3: मुझे भी तो आप पर गर्व है। आपने विज्ञान में बड़ी साधना की है और अपना आसमान ढूंढ लिया है। अब मुझे अपना आसमान ढूंढना है।
2: बिल्कुल।
3: एक ऐसा आसमान जहां हमारे देश की स्त्रियां उड़ान भर सकेंगी, इज्जत से किसी आजाद परिंदे की तरह।
2: ऐसा ही होगा अबला, बिल्कुल ऐसा ही होगा।

0: यूरोप और अमेरिका विदेश यात्राओं के दौरान उन्होंने उन देशों की महिलाओं की सशक्त सामाजिक, आर्थिक और रहन सहन की स्थिति को ध्यान से देखा। अबला बोस ने देखा कि यहाँ स्त्रियों की दशा बहुत उन्नत है। किसी भी कार्यक्षेत्र और विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी उन्होंने देखा कि जितने पुरुष कर्मी थे लगभग उतनी ही स्त्रियां भी थीं।
1: और यहीं से शुरू हुआ उनका आगे का सफर, जिसने एक गौरवशाली इतिहास रच दिया। एक और महत्वपूर्ण घटना ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 1917 में डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस को नाइटहुड की उपाधि मिली।
0: लंदन का रॉयल अल्बर्ट हॉल

0: फिर क्या था, यूरोप की यात्रा से वापस आकर वे लग गईं अपने अभियान में। अशिक्षा और पुरुषों पर आर्थिक और सामाजिक निर्भरता के कारण भारत में उस समय स्त्रियों की दशा दयनीय थी।
1: उन्होंने संघर्ष किया और 1919 में नारी शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसका काम प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, उनके लिए पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना, मातृत्व बाल केंद्र और विधवाओं हेतु कल्याण केंद्र खोलना था। उनके द्वारा खोले गए व्यावसायिक स्कूलों में

0: विधवा और आर्थिक रूप से कमजोर स्त्रियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और चमड़े का काम सिखाया जाता था।
1: इतना ही नहीं, अबला बोस के प्रयासों से कलकत्ता और झारग्राम में महिलाओं के उत्थान के उद्देश्य से महिला शिल्प केंद्र की स्थापना की गई।
0: अबला बोस के प्रयासों को देखते हुए बंगाल महिला शिक्षा लीग ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और बंगाल में स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों का नजरिया बदलने लगा। स्कूल जाने वाली बालिकाओं की संख्या बढ़ने लगी।
1: अबला यानी लेडी बोस को बड़ी खुशी होती जब स्त्रियां उन्हें बताती कि शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने से किस तरह उनके जीवन में खुशी आई है।
2: मेरी तो दुनिया ही बदल गई।
3: अरे दीदी, जब से बुनाई का काम सीखा है तब से घर वाला भी बड़ी इज्जत
4: है। जो बच्चे हैं ना, जब कमा के ले जाती हूँ।
3: दीदी, जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई है कि क्या ही बताऊँ। जब से मैंने वो टोकरी बनानी शुरू की है, घर के कामों में भी बहुत मदद मिल जाती है।
4: देखो मेरा पर्स, ये मैंने ही बनाया है।
3: अरे अपनी पाँव पर खड़ी है, किसी के आगे क्यों मांगना। सही बात है, हमें नहीं मांगना चाहिए किसी से। अब तो हम अपना काम कर रही हैं, अब हम सशक्त बन रही हैं।
4: बिल्कुल।
1: इस समय तक अबला बोस देश की प्रभावशाली महिलाओं के संपर्क में आ चुकी थीं, जिनमें भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, रमाबाई रानाडे, सिस्टर निवेदिता जैसी महिलाएं प्रमुख थीं। उन दिनों देश में महिलाओं को मताधिकार देने की बात चल रही थी। साल 1921 में भारत में पहली बार बॉम्बे और मद्रास में महिलाओं को मताधिकार मिला।
0: अबला ने बंगाल की महिलाओं के लिए आवाज उठाई और 1925 आते आते बंगाल की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिल गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा था,
5: मताधिकार के द्वारा अब बंगाल की महिलाएं भी समानता का अनुभव कर सकेंगी, ये सुनिश्चित कर सकेंगी कि उन्हें सम्मान पूर्वक जीने के लिए किसको चुनना है।

0: सन 1937 में उनके पति श्री जगदीश चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने उनसे वादा लिया कि नारी उत्थान के कार्य को वे निरंतर करती रहेंगी। अबला ने महिलाओं के हक में काम करना जारी रखा और उनके हित के लिए अथक प्रयत्न करती रहीं।
1: अपने जीवन के अंतिम समय में वो दार्जिलिंग में बस गई। 26 अप्रैल 1951 को इस महान महिला अधिकारवादी नेत्री लेडी अबला बोस का निधन हो गया। देश उनके अतुल्य योगदान को श्रद्धा सहित स्मरण करता है और अपना आभार प्रकट करता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
2: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1375वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। अब सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।

0: अभी आपने सुना निकोबारी कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। अब पेश है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आपने सुना मलयालम कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय दोपहर के 1 बजने को है। अब अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो हल्के लड़ाकू एफओसी ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान के वायुसेना में शामिल होने से सैन्य पायलट प्रशिक्षण में भारत की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का लाभ केवल बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका लाभ भारत के किसानों, छोटे कारोबारियों और ग्रामीण समुदायों तक भी पहुंचना चाहिए। अमेरिका के सिएटल में आइडियाज फॉर इंडिया फोरम में भारतीय अमेरिकी टेक विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान उन्होंने उद्योग जगत से एआई को आम लोगों तक पहुंचाने, देश की डेटा संप्रभुता और मानवीय निगरानी पर ध्यान देने का आग्रह किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भी कहा कि एआई की सफलता का आकलन समाज को होने वाले लाभ से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर अधिकारियों और लोगों के लिए मितव्ययिता संबंधी उपायों की घोषणा की है। पाकिस्तान ने ईंधन के इस्तेमाल और अधिकारियों की विदेश यात्रा में कटौती की घोषणा की है। साथ ही नए सरकारी वाहनों की खरीद पर रोक लगा दी गई है और आधिकारिक रात्रि भोजों, सम्मेलनों और संगोष्ठियों को सीमित कर दिया गया है। बाजारों और शॉपिंग केंद्रों को रात 9 बजे तक और रेस्तरां को रात 11 बजे तक बंद करने को कहा गया है। भारतीय एजेंसियों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में इसके संभावित असर को देखते हुए वे इन कथित वित्तीय माध्यमों पर नजर रखे हुए हैं। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग 38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से यात्रा की दूरी, समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार हो रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 233 अंक बढ़कर 74,547 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23,336 पर था। 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ कल से जापान के आईची नागोया में हो रहा है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और एशियाई खेलों में शॉटपुट के मौजूदा चैंपियन

0: for the opening ceremony of the Asian Games. The opening ceremony is scheduled to take place tomorrow. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:10 हुए हैं। महफिल कव्वाली कार्यक्रम में आज के कव्वाल हैं यूसुफ आज़ाद, शाहिदा बानो जयपुरी और रानी रूपलता।

महफिल कव्वाली कार्यक्रम में अभी आप कव्वाल यूसुफ आज़ाद, शाहिदा बानो जयपुरी और रानी रूपलता को सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 1:30 हुए हैं। अब श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम।

कुछ बातें शब्दों से नहीं गीतों से कही जाती है, कुछ यादें संगीत के साथ और भी खास हो जाती है। तो तैयार हो जाइए आपके संदेश और आपकी पसंद के गीतों के साथ। शुरू करते हैं कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। तो श्रोताओं, पढ़ते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है ग्राम पंचायत बेटना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और रेखा पार्थ कश्यप। हमारे इन दोस्तों ने पसंद किया है फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत।

फिल्म साथी से सुनिए अगला गीत मुकेश कुमार, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी हिमाक्ष। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गीत।

नवाशहर पंजाब से गगनदेव थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी, हमारे ये श्रोतागण सुनना चाहते हैं फिल्म ये रात फिर न आएगी का ये गीत।

पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से जुड़े हैं हमारे श्रोता मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, जिनकी पसंद है फिल्म तुम्हारे लिए का ये गीत। आइए सुनते हैं इनके पसंद का ये गाना।

0: स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत हमने लिया है फिल्म कब तक चुप रहूंगी से। फरमाइश करता है छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। तो चलिए सुनवाते हैं हमारे लिसनर्स की पसंद का ये गाना।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब से कुछ ही पलों के बाद मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: uncertainty and human oversight. Indian tech ball debutant Quimsy Joachim D'Souza stormed into the semi-finals of the Aichi Nagoya Asian Games in Japan after securing two wins in the women's singles event this morning. Quimsy produced a strong comeback in her Group A match 2 encounter against Japan's Yuina Sakamoto to seal a hard-fought 2-1 victory. The Indian debutant followed it up with a convincing 2-0 win over Cambodia's Kom Yin DY in Group A match 3. The Inter Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Bihar, eastern Rajasthan, Gujarat, Lakshadweep, Odisha, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim today. According to IMD, heavy rainfall accompanied by thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukundwan and Garchandur in Maharashtra. Security forces killed two Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को एलसीए तेजस और एचटीटी-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेकबॉल खिलाड़ी क्विमसी

0: की परियोजना को मंजूरी दी। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। और जापान में एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की है। भूटान यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर ने भूटान के विदेश मंत्री लिनपो डीएल धुंगेल के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों तथा आपसी महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने भारत भूटान साझेदारी को सुदृढ़ करने में हुई प्रगति की सराहना की। एक रिपोर्ट।
1: श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मोंगार में 65 बिस्तरों वाला ग्यालसुएन जेत्सुन पेमा मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, समद्रुप जोंखार त्राशीगांग राजमार्ग पर जगन्नाथ पुल और भूटान के बुमथांग स्थित राष्ट्रीय पशु प्रजनन केंद्र को भारत से 43 जर्सी गायों को दिया जाना शामिल है। भारत ने भूटान सरकार को 54 इलेक्ट्रिक वाहन भी सौंपे। दोनों मंत्रियों ने 500 किलोवाट की लुनाना पनबिजली परियोजना की आधारशिला भी रखी। बैठक में दोनों पक्षों ने मार्च 2024 में हुए ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने ऊर्जा सहयोग में हाल की प्रगति का उल्लेख भी किया। भूटान की पनबिजली परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया गया और कहा कि इससे दोनों देशों के मौजूदा ऊर्जा सहयोग को और गति मिली है। श्री जयशंकर और श्री धुंगेल ने यूपीआई आधारित सुविधा के चालू होने का स्वागत किया। इससे भूटान के नागरिक भूटान के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भारत में डिजिटल भुगतान कर सकेंगे। अंकित कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि पिछले कई दशकों में सेमीकंडक्टर चिप एक छिपे हुए औद्योगिक घटक से आगे बढ़कर आर्थिक क्षमता, तकनीकी परिपक्वता और राष्ट्रीय क्षमता का मापदंड बन गई है। नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर एक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी देश, चाहे वो कितना ही विकसित क्यों न हो, अकेले चिप का निर्माण नहीं कर सकता। श्री मिश्री ने कहा कि ताइवान दुनिया की करीब 90% सबसे उन्नत चिप का उत्पादन करता है, लेकिन इसके लिए डिजाइन, सॉफ्टवेयर, उपकरण और सामग्री दूसरे देशों से आती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक समारोह में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के विमानों और हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना तथा पवन हंस को सौंपे जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 हल्के लड़ाकू FOC ट्रेनर विमान तथा पहला हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान वायुसेना को और 4 ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर पवन हंस को सौंपे जाएंगे। HTT-40 विमान आधुनिक कॉकपिट से लैस है। ध्रुव नेक्स्ट जेनरेशन हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेश निर्मित असैन्य हेलीकॉप्टर है, जो उड़ान सुरक्षा मानकों AS-4 की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक रिपोर्ट।
2: फुल ऑपरेशन क्लियरेंस प्राप्त LCA तेजस, HTT-40 विमान चालक प्रशिक्षण विमान और ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का डिफेंस और नागरिक विमानयान क्षेत्र में शामिल होना एक अहम उपलब्धि है। इससे भारत मिलिट्री और सिविल पायलट्स के प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। देश में ही विमान निर्माण से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इससे आवश्यक नव उद्योग बढ़ेंगे। विदेशी विमानों के आयात की निर्भरता घटेगी, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत भी हो पाएगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: वित्त मंत्रालय आज से नई दिल्ली में विकसित भारत की दिशा में भारत की यात्रा के लिए वित्त पोषण विषय पर 2 दिन का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ सौरभ गर्ग विकसित भारत की यात्रा में विकास के परिणामों को मापने के महत्व पर विचार रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के मुकुटबन, आदिलाबाद और गढ़चंदूर के बीच लगभग

0: 30 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि नई रेल लाइन एक छोटा और बेहतर रेल मार्ग उपलब्ध कराएगी। इससे यात्रा की दूरी, परिवहन समय और संबंधित लागत में कमी आएगी। ये रेल लाइन मौजूदा वर्धा मानिकगढ़ रेलखंड पर भीड़ कम करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराएगी। इससे मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुचारू हो सकेगा। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रगति मंच से सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने सक्रिय शासन की दिशा में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बताया। राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साथ भारत में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख में वृद्धि हुई है। ये विशेष साक्षात्कार आज शाम 7:10 पर 100.1 MHz पर सुना जा सकता है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में होगी। बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारी समिति को विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देंगे।
1: संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मंजूरी दी थी। यह विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के इस्तेमाल में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। समिति को शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करनी है। समाचार कक्ष से कौशलेंद्र।
0: उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑपरेशन सोहन के तहत जैश के 2 आतंकवादियों का सफाया करने के लिए व्हाइट नाइट कोर की सराहना की है। उधमपुर जिले के मजलटा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ किए गए इस अभियान ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त अंतर एजेंसी समन्वय की मजबूती को दर्शाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष की सार्वजनिक सेवा को समर्पित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत एक नई और दूरदर्शी पहल सेवा प्रथम नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। महेंद्रगढ़ में पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मंच राज्य के छात्रों, स्टार्टअप्स, उद्यमियों, पेशेवरों, शोधकर्ताओं, जमीन स्तर के इनोवेटर्स और आम नागरिकों को अपने नवीनतम विचारों, प्रौद्योगिकियों, उत्पादों तथा समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनों पर चर्चा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान ने झारखंड के सुदूर गांवों से लेकर शहरों तक स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। राज्य के 91% से अधिक गांवों को ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है, जहां अब ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष काम हो रहा है। स्वच्छता को हर नागरिक के स्वभाव और संस्कार में शामिल करने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वच्छता केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे जीवन का हिस्सा होनी चाहिए।
3: साथियों, स्वच्छता कोई एक दिन का काम नहीं है, स्वच्छता तो जीवन जीने का तरीका है। देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए, भारत को खुले में शौच से मुक्त कराया गया, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए, सफाई हमारी जीवन शैली का हिस्सा बने, इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए गए।
2: प्रधानमंत्री के इसी विजन की वजह से आज झारखंड के ग्रामीण इलाकों में लगभग 42 लाख शौचालयों के निर्माण से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही राज्य के सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गोवर्धन योजना के तहत कचरे से कंचन और बायोगैस बनाने की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का सीधा लाभ पाने वाली रांची की ग्रामीण

0: महिलाओं ने इलाके में आए इस बड़े बदलाव पर अपनी खुशी साझा की।
1: मेरा नाम निरुपमा तिग्गा है, मैं नगड़ी प्रखंड के सपारुम गांव की रहने वाली हूं। ये जो योजना है स्वच्छ मिशन भारत का, प्रधानमंत्री हमारे स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय गांव में दिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं।
2: हमारे सपारुम पंचायत के सपारुम गाँव में 540 के लगभग शौचालय बने हैं। पहले तो इस गाँव में बहुत शौचालय नहीं रहने के कारण बहुत परेशानियां, बहुत बीमारियां होती थी, परंतु अभी जब से शौचालय मिला है सभी को सुविधा होती है।
0: झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस साल 5000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयों और कचरा संवेदनशील स्थानों की युद्ध स्तर पर सफाई की गई है। स्वच्छता की इस नई चेतना ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि स्वच्छता से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए विकसित भारत 2047 की नींव को और मजबूत किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कर्मवीर के साथ मैं महविश रहमान।
3: भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस मामले में चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश को सामान्य प्रक्रिया बताया है। इस आदेश में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के दोनों प्रतिद्वंदी गुटों को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनावों के दौरान पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया गया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा कि किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन होने पर उसके चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी जाती है। श्री राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में अतीत में कई विभाजन हुए हैं और इसका चुनाव चिन्ह भी कई बार बदला गया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ने आज पठानकोट से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा शुरू की। पार्टी का नारा है नशा मुकाना सारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लो और अन्य नेताओं ने माधोपुर से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: ये आकाशवाणी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वास्तविक GDP वृद्धि दर अनुमान को 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये संशोधन पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। एजेंसी ने आशा व्यक्त की कि भारत सभी अन्य G20 अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ना जारी रखेगा। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 176 अंक बढ़कर 74,491 और निफ्टी 40 अंक बढ़कर 23,318 पर कारोबार कर रहा था। जापान में एशियाई खेलों में भारतीय टेग बॉल खिलाड़ी क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने महिला सिंगल्स स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। एशियाई खेलों में भारत की ओर से टेग बॉल में पहली बार हिस्सा ले रही डिसूजा ने जापान की युना साकामोतो को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भूटान के विकास संबंधी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के लिए भारत के सहयोग की पुष्टि की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक महत्व के मुद्दों की समीक्षा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आज बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना को LCA Tejas और HTT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपेगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में मुकुटवन और गढ़चंदूर के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 493 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर बढ़ाकर 7% की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

438 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार खराब मौसम के चलते मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। मछुआरों को सूचित किया जाता है कि वे 21 सितंबर तक समुद्र में ना जाएं। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये था मौसम का हाल। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: आपकी पसंद से सजे हैं आज के ये तराने, आपकी आवाज़ से रोशन है हमारे फसाने, दिल से निकली हर फरमाइश जब गीत बन जाती है तभी तो हेलो डियर फ्रेंड्स में हर धड़कन मुस्कुराती है। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। तो चलिए देर ना करते हुए बातें करते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम।
0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो मैम कैसी है? हेलो
0: हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो
1: जी, हमको आता है आवाज
0: जी। आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम विमला है मैम।
0: जी विमला जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: डेयरी फॉर्म मैम, वहाँ से बात कर रहे हैं।
0: जी विमला जी, अच्छा तो बताइए कैसे हैं आप?
1: जी हम ठीक है, आप लोग कैसे मैम?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ। तो बताइए इस वक्त क्या कर रही थी आप?
1: हम लोग बस आपका फोन कॉल का वेटिंग कर रही है।
0: और जी देखिए पहली कॉल हमने लगा लिया है आपको।
1: जी हाँ
0: जी। तो विमला जी लंच किया आपने?
1: जी हाँ हो गया।
0: अच्छा तो बताइए आज कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनेंगी?
1: वही आज अभी गणेश भगवान का पूजा चलता है ना, उनका ही गाना सुनेंगे।
0: जी तो मैं आपको सुनवाऊंगी अग्निपथ फिल्म का गाना, ठीक है?
1: हाँ जी मैम।
0: जी तो विमला जी बताइए आपके वहाँ कैसे चल रहे हैं गणेश चतुर्थी का? जी
1: जी हाँ ठीक है, अच्छे से धूमधाम चलते है
0: जी।
1: आज देर फोन में के अन्नदान वहाँ से खाना लेके आई, बस वही सही
0: जी। चलिए अच्छी बात है, त्योहार आने से तो हम भी बहुत

0: खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन में इतनी नई नई खुशियां आती हैं, और हम भी कहेंगे कि बापा भी हम सबकी मनोकामनाएं ऐसे ही पूरे करे सबकी।
1: जी
0: जी तो चलिए विमला जी, आपको सुनवा देते हैं अग्निपथ फिल्म का ही गीत। जी
1: मैम, आज मेरे फ्रेंड का नाम देगी मैम।
0: जी जरूर, नाम लीजिए। हाँ,
1: गिरिराज फुटम्मा जोगराव गौरी यशोदा बैर तेजेश बैर और चंद्रम्मा शिवा पंशिका और मनीषा तेजस्वरी और बहुत सारे जो जो फोन करते हैं उन सभी के लिए एक गाना प्रस्तुत करती है। बोलने नहीं सकते
0: जी, तो चलिए अपने सारे दोस्तों के साथ सुनिए अग्निपथ फिल्म का गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। सही फोन करती रहिए और मेरे को।
0: जी।

0: प्रिया।
1: प्रिया जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
0: डॉलीगंज।
1: डॉलीगंज, तो बताइए प्रिया जी क्या करती हैं आप?
0: मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ।
1: जी
0: आप कैसे हो?
1: जी मैं भी अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: अच्छी हूँ।
1: तो बताइए आज के कार्यक्रम में आपने कौन सा गीत सोचा है सुनने के लिए?
0: दरखास्त शिवाय मूवी का।
1: जी शिवाय फिल्म का गाना है ये।
0: जी
1: तो बताइए और किन किन दोस्तों को डेडिकेट करेंगे आप ये गीत?
0: एक्चुअली मैं ही अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: जी तो चलिए सुनवाते हैं आपके शिवाय फिल्म का गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, अपना परिचय दीजिए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम लछोड़ा, तहसील नगर, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी थैंक यू।
0: और बताइए कैसा रहा दिन आज का आपका?
1: जी काफी अच्छा है, हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: जी, और अभी सोयाबीन की फसल लगाई है जी, 2 महीने से हो गई है।
0: हाँ जी जी, और बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: बोल रहा था बोल फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनवा दीजिएगा।
0: और बताइए अभी। हाँ बताइए।
1: भगवान सिंह शर्मा, लोकेन वर्मा, आशुतोष अग्निया, संगीता जी, अनिल गुप्ता, रमेश टेलर और सुनील गोपाल से, इन सभी के लिए और आपके लिए भी डेडिकेट रहेगा।
0: जी तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
2: पहले तो लड़ती थी

पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, AI तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और AI तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए, तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पशुपालन में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के लिए सुनहरा अवसर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के अंतर्गत देश भर के डेयरी किसानों, एआई तकनीशियनों और डेयरी संगठनों को नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। 3 श्रेणियों में चयन, डेयरी किसान, सहकारी डेयरी संगठन और एआई तकनीशियन डेयरी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए। तीनों श्रेणियों में उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। आवेदन अवधि 15 अगस्त से 30 सितंबर 2025। आवेदन के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं। आपकी मेहनत के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
2: जी दीदी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मेरी बात किनसे हो रही है?
2: जी दीदी, ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
1: जी रामबाबू शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी तो बताइए, कैसे हैं आप?
2: जी दीदी, बहुत बढ़िया हूँ और प्रोग्राम सुन रहा था, इंतजार था आपके कॉल का और कॉल मेरे पास आया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है।
1: जी तो बता दीजिए, आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
2: जी दीदी, फिल्म का नाम है दूध में कर, जो गाना है उसमें शुरू हो रही है प्रेम कहानी। और दीदी कुछ मित्रों को भी याद करना चाहूंगा।
1: जी नाम ले लीजिए।
2: जी दीदी, मित्र सुन रहे हैं केसरी सिंह राजपूत जी हैं, गैराज सिंह लोधी जी हैं और पूर्णिमा जी हैं विजयपुरम से, और तनुश्री जी हैं और आशुतोष देवनाथ जी हैं, संगीता देवनाथ जी हैं, अविनाश जी हैं, और दीदी आपके लिए रहेगा।
1: जी तो राम बाबू जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
2: जी दीदी, किसानी करता हूँ मैं, और बस अभी तो घर पर ही थे, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी।
1: जी और घर परिवार में सब कैसे हैं?
2: हेलो
1: हेलो।
2: हाँ जी दीदी, आवाज रुक गई।
1: जी मैंने पूछा घर परिवार में सब कैसे हैं?
2: सब बहुत बढ़िया हैं, बस आनंद चल रहा है, बारिश हो रही है।
1: जी तो चलिए आनंद लीजिए इस मौसम का, और आपको सुनवाते हैं दूध का कर्ज फिल्म का ये गीत।
2: जी दीदी नमस्कार, धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम?
1: ग्राम नंगला काशियान, पोस्ट औरंगाबाद, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साथी बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी धन्यवाद
0: जी। बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: अकबर एंथनी का हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें।
0: जी, गीत तो आपने बहुत ही प्यारा चुना है
1: जी।
0: और बताइए अपने बारे में, कुछ क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी में करता हूँ, अभी धान और मूंगफली लगी हुई है खेतों में।
0: जी,
1: बारिश कम हो रही है इन साल।
0: जी, तो बताइए आपके वहाँ गणेश चतुर्थी कैसे मनाया जा रहा है?
1: हमारे इधर धूमधाम से मनाई जा रही है
0: जी। तो चलिए सुनाते हैं आपको अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो
0: हेलो
1: मैम, गुड आफ्टरनून.
0: हेलो डियर फ्रेंड.
1: हेलो डियर फ्रेंड.
0: जी नमस्ते, कौन है आप, कहाँ से बोल रही है?
1: जी जी मैं गैरव शर्मा से रिया बोल रही हूँ.
0: जी रिया जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
0: जी मैं भी अच्छी हूँ. बताइए क्या कर रही हैं आप?
1: मैं स्टूडेंट हूँ.
0: जी
1: जी अभी मैं जस्ट लंच करके थोड़ा आपका कॉल का वेट कर रही थी.
0: तो आप स्टूडेंट है, तो बताइए आपका पसंदीदा विषय कौन सा है?
1: मेरा तो फेवरेट हिस्ट्री है.
0: जी तो आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं आप?
1: जी मुझे तो लेक्चरर बनने का शौक है,
0: जी.
1: तो वही उसी को मैं कंटिन्यू करूंगी.
0: चलिए, मेहनत आपकी मेहनत सफल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है. तो बताइए आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनेंगी?
1: जी मैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी से, रुक जा ओ दिल दीवाने.
0: जी, और ये गाना किन दोस्तों को सुनाना चाहेंगे आप?
1: ये मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम पांच का ग्रुप है, तो मैं उनको मैं डेडिकेट करूंगी.
0: जी चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत.
1: जी थैंक यू.

100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब पेश है अगला कार्यक्रम।

0: सभी सुनने वालों को जय।
1: जो दिल को सुकून दे उसे अपना लिया करो, जो बात सताए उसे हवा में उड़ा दिया करो, हर लम्हे को हंसकर गले लगाया करो, जिंदगी से हर रोज़।

यारों के साथ हो तो हर पल खास लगता है, जिंदगी का हर सफ़र कुछ पास लगता है, यकीन हो खुद पर तो हर ख्वाब जवां लगता है, जुनून साथ हो तो हर रास्ता आसान लगता है। चलो आज हर लम्हा जी भर के जिया जाए और जिंदगी को अपनी शर्तों पर मुस्कुराया जाए।

कुछ रास्ते मंजिल से भी हसीन होते हैं, कुछ सफ़र अपने आप में ही रंगीन होते हैं। चलो आज फिक्रों को पीछे छोड़ चलते हैं, जहां दिल कहें उसी राह पर मोड़ चलते हैं।

तुमसे ही मेरी हर बात का रिश्ता है, तुमसे ही मेरी हर खुशी का वास्ता है। तुम साथ हो तो हर सुबह हसीन लगती है, तुम्हारी मौजूदगी हर शाम रंगीन लगती है। तुमसे ही शुरू हो मेरी हर दास्तान, तुमसे ही मुकम्मल लगे मेरा ये जहां।

जो आए मेरी ज़िंदगी की हर बात बन गई, ख्वाबों में सजी चाहत हकीकत की सौगात बन गई, सुनी राहों में जैसे बहारों की दस्तक होने लगी, तुम जो मिले तो हर ख्वाब मेरा गुलजार होने लगी।

100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर, पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाऊं
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है अलका सिन्हा की लिखी कहानी रिहाई, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी का।
2: उसे उम्र कैद की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे चाल चलन के कारण उसे 2 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। बरसों बाद आज वो अपने ही घर के सामने अजनबी सा खड़ा था। लंबी सांस भर बहुत संयत मन से उसने कंधे पर टंगे झोले में से चाबी निकाली और ताले में डालकर

0: घुमाई। ताला ढीठ सा अड़ा रहा। इसी दशा में टंगे टंगे ये ताला भी उम्र कैद जितनी लंबी अवधि काट चुका था। यूं दरवाजा जोर से धकेलने पर शायद ताला खोलने की जरूरत ही न पड़ती, मगर ये बात उसके दिमाग में आई ही नहीं। एक आंख बंद कर उसने ताले की मोरी के भीतर झांकते हुए चाबी घुसेड़कर पूरी ताकत से मरोड़ दी। कड़ कड़ की आवाज के साथ कराहता वो ताला आखिर होश में आया तो जैसे नींद से जागकर अविश्वास से पूछने लगा,
1: कौन हो भाई? यहां तो बरसों से कोई आया ही नहीं है।
0: तो क्या ओमी भी कभी आया नहीं मेरे पीछे? वो हल्के से बुदबुदाया।
1: ओमी? कौन ओमी?
0: दरवाजा भी अब तक बूढ़ा हो चुका था और उसकी याददाश्त पहले जैसी नहीं रह गई थी। खैर, उसने दरवाजे को जोर से धकेला तो बरसों की जमी धूल उस पर छिटक कर गिर पड़ी।
1: चलो, किसी ने गले लगाकर स्वागत तो किया।
0: वो हंसा तो धूल मुंह में घुस गई और वो खांसने लगा। भीतर का दृश्य जैसे फ्रीज हुआ पड़ा था। लंबे अरसे से एक स्थान पर रखी चीजें पड़ी पड़ी जम चुकी थीं। कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हर तरफ पड़ी धूल की मोटी परत से उसका रंग रूप ही बदल चुका था।
1: मैं किसी गलत घर में तो नहीं आया ना? ये मेरा ही तो घर है ना? किसके सहारे छोड़ गया था मैं अपना घर? ओमी?
0: उसने पुकारना चाहा, मगर गहरे निश्वास के साथ आंख नाक और मुंह में धूल भर आई।
1: हाँ, बाथरूम भी यही है।
0: हाँ, यही तो है बाथरूम।
1: यानी घर तो मेरा ही है।
0: बाकी सब भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। झाड़ू भी मिल गई, रसोई के दरवाजे के पीछे रखी थी, ठीक वहीं जहां हमेशा रहती थी। और इस एक छोटी सी बात ने उसे यकीन दिला दिया कि ये घर सचमुच उसका है। रात होते होते उसने घर को काफी हद तक ठीक कर लिया।
1: यानी ओमी कभी आया ही नहीं मेरे जाने के बाद। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसी के भरोसे सब कुछ छोड़ के गया था।
0: वो जरूर यही कहीं छुपा बैठा होगा नालायक, यही कहीं बैठा होगा।
1: उसने ओमी को खोजना चाहा, पलंग के नीचे, पर्दे के पीछे, खिड़की के बाहर, बगीचे में, हर तरफ देख लिया। ओमी कहीं नहीं था। अंधेरा गहराने लगा था। उसने बत्ती जलानी चाही तो तारे कटी हुई मिली। शायद चूहा कुतर गया था। किसी तरह तारे जोड़ी और स्विच दबाया तो बल्ब चनक कर टूट गया। खाने का मन भी नहीं था उसका और खाने को कुछ था भी नहीं। वो वैसे ही अंधेरे में लेट गया, एकटक पंखे को देखता रहा, भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा।

आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। वो हड़बड़ाकर उठा। ओह, इतनी देर हो गई। मैं तो इतनी देर तक सोता ही नहीं था। अब तक सब जग गए होंगे। उसने दाएं बाएं देखा, फिर उसे याद आया कि वो अपने घर में है, जेल की सलाखों से बाहर। अब तो वो खुद अपनी मर्जी का मालिक है। जब तक चाहूंगा सोऊंगा, जहां चाहे जाऊंगा। अब मैं आजाद हूं। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। सुन रहे हो ना ओमी? ओमी, ओमी सुन रहे हो ना? अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ। उसे फिर ओमी की याद हो आई। याद आई कि ओमी को तो पता ही नहीं होगा कि उसे समय से पहले ही रिहा कर दिया गया है, और वो अपने घर उसका इंतजार कर रहा है। उसका मन मायूस हो गया। आखिर ओमी के बिना ये आजादी किस काम की? आएगा ओमी, आज जरूर आएगा। आएगा तो उसे क्या खिलाऊंगा? अच्छा चलो, बाजार से कुछ सब्जी भाजी खरीद ले आता हूँ। हाँ, आज अपनी पसंद की सब्जियां लाऊंगा। रोज रोज घी आग का दुख खा खा कर रुकता चुका हूँ। और हाँ, नया बल्ब भी तो लाना है। ओमी जरूर कहीं दूर से इस घर पर नजर रखता होगा। जलती बत्ती देखकर दौड़ा चला आएगा। हाँ, उसे क्या मालूम कि मैं समय से पहले ही रिहा हो गया हूँ। जरूरत का सामान खरीद कर वो घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बड़े चाव से सब्जी बनाई। गोल गोल नरम नरम रोटियां सेकते हुए भीतर ही भीतर ओमी को पुकारता रहा। सोचा पास पड़ोस में पूछूं कि पिछली बार ओमी कब आया था यहाँ, मगर हिम्मत नहीं हुई। बाहर की दुनिया पराई हो गई थी। एक सजायाफ्ता से कौन बात करना चाहेगा? लोग उसे नहीं पहचानते अब, ये भी अच्छा ही है। उसने राहत की सांस ली और खा पी कर सो गया। बत्ती जली ही छोड़ दी। उसे भरोसा था कि बत्ती जलती देखकर ओमी दौड़ता हुआ यहाँ आएगा। नींद में भी वो हर खटके से जागता रहा, पर सुबह हो गई और ओमी नहीं आया। अगला दिन भी बीत गया, फिर एक और रात ओमी नहीं आया। वो हर रात बत्ती जली छोड़ देता, इस उम्मीद में कि उजाला देख कोई तो दौड़ा चला आएगा। लगातार चलता पंखा उसे बरसों पीछे लिए जा रहा था, बहुत पीछे, कॉलेज की गहमा गहमी के बीच। कॉलेज का वार्षिक उत्सव, सजी धजी भीड़ मंच की तरफ देख रही थी। भीड़ उत्साह से ओमी ओमी ओमी ओमी पुकार रही थी। भीड़ में से आवाजें आ रही थी, ओमी ओमी। वो देख रहा है ओमी मंच पर खड़ा है। मंच पर इतनी तेज रोशनी है कि आंखें चुंधिया जाएं। तेज रोशनी में वो ओमी को ठीक से देख भी नहीं पा रहा, मगर वो उसकी आवाज सुन रहा है। वो कह रहा है, दोस्तों, आज की ये महफिल किसी खास के नाम, देखता हूँ मेरी आवाज उस तक पहुँचती है या नहीं। महफिल में तालियों की आवाज, सीटियां और उत्साह भर उठता है।

ओमी एक तान भरता है और हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सबकी धड़कनें रुक गई हैं। वे सांस रोके ओमी का गीत सुन रहे हैं, उसे अपलक देख रहे हैं और ओमी है कि आंखें बंद कर गा रहा है। मखमली आवाज का जादू हर किसी पर छाने लगा है।

सुनिए, क्या क्या खूब गाते हैं आप। मैं तो खो ही गई थी, मगर ये गीत नहीं था, मेरे दिल की आवाज थी। और आपने क्या कहा कि आप तो खो गई। अरे, आप खो जाएंगी तो मैं खुद को कहाँ ढूंढूंगा। अच्छा, अपना नाम तो बता दीजिए ताकि ढूंढने में कुछ आसानी हो। जी, मेरा नाम गीत है। अरे वाह, आप गीत और मैं गायक, क्या खूब है। अब समझा ये निगाहें क्यों बार बार आपकी तरफ खींची चली जा रही थी। चलिए, आप तो बातें बनाते हैं। उसे खूब याद है ओमी और गीत की वो पहली मुलाकात, जिस दिन ओमी के दिल की आवाज गीत तक पहुंची गई। फिर तो वो हर जलसे में ओमी की आवाज के साथ खींची चली आती। यही हाल ओमी का भी था। जब वो गाने लगता तो सबसे पहले उसी की ओर देखता, फिर आंखें बंद कर तसल्ली से गीत में डूब जाता। गीत उसकी जिंदगी थी, इसीलिए तो उसने अपने बैंड का नाम ओम बैंड से ओम गीत बैंड कर दिया था। ओमी के दोस्त उसे गीत का नाम लेकर खूब चिढ़ाते थे, मगर वो चिढ़ता नहीं था। उल्टे एक मीठी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती, जैसे कोई अपना सबसे प्यारा राज सुन ले और भीतर ही भीतर खुश हो जाए। उसके दोस्त जानबूझकर उससे बात करते हुए गीत का नाम बीच में डालते हुए दोहरी जुबान में उससे पूछते, ओमी भाई, आज के जलसे में तुम्हारे गीत ने गजब ढा दिया भाई। ओमी हंसकर कहता, यार, गीत ने मंच पर ही नहीं, मेरे जीवन के रंगमंच पर भी गजब ढा दिया है। हाँ। वो कुछ देर हंसता मगर फिर संजीदा होकर कहता, हाँ, पहले मैं गाता था, अब जिंदगी गाती है। मेरे गीतों के शब्द अब लगे बोलने जब से सुर पर उन्हें वो सजाने लगी है। दूर कहीं कोयलिया गाने लगी है। उसे संजीदा देखकर दोस्त भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते। अम्मा यार, ये तो सच है, जब से गीत तेरी जिंदगी में आई है, तेरी आवाज में बला का जादू आ गया है, एक नशा सा छा गया है तेरी गायकी में।

ओमी एक पल के लिए रुका, जैसे वो इस बात की गहराई को तौल रहा हो। फिर धीरे से अपने भीतर ही बोल पड़ा, हाँ, मेरे हर बोल में वो होती है, हर सुर में उसका चेहरा होता है। जब उसकी झुकी हुई नजरों को देखता हूं तो मेरी तान खुद ब खुद ऊपर उठती चली जाती है। सब जानते थे कि ओमी और गीत एक दूसरे के लिए बने हैं। ये जोड़ी कुछ अलग ही है। ये बात अब किसी से छुपी नहीं थी। जलसों में लोग ओमी का गाना सुनने आते थे

उधर गीत की सहेलियां भी कहां कम थी, हर वक्त उसे ओमी के नाम की मीठी झिड़कियां देती रहती। ए गाता तो ओमी है मगर भाव तेरे चेहरे पर होते हैं, ऐसा कैसे होता है गीत? देख अभी भी तेरा चेहरा कैसा सिंदूरी हो गया है। हायो रब्बा, ओमी को देखते ही ये तो किसी दूसरी दुनिया में जा पहुंचती है। उनकी बातें सुन गीत एक पल के लिए चुप हो जाती, फिर धीरे धीरे जैसे मन में सांस लेते सपने को शब्द देती भी बोल पड़ती। हाँ सच में ओमी जब तान भरता है ना तो जाने मुझे क्या लगता है, जैसे जैसे मैं इस दुनिया में हूं ही नहीं, किसी और ही दुनिया में हूँ। हाँ जैसे मैं बादलों की पालकी पर जा बैठी हूँ और ओमी की तान के साथ साथ ऊपर उठती जा रही हूँ, ऊपर और ऊपर, पता नहीं कितने ऊपर। सहेलियां एक दूसरे को देखने लगती और गीत बोलती रहती, और पता है जब भीड़ तालियां बजाती है, जब सारा हॉल उसकी आवाज की जादूगरी से गूंज उठता है, तो मेरे भीतर कुछ उमड़ने लगता है, जैसे जैसे कोई नदी बरसों से शांत बह रही थी और अचानक उसमें बाढ़ आ गई हो, और मैं उस बाढ़ को रोकना नहीं चाहती, बस उसमें बहती रहना चाहती हूँ। गीत तू तो बनी ही उसके लिए है रे, यूं ही तो तेरा नाम गीत नहीं पड़ा। गीत अपनी सहेलियों के चूहल में खो जाती और कहती, माँ ने संगीत सीखा था और प्यार से मुझे गीत कहकर बुलाया करती, गीत तो बस मेरे पुकारने का नाम था। मगर जब ओमी मुझे गीत कहकर बुलाता है ना, तब सच मानो मेरे कानों में संगीत गूंजने लगता है, मुझे अपना नाम सच्चा लगने लगता है, जैसे जैसे सालों से ये नाम उसी की आवाज का इंतजार कर रहा था, वो मुझे पुकारता है और मेरे भीतर एक झनकार सी बज उठती है, जैसे किसी ने सितार की मिजराब को छू दिया हो। हाँ ऐसा लगता है मुझे। और सच में ऐसा ही था, ओमी की आवाज में गीत थी और गीत की सांसों में ओमी का सुर, दोनों एक दूसरे में इस तरह घुले थे कि अलग करना मुश्किल था, जैसे

नदी में समाया आसमानी रंग, दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे बिना कहे बिना जताए। ये प्रेम शोर नहीं करता था, ये बजता था धीरे धीरे मीठे मीठे

0: उसे अच्छी तरह ध्यान है कि कॉलेज में इस जोड़ी की कितनी चर्चा थी। वो अचानक सोच में पड़ जाता है और खुद से ही पूछ बैठता है, पता नहीं दोनों कैसे होंगे, कहाँ होंगे। जरूर दोनों ने शादी कर ली होगी, शायद इसीलिए यहाँ आना कम हो गया होगा। क्या पता, कहीं शहर छोड़कर तो नहीं चले गए होंगे। काश कोई ओमी को ये बता दे कि मैं समय से पहले ही घर आ गया हूँ। काश कोई ओमी को बता दे। वो करवट बदलता है, उसके भीतर बेचैनी है। कैसे वो अपनी बात ओमी तक पहुंचाए, पता नहीं ओमी कहाँ है, क्या पता। कब से उससे बात नहीं हुई, हर रात यही सब सोचते हुए करवटों में बीतती है उसकी। अधनींदी सी हालत में वो बीते वक्त की परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है। बीती जिंदगी की यादें उसके भीतर शोर मचाती रहती हैं, जबकि सामने अजब सा सन्नाटा रहता है। वो उस कागज की तरह था जिस पर कुछ लिखकर मिटा दिया गया हो। न उस कागज पर लिखे को पढ़ा जा सकता था, न वो ऐसा कोरा था कि जिस पर कुछ नया लिखा जा सकता हो। बिखरी यादें उसके जहन में आती जाती रहती। वो फिर जा पहुंचा उसी जलसे में जहां ओमी गाना गाकर उठा था और भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। ओमी हर किसी से बात कर रहा था, मगर उसकी आंखें उधर कोने में खड़ी गीत की तरफ देखे जा रही थीं। गीत भी उसे ही देख रही थी और खुश हो रही थी कि कितने फैन थे उसके इर्द गिर्द। वो दूर से ही उनकी गिनती कर ही रही थी ताकि ओमी को बता सके। इतनी देर में उधर से मोहित बैंड के कलाकार गुजरने लगे। उसके पास से निकलते हुए उसके सिंगर मोहित ने ऊंची आवाज में कहा,
1: हीरे और पत्थर में फर्क करना सीख ले गीत, हीरा भी मैं हूँ और हीरो भी मेरी।
0: मोहित की बात पर उसके साथियों का ठहाका गूंज उठा। गीत ने भले ही उसकी बात पर लापरवाही से कंधे उचका दिए, मगर ओमी इसे हल्के में नहीं ले पाया। वो भीड़ का दायरा तोड़कर मोहित की तरफ बढ़ा। उसके फैन भी उसके पीछे पीछे हो लिए और देखते ही देखते बैट बल्ले निकल गए। अचानक ओमी ने देखा कि गीत को मोहित के साथियों ने घेर लिया था। ओमी सब कुछ भूलकर उस चक्रव्यूह में दाखिल हो गया, जिससे बाहर निकलने के लिए गीत भरपूर कोशिश कर रही थी। ओमी के पीछे उसके दोस्त भी आ गए। भीड़ में पता नहीं कौन किस पर हावी था। चीख पुकार के बीच गोली चलने की आवाज आई और कुछ ही देर

में सायरन बजाती एम्बुलेंस आ पहुंची थी और गीत को जिसमें चढ़ाया जा रहा था। उसके कपड़े खून में भीगे हुए थे। कातर नजरें ओमी को ढूंढ रही थीं। गीत बेआवाज उसे पुकार रही थी। ओमी महसूस कर रहा था कि अगर गीत को कुछ भी हो गया तो उसकी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ओमी मन ही मन गीत को पुकार रहा था। हाँ, मन ही मन गीत को पुकार रहा था।

के बजते हूटर की तेज आवाज से उसकी नींद उचट गई और वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। अच्छा हुआ कि उसकी नींद टूट गई। वो उस घटना को सपने में भी दोहराना नहीं चाहता था। उसने अपनी आंखें कस कर मूंद ली। वो जीवन के उस प्रसंग को पूरी तरह नकार देना चाहता था जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी। मगर आंखें बंद कर लेने पर वो दृश्य और साफ साफ दिखने लगता था। आखिर वो उठकर बैठ ही गया, सोने की जबरन कोशिश छोड़ दी और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाहर अंधेरा था, मगर उसकी चेतना में वो दृश्य जस का तस कैद था, जिसे वो कभी दोहराना नहीं चाहता था। उसका ऐसा अतीत जिससे उसका वर्तमान इस तरह चिपका था कि उसे कभी अलग ही नहीं किया जा सकता था। यही वो पल था जहां से बदल गई थी उसकी दुनिया, वो दुनिया जो ओमी की दिलकश आवाज से गुलजार थी, वो दुनिया जिसमें गीत की मासूमियत भरे प्रेम का दरिया छलकता रहता था। मगर उस दिन सब कुछ बदल गया था। भुलाने की लाख कोशिशों के बावजूद उस दिन की घटना उसके जहन में कब्जा करके बैठी थी। उसे अच्छी तरह ध्यान है कि मोहित के एक साथी ने पिस्तौल निकाल ली और ओमी की ओर घुमा दी। बचने की कोशिश में ओमी बगल घूम गया और गोली उसके पीछे खड़ी गीत के सिर पर लग गई। ओमी ये देखकर अपना आपा खो बैठा और उस व्यक्ति पर झपट पड़ा। हाथापाई में पिस्तौल छिटक कर दूर जा गिरी। ओमी तूफान की तरह पिस्तौल की ओर लपका। वह सोच की सुरंग में गहरे जाग घुसा था कि अचानक बरामदे में जलती बत्ती गुल हो गई। शायद बिजली चली गई थी, लेकिन पंखा चल रहा था। हो सकता है बल्ब फ्यूज हो गया हो, पूरी रात जलता रहा था। अब इस अंधेरे में ओमी उसे कैसे ढूंढ पाएगा, वो बेहद परेशान हो गया ये सोचकर। ऐसा ही परेशान वो उस दिन भी था जब ओमी पिस्तौल उठाने लपका था। वो जानता था कि इस वक्त अगर ये पिस्तौल ओमी के हाथ लग गई तो वो सारी दुनिया तहस नहस कर डालेगा, तांडव मचा देगा। उसने बिना एक पल गंवाए ओमी से पहले खुद वो पिस्तौल अपने हाथ में उठा ली और ओमी को गीत का ध्यान

रखने का इशारा किया, जिसे खून से लथपथ हाल में एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था। जीवन में आया ये कल बीत कर भी नहीं बीता और उसे आज भी उसी तरह उद्वेलित कर रहा था। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखों को जोर से भींच लिया, जैसे वो आगे की घटना को रोक देना चाहता हो, ताकि वक्त वहीं थम जाता और वो न होता जो हुआ।

0: समझे ना।
1: वो दोबारा बिस्तर पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे लगता है कि तब से आज तक वो नींद में ही तो जीता रहा और इसी अवस्था में इतने बरस गुजार दिए। वो करवट बदलता है और साथ ही दृश्य बदलता है। वो देखता है उसके हाथ में पिस्तौल है और पुलिस उसे पकड़ कर लिए जा रही है। ओमी उसे रोकना चाहता है, उसके पीछे पीछे आ रहा है, मगर वो ओमी को रोक देता है। तो गीत का ध्यान रख, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, वो ओमी को देखकर बुदबुदाता है। ओमी दौड़कर एम्बुलेंस में जा बैठता है। उसके बाद कोर्ट कचहरी, पेशी पर पेशी, हर पेशी पर ओमी आता है, पीछे की बेंच पर बैठता है, खामोश बेबस। वो ओमी को देखकर भी नहीं देखता कि कहीं पुलिस को ओमी पर किसी तरह का शक न हो जाए। उसे कुछ याद नहीं कौन उसकी वकालत करता है और वकालत में क्या क्या कहता है। वो बस खामोशी से सबकी दलीलें सुनता रहता है, न किसी का समर्थन करता है न विरोध। उसकी चुप्पी को हामी समझा जाता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। ओमी दूर से उसे जेल जाता देखता रहता है। ओमी की आंखों से झांकते सवालों और उसमें तैरती अंतहीन बेबसी को अनदेखा कर वो जेल की सलाखों में कैद हो जाता है।

हर रात यही कहानी कई कई तरह से उसकी आंखों में घूमती रहती है। हर रात वो बीच नींद में जाग जाता और फिर यादों का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता। प्याज के छिलकों की तरह एक के बाद एक घटनाओं का सिलसिला उसे मथता रहता। वो याद करने लगता कि जेल जाते वक्त ओमी ने धीरे से उसे कहा था कि वो उसका इंतजार करेगा, उसके पीछे इस घर का ख्याल रखेगा। वह ये सब कतई दोहराना नहीं चाहता। वह उस सारी कहानी को भूल जाना चाहता है। उस रात भी इसी कोशिश में लगा था कि दिमाग में छपी इस दर्दनाक इबारत को किस तरह मिटाया जाए कि अचानक कहीं दूर से उसके कानों में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, एक मीठी तान, ऊंची तान, सुरीला आलाप। अरे अरे, ये आवाज तो ओमी की है। हाँ, ओमी की ही तो है, शत प्रतिशत ओमी की। हाँ, ये ओमी ही है, ओमी ही है। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठता है। मैं जानता था ओमी जरूर आएगा। मैं जानता था वो जरूर आएगा, इसीलिए तो बत्ती जला रखी थी मैंने। हाँ, मगर कहाँ, बल्ब तो फ्यूज हो गया था, पर ओमी तक मेरी आवाज पहुंच गई होगी। देखा, अंधेरे की टोह लगाता ओमी आ ही गया मेरे पास। मैं आया, बस तुरंत आया। आता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ ओमी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कहता हुआ वो दरवाजे की तरफ लपका। चिटकनी खोलने की जल्दबाजी में हाथ दीवार से टकराकर छिल गया, मगर उसे सुध कहाँ थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, आगे पीछे झांका, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। ओमी, जरूर तू मेरे साथ मस्ती कर रहा है, यही कहीं छुपा होगा तू बाहर, है ना? कहाँ है ओमी, कहाँ है तू, कहाँ छिपा है ओमी, देख सामने आ जा, कहाँ है? वो दरवाजे से बाहर निकल आया, सीढ़ियों की तरफ लपका, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ पल को मायूस तो हुआ, मगर फिर अपनी बेवकूफी पर खुद ही हंस पड़ा। अरे, आवाज तो उधर खिड़की की तरफ से आ रही थी और मैं यहाँ दरवाजा खोलने आ गया। वो खुद पर ही हंसने लगा और दौड़कर घर के पिछवाड़े में बगीचे की तरफ दौड़ा। उसके भीतर का कौतूहल देखते ही बनता है। जिस पल का वो इतनी रातों तक जगकर इंतजार करता रहा, आखिर वो सफल हुआ। हड़बड़ी के बावजूद वो दबे पांव घर के पिछवाड़े की तरफ बढ़ता है। बेतरतीब लताओं का जाल उसे किसी जासूसी फिल्म का आभास दे रहा है। अंधेरे उजाले के बीच हर पेड़ के पीछे कोई साया छुपा सा लग रहा है। वो धीमी आवाज में पुकारता है ओमी को, ओमी, ओमी, ओमी, मगर कोई उत्तर नहीं मिलता। ओमी, वो फिर पुकारता है, इस बार थोड़ी तेज आवाज में पुकारता है, ओमी, सुन रहे हो ओमी? पीछे की तरफ हल्की सी सरसराहट मालूम पड़ती है। वो हौले से घूमकर देखता है, मगर ओमी कहीं नहीं दिखता। अलबत्ता एक बिल्ली जरूर झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ भाग जाती है। वो मायूस हो जाता है, उसकी आंखें सुनसान सड़क को टटोलती हैं, मगर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। अंधेरा और घना होने लगता है, इतना घना कि जिसमें परछाई भी दिखाई न पड़े। आखिर वो ओमी को कहां से देख पाता? वो लौटकर कमरे में आ जाता है, गहरी सांस भरकर वापस बिस्तर पर लेट जाता है।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। आज की दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।

0: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: நேர்களே, தன்னைத்தானே சரி செய்து கொள்ளுங்கள், அதைவிட சிறந்த மாற்றம் எதுவுமில்லை என்ற சிந்தனை வரிகளோடு ரசிகர் தேங்கினும் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். நேர்களே,

0: नमस्कार किसान साथियों, कृषि जगत कार्यक्रम में मैं रागिनी आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक नेक विचार के साथ किया जाता है और नेक विचार है, दूसरों की मदद करने और चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सच्ची खुशी बांटने से ही बढ़ती है। जी हाँ साथियों, इस नेक विचार के बाद बारी है प्रश्न की, और प्रश्न है, उड़द की फसल में नाइट्रोजन ग्रंथियों को बढ़ावा देने के लिए बुआई से पहले किस जीवाणु से उपचार किया जाता है? जी हाँ किसान साथियों, इस प्रश्न को फिर एक बार दोहराते हैं। उड़द की फसल में नाइट्रोजन ग्रंथियों को बढ़ावा देने के लिए बुआई से पहले किस जीवाणु से उपचार किया जाता है? भाइयों, इस प्रश्न का उत्तर आप सोचते रहिए और हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहिए। हम इस प्रश्न का उत्तर कार्यक्रम के अंत से पहले जरूर बताएंगे।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर अब तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, और चखम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: साथियों, जैसे कि मुर्गियों में कई तरह की बीमारियां होती है, उनमें से सबसे प्रमुख और खतरनाक बीमारी है रानीखेत की बीमारी। तो साथियों, बिना देर किए आइए सुनते हैं मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण चर्चा। मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी एक अत्यंत संक्रामक और घातक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से मुर्गियों के तंत्रिका और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। इनके मुख्य लक्षण भी देखे गए हैं। पहला है सांस लेने में तकलीफ। मुर्गियों को छींके, खांसी आना, मुंह खोलकर सांस लेना और गले से घर घर की आवाज आना। दूसरा है पाचन तंत्र की खराबी, हरी या सफेद और पतले रंग का दस्त करना। तीसरा है नर्सरी या तंत्रिका संबंधी लक्षण, सिर और गर्दन का टेढ़ा हो जाना, शरीर का संतुलन बिगड़ना, पंखों या पैरों में लकवा मार जाना। चौथा है उत्पादन में कमी, अंडे देने वाली मुर्गियों का अचानक अंडा देना बंद कर देना या विकृत

0: अंडे देना। और पांचवा है अचानक मौत। इस बीमारी में मृत्यु दर 50% से लेकर 100% तक हो सकती है। इस बीमारी के फैलने के क्या कारण हो सकते हैं साथियों? यह बीमारी पैरामाइक्सो वायरस के कारण फैलती है। संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित हवा, दाना, पानी और उनके संपर्क में आने से या स्वस्थ मुर्गियों में तेजी से फैलती है। इसका बचाव और रोकथाम कैसे करें? इस रोग का कोई पक्का इलाज नहीं है, इसलिए समय पर टीकाकरण ही इससे बचाने का एकमात्र उपाय है। चूजों को शुरुआती दिनों में BCR-DV और बाद में लासोटा वैक्सीन पशु चिकित्सक की सलाह से दिलानी चाहिए। पोल्ट्री फार्म और उसके आसपास पूरी सफाई रखें। बीमार मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से तुरंत अलग कर देना चाहिए। मुर्गी में रानीखेत रोग का उपचार कैसे करें? मुर्गी में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। अभी आप मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी के संदर्भ में चर्चा सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं मछली पालन तालाबों का निर्माण कुछ सुझाव के संदर्भ में डॉक्टर कमल शर्मा से की गई ये खास बातचीत।
2: किसान भाइयों, आज हम कुछ बातें करेंगे मछली पालन तालाबों के निर्माण के बारे में। इस बारे में आपको विस्तार से बतलाने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हैं डॉक्टर कमल शर्मा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मछली पालन तालाब जब किसान भाई बनाएंगे तो उनको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहली बात आप ये बताएं कि जो मछली पालन तालाब कितने प्रकार का होता है?
3: जनरली जो मछली पालन का जो तालाब है वो 3 किस्म का होता है। एक है आपका नर्सरी पॉन्ड बोलते हैं उसको, जो जिसमें हम लोग जो बच्चा एकदम अंडा से फूलने के बाद 15-20 दिन तक रखते हैं। उसके बाद होगा आपका रेयरिंग तालाब, जिसमें आपका वो फ्राई बोलते हैं, पहले वाला निकलेंगे नर्सरी पॉन्ड से फ्राई निकलेंगे, वो फ्राई तो फिंगरलिंग के बाद 3.5 मंथ 3.5 महीने तक हम लोग रेयरिंग में रखते हैं। उसके बाद रेयरिंग तालाब में जो मछली निकलेगा वो एक करीब 10 सेंटीमीटर साइज का निकलता है, तो उसको हम लोग फिंगरलिंग बोलते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट तालाब जो बड़ा तालाब है, भराल पोखरी बस स्टॉकिंग पॉन्ड, उसमें से छोड़ते हैं। इसी हिसाब से 3 किस्म का तालाब होते हैं।
2: मतलब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से 3 तरह के तालाब होंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो नर्सरी तालाब होता है वो छोटा तालाब
3: छोटा तालाब होता है, उसका जैसा आपका साइज बोलेंगे तो 200 मीटर स्क्वायर से आपका करीब 500 मीटर स्क्वायर तक होते हैं। रेयरिंग तालाब जो है उसका 500 मीटर स्क्वायर से 1000 मीटर स्क्वायर तक होते हैं। और जो स्टॉकिंग पॉन्ड है, जो बड़ा वाला तालाब है, वो 1000 मीटर स्क्वायर से आप 2 हेक्टर तक, मीन्स करीब 20,000 मीटर स्क्वायर तक जा सकते हैं।
2: और इसकी गहराई लगभग सब बराबर रहती है?
3: गहराई तरह अलग अलग किस्म की

0: होते हैं, जैसे आप नर्सरी पॉन्ड में आपका 1 मीटर तक गहराई काफी होते हैं, रेयरिंग पॉन्ड में थोड़ा गहराई थोड़ा ज्यादा हो सकता है, जैसे 1 to 1.5 मीटर तक कर सकते हैं, और जो स्टॉकिंग पॉन्ड है जो बड़ा तालाब है वो हम 2 मीटर से 2.5 मीटर तक जा सकते हैं,
1: अच्छा 2.5 मीटर तक
0: ढाई
1: जा
0: मीटर
1: सकते।
0: जा सकते हैं।
1: चलिए, तो ये जो किसान भाई सीधे मछली पालते हैं और उनको बाजार में बेचते हैं, उनके लिए तो सिर्फ एक तालाब की जरूरत होगी, जो
0: हाँ,
1: बड़ा
0: जनरली
1: तालाब
0: बड़ा
1: है।
0: तालाब ही अच्छा है, लेकिन
1: लेकिन कुछ एक किसान भाई ऐसे हैं जो मछली बीज उत्पादन भी करना चाहते हैं,
0: हाँ,
1: करते भी, तो उनके लिए तीनों तालाब होना जरूरी है।
0: दो किस्म का होना से जरूरी है, जो छोटा वाला और बड़ा वाला बहुत जरूरी है, इसलिए कि जो बड़ा वाला जो बीज उत्पादन करते हैं उसको बूडर रखने के लिए चाहिए, जो नर
1: रखते
0: है
1: हैं।
0: उसको रखने के लिए थोड़ा बड़ा तालाब का जरूरी होता है।
1: अच्छा, और छोटे जो अंडे से बच्चे निकलते
0: हाँ,
1: उसके
0: उसको
1: नर्सरी
0: नर्सरी
1: तालाब
0: में रहने
1: को।
0: से और नर्सरी रेयरिंग दोनों एक साथ में करा सकते हैं, मिडिल साइज का होने से दोनों अच्छा है, एक साथ में कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, जब किसान भाई तालाब बनाना चाहेंगे तो जगह का चुनाव एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हो
0: हाँ,
1: जाती है, तो क्या क्या सलाह देना
0: जैसे
1: चाहेंगे?
0: पहला जो है आपका साइट सिलेक्शन बोलते हैं, जगह सिलेक्ट करना है, जिस जगह में हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका जो मिट्टी कैसा है, तो मिट्टी मीन्स हम लोग जब पहले सोचेंगे कि उसका पीएच कैसा है, पीएच जनरली जो मिट्टी का पीएच 6, 6.5 से 7.5 तक होने से वो अच्छा है। उसमें नाइट्रोजन जो है हम लोग एक सार हिसाब से यूज करते हैं, नाइट्रोजन जैसे आपका करीब 30 से 50 मिलीग्राम 100 ग्राम मिट्टी का पर होना
1: होना चाहिए।
0: चाहिए, ऐसा आपका फॉस्फोरस का भी आपका 0.6 से 1.6 मीन्स 0.6 मिलीग्राम से 1.6 मिलीग्राम तक 100 ग्राम मिट्टी में होना चाहिए, और जो कार्बन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 1 to 2% तक होना चाहिए, वो होने से आपका वो मिट्टी
1: ये
0: तालाब बनाने के
1: तालाब बनाने
0: लिए
1: के लिए अच्छा है।
0: अच्छा है। और उसका अलग से उसको देखना पड़ेगा कि मिट्टी आपका उसका जो क्ले सोयल सॉयल है, उस टेक्सचर जो है
1: अच्छा हाँ,
0: टेक्सचर कैसा है,
1: या
0: जे
1: बलुई है या
0: हाँ
1: चिकनी मिट्टी है
0: हाँ
1: जब।
0: एक्चुअली जो क्ले बोलते हैं हम लोग, जो जनरली वो क्ले
1: चिकना
0: वाडी से भी
1: मिट्टी
0: उसका
1: है।
0: चिकनी मिट्टी है, वो थोड़ा रहने से वो अच्छा है, वो आपको मिट्टी का जो पानी का नीचे जाने का जो पार्कुलेशन होता है, जो सीपेज बोलते हैं हम लोग,
1: जी
0: वो बहुत कम कर देते हैं, और जिस मिट्टी में बालू ज़्यादा है उस मिट्टी में पानी आपको जल्दी नीचे चला जाएगा, तो तालाब में पानी नहीं रहेगा, उसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो
1: अच्छा
0: जिस मिट्टी में आपका जो आपका क्ले मिट्टी छोटा वाला पार्टिकल का है वो ज़्यादा रहने से आपका पानी मेंटेन होगा, पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, पानी रहने का जो क्षमता है वो
1: हाँ
0: ज़्यादा रहता है, तो वो तालाब के लिए अच्छा है।
1: अच्छा। और जो तालाब बनाने के लिए जो दूसरी निचली जगह होनी चाहिए
0: हाँ
1: या ऊंची जगह, किस जगह का
0: हाँ
1: चुनाव उस तरह कैसा होना चाहिए?
0: जनरली हम लोग जो तालाब बनाते हैं दो किस्म का, दो टाइप से बनाते हैं, एक है हम लोग जो गड्ढा खोद के बनाते हैं, और एक है हम लोग जस्ट एक जगह में हम लोग बांध डाल देंगे तो
1: पानी रुक जाएगा
0: पानी रुक
1: वहां।
0: जाएगा। जैसा बांध डालने वाला, जैसा हम लोग डैम वगैरह जो रिजर्वायर वगैरह है उसका, जैसे आपका धनीखाली डैम है उसी टाइप के, वो तो बहुत बड़ा है लेकिन हम लोग छोटा
1: छोटा
0: हिसाब
1: हाँ
0: से उसी टाइप के बनाते हैं, और लेकिन उसमें आप लोग ऊपर का मिट्टी अच्छा है, जब ऐसा आप कंटूर जब मिट्टी का पहाड़ या पहाड़ जगह में वो ठीक है, लेकिन नीचे का जमीन में प्लेन एरिया में गड्ढा खोद के बनाना सबसे अच्छा है, इसलिए कि वो आपका खर्चा भी कम होगा और हम लोग का जब अच्छा से एक शेप आएगा, जैसे
1: अच्छा
0: हम लोग बोलते हैं आयताकार, तो आयताकार का टैंक अच्छा होता है, जैसे जिसमें एक साइड में लंबा ज़्यादा होगा विथ
1: चौड़ा
0: कम
1: कम
0: हो जाएगा,
1: होगा, चौड़ा कम
0: चौड़ाई चौड़ाई
1: होगा।
0: कम होगा, उसी हिसाब से होने से आपका तालाब के लिए अच्छा है, हम लोग का इजी हार्वेस्टिंग भी हो से निकालने का भी इजी हो जाएगा और
1: मेंटेनेंस के लिए
0: मेंटेनेंस भी इजी हो जाएगा।
1: चलिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ सूरज की रोशनी या हवा की दिशा वगैरह कुछ देखनी पड़ती
0: हाँ,
1: है?
0: हवा का दिशा एक अहम भूमिका लेते हैं, कि जब पानी में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, जब हवा का रुख से अगर होगा तो पानी में मिक्स होगा तो ऑक्सीजन का परिमाण पानी में बढ़ जाएगा, तो इसी हिसाब से हम लोग अगर तालाब जिस लाइन से जिस डायरेक्शन से आपका हवा बहती है उसी हवा से उसी लाइन से हम लोग बनाएंगे तो जनरली आपका
1: अच्छा
0: ऑक्सीजन का
1: रहेगा।
0: अच्छा है, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जिस डायरेक्शन से हवा बहती है एक जगह में आपका तालाब को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसी जगह में हम लोग कुछ जो बैम्बू वगैरह व कोई फ्लोटिंग कुछ डाल देंगे तो जिससे आपका जो पानी का जो स्पीड है वो
1: कम
0: कम
1: हो
0: करेंगे,
1: जाएगा।
0: बस छोटा कर देंगे, वो होने से अच्छा होता है। कोई कोई जगह में क्या करते हैं वो लोग नाली भाजी वगैरह जो आइपोमिया बोलते हैं वो उसको हम लोग जगह एरिया में
1: साइड में
0: छोड़ देते
1: निकाल
0: हैं,
1: देते।
0: तो उसमें आपका पानी का जो लहर है उसको कम कर देते हैं, तो वो आपका तालाब का चारों साइड में ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा जब तालाब बनाने की बात आती
0: हाँ
1: है तो आजकल तो मशीनों का इस्तेमाल होता
0: हाँ
1: है, तो मोटे तौर पर कितना खर्च आ सकता है?
0: हाँ एक्चुअली जो हम लोग तालाब बनाते हैं तो एक जो है आपका ढाल ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग का जिस मिट्टी में आपका जो बालू कम है जो आपका क्ले ज़्यादा है उसमें 1:1 रेशियो सबसे अच्छा है।
1: अच्छा, चारों तरफ का जो ढाल होना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: तो मीन्स 1 मीन्स 1 मीटर गहराई 1 मीटर आपका चौड़ाई, उसी जगह आपका डायगोनल शेप में जो आएगा उसी हिसाब से आपका बनाएंगे
1: पर
0: तो
1: एक स्लोप होना
0: स्लोप हो
1: चाहिए,
0: जाएगा, बढ़िया से स्लोप आएगा, लेकिन जितना आपका मिट्टी में सोयल का बाली ज़्यादा है उसमें ढाल ज़्यादा
1: स्लोप
0: होना
1: ज्यादा
0: चाहिए,
1: होना
0: मीन्स एक
1: चाहिए।
0: बार 3:1 होना चाहिए, दैट मीन्स इसलिए कि नहीं तो आपका पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, जो मिट्टी अगर क्ले ज़्यादा है तो आपका ढाल कम होने से भी चलेगा।
1: चारों तरफ का जो ढाल है।
0: हाँ, 1:1 काफ़ी है। ऐसे ही हम लोग देखा कि अगर 30 मीटर लंबाई 20 मीटर चौड़ाई एक तालाब अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको 600 मीटर क्यूब वॉल्यूम का करीब मिट्टी निकालना पड़ेगा, उसी हिसाब से अगर हम लोग हिटाची यूज़ करते हैं देखा है

0: कि करीब आपका 30 घंटे का उसका हिताची का यूज पड़ता है,
1: हाँ
0: 20 से 30 घंटा। 1 घंटे में एक्चुअली 20 से 25 मीटर क्यूब का जो मिट्टी वो लोग निकाल सकते
1: निकाल
0: हैं।
1: सकते। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो तालाब, जब नया तालाब बनाते हैं तो कुछ मेंटेनेंस के लिए कुछ खास बातें ध्यान में रखनी होगी
0: हाँ,
1: शुरू में जो है।
0: एक प्रॉब्लम है कि जब पहला तालाब बनते हैं तो जैसा भी हम लोग निकलेंगे पानी में टर्बिडिटी बहुत ज्यादा हो
1: अच्छा,
0: जाएगा।
1: मतलब जो गंदा घुला हुआ
0: हाँ, पानी
1: रहेगा
0: पूरा
1: मिट्टी।
0: घुला हो जाएगा, उसका टर्बिडिटी बोलते हैं, वो घुलापन बोलते हैं। तो बारिश जब गिरेगा पूरा साइड से, पूरा सारो साइड से जब मिट्टी आएगा, पानी आएगा, तो पूरा पानी को पूरा गंदा कर देंगे। ऐसा अगर हम लोग कोई प्रोविजन कर सकते हैं, जैसा इनलेट एंड आउटलेट, पानी घुसने का निकलने का ऐसा करना चाहिए, तब क्या होगा, पानी का अगर एक बार दो बार हम लोग को पानी निकल दे सकते हैं, तो आपको एक दो बार अगर वो पानी निकाल दे सकते हैं, उसके बाद से वो स्टेबिलिटी हो जाता है। उसके बाद चूना वगैरह डालने के बाद वो पानी पूरा क्लीन हो
1: ठीक हो जाए
0: जाएगा।
1: तो, यानी अगर पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बात है।
1: जो बालू वाली मिट्टी है कोई
0: हाँ
1: जगह में तो पानी बहुत नीचे अंदर चला जाएगा,
0: हाँ
1: तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं
0: हाँ
1: किसान?
0: एक्चुअली वो अलग अलग किस्म का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसका डिपेंड करता है आपका पानी का, जो पानी मिट्टी का नीचे जाने का रेट का ऊपर। अगर छोटा सा है, बहुत कम है, तो हम लोग जनरली जो 2-3 साल का बाद वो सही बंद हो जाएगा। गोबर वगैरह जो काउडंग वगैरह डालेंगे तो उसमें से वो कम हो जाएगा।
1: जी
0: लेकिन अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत केमिकल भी निकला हुआ है, जैसे आपका बेंटोनाइट बोलते हैं,
1: जी
0: उसको डालने से भी आपका जो पानी का नीचे जाने का क्षमता कम हो जाएगा, वो पानी ऊपर ही रह जाएगा। स्ट्रक्चर बना के उसमें से आप पानी रखेंगे, उसमें मछली का पालन करेंगे, उसमें सॉयल बेड भी डालेंगे, मिट्टी भी थोड़ा डाल देंगे, तो पानी और प्लास्टिक फिल्म जो डालेंगे हम, वो
1: वो
0: पानी
1: पानी को
0: नीचे
1: रोक
0: जाने
1: देगा,
0: नहीं देगा,
1: रोक देगा
0: वो
1: पानी
0: रोक
1: को।
0: देगा पानी को।
1: तो डॉक्टर साहब, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अगर किसान भाई नए तालाब बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें जो आपने बताई इन पर
0: हाँ
1: किसान जरूर ध्यान देंगे। और तो आप कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप मछली पालन तालाबों का निर्माण कुछ सुझाव के संदर्भ में डॉक्टर कमल शर्मा से की गई ये खास बातचीत सुन रहे थे।
3: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: किसान साथियों, जानकारियों का सफर तो जारी रहेगा, लेकिन इस बीच थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। क्यों ना साथियों, अब एक खूबसूरत सा गीत सुना जाए। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: रुख हो सके। पोषण माह के मुख्य उद्देश्य जो कि इस प्रकार से है, कुपोषण से मुक्ति, बच्चों में कम लंबाई, कम वजन और कुपोषण की दर को कम करना, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की समस्या को दूर करना। शुरुआती 1000 दिन, बच्चे के जन्म से लेकर शुरुआती 1000 दिनों तक उसके पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना, जो उसके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन में केवल पेट भरना शामिल नहीं है, बल्कि उसमें दालें, बाजरा, फल और हरी सब्जियां शामिल करना जरूरी है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के तहत स्थानीय समुदायों को आंगनवाड़ी से जोड़ना, घरों और स्कूलों के पीछे खाली जमीन पर ताजी सब्जियां और फल उगाने के लिए लोगों को बढ़ावा देना। पोषण ट्रैक्टर ऐप की मदद से बच्चों के वजन और लंबाई की सटीक निगरानी करना। साथियों, आम जनता इसमें कैसे भाग ले सकती है? अपने दैनिक आहार में पैकेज्ड फूड की जगह स्थानीय और मौसमी फल सब्जियों को शामिल करें। सितंबर के महीने में आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य शिविर, रेसिपी प्रतियोगिताओं और परामर्श सत्रों में भाग लें। अपने आसपास की गर्भवती महिलाओं या नई माताओं को सही स्तनपान और बच्चों के ऊपरी आहार के बारे में बताएं। बच्चों और महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में बताएं। बजट के अनुकूल पोषण से भरपूर आहार चार्ट बनाने के तरीकों के बारे में बताएं। साथियों, सही पोषण देश रोशन। जब हर थाली में होगा पोषण का वरदान, तभी तो सशक्त और स्वस्थ बनेगा हमारा हिंदुस्तान। साथियों, अभी आप राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जानकारी सुन रहे थे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: तो किसान साथियों, चलिए अब लौटते हैं अपने सवाल पर। कार्यक्रम के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था, उड़द की फसल में नाइट्रोजन ग्रंथियों को बढ़ावा देने के लिए बुवाई से पहले किस जीवाणु से उपचार किया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है राइजोबियम जीवाणु से। उड़द की फसल में नाइट्रोजन ग्रंथियों को बढ़ावा देने के लिए बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर को 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलाना चाहिए। साथियों, उम्मीद है कि इस प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिल गई होगी। किसान साथियों, आज के सफर में बस इतना ही। चलते चलते आज का हमारा मंत्र याद रखिएगा, सही जानकारी और सही उपचार से ही बढ़ता है आपका मुनाफा और बदलती है आपकी आर्थिक स्थिति। जब व्यापार में होगी सही समझदारी, तभी तो दूर होगी हर तंगी और हर बीमारी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: पोषण और स्वस्थ खानपान को बढ़ावा देने के लिए सही खानपान अपनाएं, स्वस्थ जीवन जिए। तो साथियों, आइए राष्ट्रीय पोषण माह के तहत सुनते हैं एक जानकारी। किसान भाइयों, राष्ट्रीय पोषण माह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाने वाला एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कुपोषण को जड़ से खत्म करना और हर नागरिक, विशेषकर महिलाओं और बच्चों तक सही पोषण की जानकारी पहुंचाना है। भारत सरकार ने इस अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया है, जिससे समाज का हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर कल से देशभर में शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान की श्रृंखला में आइए बात करते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में, जिसे देश में बुनियादी ढांचे के विकास और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न प्रकार की बुनियादी सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क की एकीकृत और समन्वित योजना तैयार करना है। इसके अंतर्गत देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और अन्य सुविधाओं का निर्माण अलग अलग विभागों द्वारा किया जाता है। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य इन सभी विभागों को एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना है, ताकि किसी परियोजना की योजना बनाते समय दूसरी परियोजनाओं को भी ध्यान में रखा जा सके। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और निर्माण के लिए एक बदलावकारी दृष्टिकोण अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ढांचे के अंतर्गत गठन किए गए नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है, जिससे प्लानिंग के समय ही एकीकृत नियोजन, बहुआयामी कार्यप्रणाली, अंतर आयामी कार्यप्रणाली, प्रयासों का समन्वय, अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी, परियोजना स्थल और उसके आसपास व्यापक निर्माण डेटा पर आधारित फैसले आदि सुनिश्चित किए जा सकें। आज तक एनपीजी तंत्र के जरिए 16.10 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली 352 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। इन 352 परियोजनाओं में से 201 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से 167 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अंतर्गत हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के भाग 2 के अंतर्गत राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पर 5,000 करोड़ रुपए का वितरण करने का प्रावधान किया है। सेंट्रल सेक्टर की चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से की जाती है, जिनमें पीएम गति शक्ति ढांचे के अंतर्गत नियोजित और मूल्यांकित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक है। जुलाई 2025 से प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग पोर्टल पर स्थिति लागत में बढ़ोतरी आदि दर्शाने वाली विस्तृत त्वरित रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। इसके साथ ही परियोजनाओं की चरणबद्ध निगरानी करने और मुद्दों के समाधान में तेजी लाने तथा बड़े पैमाने की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक संस्थागत तंत्र अर्थात परियोजना निगरानी समूह की स्थापना की गई है। पीएमजी ने एक अद्वितीय 5-स्तरीय समाधान फ्रेमवर्क लागू किया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दों का समाधान उचित स्तर पर हो, नियमित मुद्दों के लिए संबंधित मंत्रालय से शुरुआत करते हुए जटिल मुद्दों के लिए प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जाए। यह दृष्टिकोण समीक्षा तंत्र को सुव्यवस्थित करता है, दोहराव को रोकता है और उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।

परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने और समय पर परियोजना पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को पीएमजी के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं और नियामक बाधाओं के समाधान में तेजी आई है। भारत जैसे विशाल देश में बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं बहुत बड़े स्तर पर चलती हैं। कई बार सड़क बनाने के बाद उसी सड़क को पाइपलाइन, केबल या अन्य सुविधाओं के लिए दोबारा खोदना पड़ सकता है। इससे समय और धन दोनों की बर्बादी होती है। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य ऐसी समस्याओं को कम करना है। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इससे संबंधित विभाग किसी क्षेत्र में पहले से मौजूद और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखकर अपनी परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचे के 7 प्रमुख क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया गया है। इनमें शामिल हैं सड़क, रेलवे, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 7 क्षेत्रों को आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में देखा गया है। इसके साथ ऊर्जा, दूरसंचार, जल एवं सीवरेज तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाएं भी सहयोगी भूमिका निभाती हैं। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का अर्थ है परिवहन के अलग अलग साधनों को इस तरह जोड़ना कि लोगों और सामान को एक साधन से दूसरे साधन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में तैयार हुआ सामान पहले सड़क के माध्यम से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है, फिर रेल के जरिए किसी दूसरे शहर तक और वहां से सड़क या जलमार्ग के माध्यम से बंदरगाह या बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। अगर सड़क, रेल, बंदरगाह और जलमार्ग के बीच बेहतर तालमेल हो तो सामान की आवाजाही अधिक सुचारू हो सकती है और समय तथा परिवहन लागत को कम करने में मदद मिल सकती है। पीएम गति शक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसका ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी को डिजिटल रूप में जोड़ा गया है। इसका फायदा यह है कि किसी परियोजना की योजना बनाते समय संबंधित अधिकारी मानचित्र के माध्यम से आसपास के मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे को देख सकते हैं। इससे परियोजना के लिए उचित मार्ग चुनने, कनेक्टिविटी की कमियों को पहचानने और अलग अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य केवल परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना नहीं है। इसके तहत देश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने पर भी जोर दिया जाता है। इनमें औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल्स क्लस्टर, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, रक्षा कॉरिडोर, कृषि क्षेत्र और मत्स्य क्षेत्र शामिल हैं। यदि किसी क्षेत्र में कृषि उत्पादन अधिक होता है लेकिन वहां से बाजार तक सामान पहुंचाने के लिए पर्याप्त सड़क, रेल या भंडारण की सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति में बेहतर कनेक्टिविटी से किसानों और व्यापारियों को बाजार तक पहुँचने में सहायता मिल सकती है। इसी तरह किसी औद्योगिक क्षेत्र को बंदरगाह या रेलवे से बेहतर तरीके से जोड़ने से वहां उत्पादित वस्तुओं को दूसरे राज्यों या विदेशों के बाजारों तक पहुंचाने में सुविधा हो सकती है। बेहतर बुनियादी ढांचा केवल यात्रा को आसान नहीं बनाता बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे सकता है। नई सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स पार्क और अन्य सुविधाएं बनने से निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों और व्यापार के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत और समय को कम करने, आपूर्ति श्रृंखला को अधिक प्रभावी बनाने तथा देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने में मदद करना है। पीएम गति शक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अनेक केंद्रीय मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसके प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े मंत्रालयों में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,

0: रेल मंत्रालय, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य संबंधित विभाग भी योजना प्रक्रिया में शामिल हैं। केंद्र स्तर पर नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से समीक्षा करता है। इसके अलावा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज और अन्य संस्थागत व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। पीएम गतिशक्ति केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने बुनियादी ढांचे की योजना को गतिशक्ति के सिद्धांतों के अनुरूप विकसित करने के लिए जोड़ा जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर सड़क, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सामाजिक तथा आर्थिक बुनियादी सुविधाओं की योजना बनाने में भी भूस्थानिक आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। सरकार ने जिला स्तर पर भी गतिशक्ति आधारित योजना के विस्तार की दिशा में काम किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे द्वीपीय क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी का विशेष महत्व है। यहाँ सड़क और समुद्री परिवहन के साथ बंदरगाह, हवाई संपर्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बीच समन्वय आवश्यक है। ऐसे क्षेत्रों में यदि विभिन्न परिवहन साधनों और बुनियादी सुविधाओं की योजना एक दूसरे को ध्यान में रखकर बनाई जाए तो लोगों की आवाजाही और सामान के परिवहन को बेहतर बनाने में सहायता मिल सकती है। कुल मिलाकर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान केवल सड़क या रेलवे बनाने की योजना नहीं है, यह देश के अलग अलग बुनियादी ढांचे को एक दूसरे से जोड़कर समन्वित तरीके से विकास करने की एक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य है बेहतर योजना, बेहतर समन्वय, बेहतर कनेक्टिविटी और संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग। पीएम गतिशक्ति का लक्ष्य है कि देश में सड़क बने तो वह रेलवे से जुड़ी हो, रेलवे बंदरगाह से जुड़ा हो, बंदरगाह तक बेहतर सड़क या जलमार्ग हो और इन सभी के बीच आवश्यक डिजिटल तथा लॉजिस्टिक सुविधाओं का समन्वय हो। इस प्रकार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का व्यापक उद्देश्य देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे की योजना में तालमेल बढ़ाना और लोगों तथा सामान की आवाजाही को अधिक सुगम और कुशल बनाना है।
1: अभी आपने सुना क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति।

क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 6:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है, दैट मीन्स दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यहाँ एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति, सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति, सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि। कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग। अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल, इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी, दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी, मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना, उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक

0: एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद ज़रूरी भी, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन अ नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी। क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर है तो 30 सितंबर 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5

लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 7:15 पर आप सुनेंगे मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर आप सुन पाएंगे चर्चा, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पर तत्पश्चात फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। रात 8 बजे आप सुन पाएंगे जापान में खेले जाने वाले 20वें एशियाई खेलों पर पूर्वलोकन कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रोजगार समाचार और गौरव गान का समय रहेगा रात 8:30 और रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। सवेरे 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम का समय रहेगा प्रातः 5:55 जिसमें जानकारी का सुबह 6:10 पर बताया जाएगा। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा मस्ती शीर्षक पर। रामचरित मानस गान का समय रहेगा सुबह 6:30 सवेरे 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा वतन के गीत कार्यक्रम। मौसम की जानकारी और कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा सवेरे 6:50 पर। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएँ। सवेरे 7:15 पर आप सुन पाएंगे फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:30 पर सुनिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। विषय होगा विश्व अल्जाइमर दिवस। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मितुल शाह।

सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में फनकार होंगी रीनू चौधरी, विजय चौधरी और ताहिरा सईद। कुछ फिल्मी गीत आप सुनेंगे सवेरे 9 बजे। सवेरे 9:10 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कुछ फिल्मी गीत का आप आनंद ले पाएंगे सवेरे 9:45 पर। सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा कशिश कार्यक्रम। गीत गुंजन कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 11 बजे। 11:30 पर सुनिए गीत अतीत कार्यक्रम। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:30। दोपहर 1:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए मोहम्मद रफ़ी को। आपके नाम फिल्मी पैगाम फरमाइश।

फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी और प्राइमरी चैनल पर पहली सभा की समाप्ति के बाद FM 100.9 MHz पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, जिसमें आप सैनिकों के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे। और दोपहर बाद 3:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं।

कल सुबह 7:15 पर आप सुन पाएंगे। फिल्मी देशभक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम देशरागनी, जबकि इसी समय पर विविध भारती मुंबई केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुबह 7:10:30 पर सुनिए। हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, विषय होगा विश्व अल्जाइमर दिवस, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मितुल शाह। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

निकोबारी कार्यक्रम के साथ हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे। शाम 4:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 4:40 पर। शाम 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल कार्यक्रम में शाम 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम में संध्या 6 बजे आप सुनेंगे सिप्पी घाट की श्रीमती गीता देवी के साथ की गई बातचीत। विषय होगा मुर्गी पालन, छोटा कारोबार, बड़ी उम्मीद। शाम 6:30 पर सुनिए क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति। शाम 6:45 पर सुनिए मृणाल पांडे की लिखी झलकी खेल।

मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आप सुन पाएंगे संध्या 7:15 पर। संध्या 7:20 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम ऐसा भी होता है।

0: चित्रपट संगीत कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8 बजे। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित होगा 20वां रोजगार मेला। घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला। थोक उपभोक्ता अब 30 दिनों तक रख सकेंगे चीनी का भंडार। लिटिल अंडमान में ओंगी समुदाय के लिए आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। खोज बचाव और प्राथमिक उपचार का दिया गया प्रशिक्षण। और द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा मूसलाधार बारिश का दौर। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

सांध्य समाचारों के साथ मैं टी जयश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नए नियुक्त उम्मीदवार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे, जिनमें राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा रक्षा मंत्रालय शामिल है। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने और देश की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के संकल्प को दिखाता है। 20वें रोजगार मेले के साथ कुल मिलाकर लगभग 12,75,000 युवाओं को अलग अलग विभागों और सरकारी संगठनों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा को 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। यह छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिनों की सीमा से अधिक भंडारित चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जा चाहिए। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा अपरिवर्तित रहेगी और केवल 15 दिनों की खपत तक ही सीमित रहेगी। यह निर्णय सरकार द्वारा चीनी के प्रमुख थोक उपभोक्ताओं के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम थोक उपभोक्ताओं के हितों और घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से आगामी त्योहारी सीजन के दौरान वास्तविक औद्योगिक उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रही परेशानियों को लेकर सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। सांसद ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर द्वीपों में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सीमित उपलब्धता और मुख्य भूमि तक यात्रा की कठिनाई के कारण दूर दराज के द्वीपों में तैनात शिक्षकों को पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते। सांसद ने प्रशासन से राज्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से स्थानीय स्तर पर परीक्षा आयोजित कराने के लिए आवश्यक अनुमति और मान्यता की दिशा में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजय परम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है आपदा जागरूकता कार्यक्रम और मौसम। आकाशवाणी श्री विजय परम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ

साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार अब सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म X, YouTube, Facebook और Instagram पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। लिटिल अंडमान के डुगोंग क्रीक स्थित सामुदायिक भवन में ओंगी समुदाय के लिए आपदा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। NDRF की बटालियन, रीजनल रिस्पांस सेंटर, आपदा प्रबंधन निदेशालय, जनजातीय कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभागियों को खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार तथा आपदा चेतावनी और शुरुआती अलर्ट की जानकारी दी गई। मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया के जरिए समय पर सूचना प्राप्त करने एवं साझा करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि इससे समुदाय की आपदा तैयारी और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई की क्षमता मजबूत होगी। मत्स्य निदेशालय ने समुद्री जलीय कृषि गतिविधियों के लिए समुद्री क्षेत्रों को लीज पर देने हेतु पात्र इच्छुक लोगों और संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन समुद्री क्षेत्रों में ओपन सी केज कल्चर, समुद्री शैवाल पालन और मोती पालन जैसी गतिविधियां की जा सकेंगी। इसके लिए मछुआरे, मत्स्य किसान, मत्स्य श्रमिक, मछली विक्रेता, व्यक्तिगत उद्यमी, निजी फर्म, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य सहकारी समितियां, संयुक्त देयता समूह तथा मछली किसान उत्पादक संगठन आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन पत्र 19 सितंबर 2025 की अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार चिन्हित समुद्री क्षेत्रों की सूची तथा ओपन सी केज कल्चर, समुद्री शैवाल पालन और मोती पालन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्त प्रशासन तथा मत्स्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। मध्योत्तर अंडमान जिले के मायाबंदर क्षेत्र में CFO नाला स्थित स्टील बेली ब्रिज के मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के चलते 20 सितंबर से 29 सितंबर तक ब्रिज को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। कार्य समाप्त होने के बाद पुल को यातायात के लिए पुनः खोल दिया जाएगा। प्रशासन ने आम लोगों से निर्धारित अवधि के दौरान पुल बंद रहने को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय ने खेल एवं युवा मामलों के विभाग और पर्यटन हितधारकों के सहयोग से कार्रवाई स्कोप तट पर बीच स्पोर्ट्स गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से पर्यटन का नया स्वरूप। विषय आधारित पहलों के अतिरिक्त युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और द्वीपों में बीच स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खेल गतिविधियों को भी समारोह में शामिल किया गया है। 26 और 27 सितंबर को पुरुषों और महिलाओं के लिए कार्रवाई स्कोप तट पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीच वॉलीबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट और रस्साकसी शामिल है। निदेशालय ने खेल क्लबों, युवा समूहों, शैक्षणिक संस्थानों, टीमों और खेल प्रेमियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने को कहा है। संबंधित श्रेणियों में विजेताओं और उपविजेताओं को पर्यटन विभाग द्वारा ट्रॉफियां और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी पर्यटन विभाग के अधिकारियों के पास पंजीकरण करा सकते हैं और पात्रता नियम और विनियम, पंजीकरण और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय के प्रबंधक संचालन से मोबाइल संख्या 9933255364 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक संपूर्ण द्वीप समूह में बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण अंडमान और निकोबार जिलों में आज और कल बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर और मध्य अंडमान में इस दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। 20 सितंबर को भी द्वीप समूह में भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को समुद्र में 22 सितंबर तक न जाने की सलाह दी गई है। तूफानी हवाएं चलने और समुद्र के बेहद उग्र रहने की आशंका जताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित होगा 20वां रोजगार मेला। घरेलू चीनी बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार का फैसला, थोक उपभोक्ता अब 30 दिनों तक रख सकेंगे चीनी का भंडार। लिटिल अंडमान में ओंगी समुदाय के लिए आपदा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित।

0: खोज बचाव और प्राथमिक उपचार का दिया गया प्रशिक्षण। और द्वीप समूह में अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा मूसलाधार बारिश का दौर। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। जन सेवाओं को चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 1-2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और कहीं कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है, जिस कारण समुद्र काफ़ी अशांत रहेगा। अतः मछुआरों को 22 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। आइए अब सुनते हैं जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी कालीघाट माय बंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल 19 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान अगले दिन 20 तारीख को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर माय बंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार जाने के लिए परसों यानी रविवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलियान 21 तारीख को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर एमवी कैमलबे 20 तारीख को सुबह 9 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए वापस छूटेगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 19 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलियान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलियान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। एमवी रंगत शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत के लिए कल सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और जलियान परसों यानी 20 तारीख को सुबह 7 बजे रंगत से छूटकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। शहीद द्वीप जाने के लिए एमवी जॉली बॉय कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलियान कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलियान कल ही दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा और कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापस चलेगा। शहीद द्वीप के लिए एमवी कमोटा कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलियान अगले दिन यानी 20 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज

अब सुनिए जन सूचनाएं। आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2026। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के चयन की

आकाशवाणी श्री विजयपुरम में ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के पैनल में शामिल होने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। स्नातक अर्थात ग्रेजुएट उम्मीदवार जिन्हें हिंदी व अंग्रेजी तथा कंप्यूटर का ज्ञान हो और जिनकी आयु 31 अगस्त 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। श्री विजयपुरम नगर पालिका क्षेत्र के भीतर रहने वाले जो समुचित योग्यता रखते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र आकाशवाणी श्री विजयपुरम के ड्यूटी रूम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 5 अक्टूबर 2026। याद रहे, प्रसारण सहायक अर्थात ब्रॉडकास्ट असिस्टेंट के चयन की प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है। इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैर कानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है 03192240127, 03192238881 या 1070। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 7:30 हुए हैं। अब युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी।

0: युवावाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नांदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 18 सितंबर है और आज के दिन हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। दोस्तों, हर व्यक्ति के लिए उसका काम केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि उसके सम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार भी है। इसी सोच को मजबूत करने के लिए हर वर्ष आज ही के दिन यानी 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समान या समान मूल्य के काम के लिए महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन दिए जाने के महत्व को सामने लाना है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रशासन, उद्योग, खेल और लगभग हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद कई स्थानों पर महिलाओं और पुरुषों के वेतन में अंतर देखने को मिलता है। समान योग्यता, जिम्मेदारी और कार्य के लिए वेतन में किसी भी प्रकार का भेदभाव न केवल आर्थिक असमानता को बढ़ाता है बल्कि कार्यस्थल पर समान अवसर के सिद्धांत को भी प्रभावित करता है। समान वेतन का अर्थ केवल एक समान राशि देना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि भर्ती, जिम्मेदारियों और पारिश्रमिक से जुड़े निर्णय निष्पक्ष और पारदर्शी हों। जब किसी व्यक्ति के काम का मूल्यांकन उसकी योग्यता और कार्य के आधार पर किया जाता है न कि उसके लिंग के आधार पर, तब कार्यस्थल अधिक न्यायपूर्ण बनता है। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जुड़ते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो फ्रेंड्स।
1: हेलो जी, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: हाँ जी, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से।
0: अच्छा, तो आप कैसे हैं? सबसे पहले आपसे जानते हैं राम बाबू जी।
1: हाँ जी, हम एकदम बढ़िया हूँ और अच्छे हैं और हमारे परिवार वाले जितने भी हैं सभी अच्छे हैं और ऐप के माध्यम से आपके प्रोग्राम हम पूरे दिन सुनते रहते हैं। अच्छे लगते हैं प्रोग्राम
0: जी,
1: और आपके जितने भी प्रोग्राम आप जो इतनी मेहनत और इतने लगन से बनाते हो, इतनी मेहनत से, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। आपके जो युवाणी वगैरह हम सुनते ही बहुत अच्छे लगते हैं प्रोग्राम।
0: अरे वाह, ये प्रोत्साहन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी प्रोत्साहन से और आप जैसे श्रोताओं की वजह से ही हमें शक्ति मिलती है कि हम और भी आगे अच्छा काम करें और आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आएं। और हमें काफ़ी खुशी है कि आज आप हमसे जुड़े। वैसे मैं अभी आपसे जानना चाहूँगी कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे राम बाबू जी?
1: जी, फिल्म अग्निपथ का सुनवा दीजिए। जैसे अपने अभी फिलहाल ये गणेश चतुर्थी का ये चल रहा है
0: जी,
1: हाँ जी, ये त्योहार चल रहे हैं तो इसमें अग्निपथ का गाना है देवा श्री गणेशा देवा
0: जी, जी।
1: ये सुनेंगे और युवाणी में जितने भी सुनने वाले सभी दोस्तों के लिए रहेगा ये गाना
0: जी। जी ठीक है, और आप कुछ अपने खास दोस्तों को अगर याद करना चाहे तो?
1: हाँ जी, हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है
0: जी,
1: और जितने भी सुनने वाले सभी दोस्त है, दोस्त जितने भी है सभी अच्छे हैं
0: जी। जी जी, तो ठीक है, तो कुछ ही समय में हम आपको आपका ये मनचाहा गीत जरूर सुनवाएंगे राम बाबू जी। पर जैसे कि आपने गणेश चतुर्थी की बात छेड़ ही दी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके राज्य में कैसे मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का ये पर्व?
1: जी, अपने राज्य में अपने जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आपको तो याद है बराबर, और यहाँ पे हर एक गली मोहल्ले में और रोड पे कैसे भी जगह हर जगह है ना गणेश चतुर्थी के पांडाल सजे हुए हैं और पूरी तरह धूमधाम के साथ में जितने भी है छोटे बच्चे से लेके तो बुजुर्ग तक है ना बहुत मतलब हंसी खुशी के साथ और इतने

0: खुश होके ये त्योहार मनाते हैं गणपति बप्पा का,
1: हर्षोल्लास का महोत्सव। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर दृश्य होगा, हम यहीं से महसूस कर पा रहे हैं वहाँ की रौनक को। तो ठीक है, चलिए, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: नमस्कार मैम,
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी आशुतोष जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ मैम जी।
0: जी, तो वैसे आपसे अभी जानते हैं कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैडम जी, आज मुझे सुना दीजिए मशहूर सिंगर लता जी की आवाज़ों में।
0: जी,
1: फिल्म का नाम है क्रांति
0: जी।
1: और गाने का बोल है मारा थुमका बदल गई चाल मिटी। और इस गाने को लिखा है मशहूर लिरिक संतोष आनंद जी ने।
0: जी बिल्कुल।
1: और इस गाने को सुर से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी।
0: जी बिल्कुल सही। तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स
1: हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: जी मैम, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बसंती लाल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया मैम। गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, सभी परिवार को और जितने भी सुनने वाले श्रोताओं को।
0: जी, और आपको भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बताइए,
1: जी
0: आपका
1: मैम,
0: दिन कैसा बीत रहा है?
1: बस मैम कीटनाशक दवाई वगैरह डाल रहे हैं अभी। गेंदा
0: अच्छा,
1: फसल लगा रखी है,
0: अरे
1: गेंदा
0: वाह,
1: की
0: जी जी
1: वनस्पति
0: जी जी बहुत खूब बहुत खूब।
1: लगा रखी है हमने, वनस्पति लगा रखी जो फूलों में अभी अच्छी मार्केट में 30-35-40 तक रुपए किलो बिक रही है।
0: अच्छा, जी जी जी
1: जी, गणेश
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: उत्सव, गणेश उत्सव चल रहा ना मैम,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी जी
1: इसलिए
0: फूलों की आवश्यकता। जी जी जी
1: जी जी डिमांड ज्यादा बढ़ी
0: हाँ
1: रहती है
0: जी
1: इन दिनों।
0: जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो बताइए,
1: जी,
0: आपके परिवार में वैसे कौन कौन है?
1: सब है, दीदी बच्चे हैं सभी है मैम। जी
0: अरे वाह, अरे वाह। तो आप
1: जी
0: युवाणी कार्यक्रम सभी के साथ मिलकर सुनते हैं?
1: जी जी जी मैम, कई सालों से मैं आपके
0: अरे
1: विजयपुरम से
0: वाह
1: जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी, बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर। तो बताइए, आज आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बसंती लाल जी?
1: जी मैम, मुझे आज गाना सुनवा दीजिए। गणेश उत्सव चल रहा है तो
0: जी
1: गणपति बप्पा मोरिया कोई भी सिलेक्ट कर लीजिए आप गाना, सभी
0: अच्छा
1: गाने बहुत अच्छे हैं ना मैम।
0: जी जी
1: जी,
0: तो
1: कुछ
0: ठीक है,
1: मित्रों के नाम ले लो, आपकी
0: बिल्कुल
1: इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ये हमारे मित्र है, अनु भट्टाचार्य जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, अविनाश जी है, सत्यनी कुंडुम जी है, शिप्रा जी है, मोनिका जी है
0: जी
1: और वीरजमणि जी है, हम सब सुनना चाहेंगे।
0: जी तो ठीक है, आपकी फरमाइश पे हम गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक प्यारा सा गीत आपके लिए भिजवा रहे हैं मध्य प्रदेश। सुनिए।

0: हेलो फ्रेंड्स।
1: हाँ जी नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्कार, मेरी किन से बात हो रही है?
1: मैडम जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
0: अच्छा लोकेंद्र जी, सबसे पहले जानते हैं कैसे हैं आप?
1: बस बिल्कुल मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और तो रेडियो शो हमारा दिलों की धड़कनों में है, तो रेडियो और युवानी प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अरे वाह अरे वाह, वैसे वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बिल्कुल खुला हुआ साफ मौसम है, बारिश क्या
0: अच्छा
1: थोड़ी अभी कम हुई है यहाँ पर।
0: जी जी जी तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गीत सुनना है मुझे मैडम, फिल्म का नाम है जो जीता वही सिकंदर,
0: जी
1: इसमें गाना है वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है,
0: अरे
1: हारी
0: वाह,
1: बाजी को
0: बहुत ही
1: जीतना जानता
0: जी
1: है।
0: जी बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना। और आप ये गीत
1: जी
0: किन दोस्तों
1: मैडम,
0: के साथ सुनना चाहेंगे?
1: अनु कुमार भट्टाचार्य जी है, धर्मवीर जी है, दिल्ली से राम बाबू मालवीय जी है हमारे मित्र
0: जी
1: हैं, और सेवाराम रत्नानी जी हमारे मित्र, जो तो उनका तो एक्सपायर हो गए वो सेवाराम रत्नानी जी हमारे, पर उनको हम याद जरूर करते हैं।
0: जी जी जी
1: जी सर
0: जी तो ठीक है, कुछ ही देर में हम आपको सुनवाते हैं आपका ये मनपसंद गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नांदिनी को इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: ಕಟ್ಟಿನ್ ರೀ ಸರ್.
1: ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026 ಆಯ್ಚಿ ನಗೋಯಾ.
2: जापान के आइची नागोया में एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच सज चुका है. इस बार 500 से अधिक भारतीय खिलाड़ियों का दल 35 अलग अलग खेल स्पर्धाओं में देश का मान और तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए तैयार हैं. इन भारतीय खिलाड़ियों के कंधे पर आइची नागोया में सिर्फ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें ही नहीं है, बल्कि उनके सामने खुद का ही बनाया हुआ 28 गोल्ड समेत 107 मेडल्स का एक बहुत बड़ा पहाड़ पार करने की भी बड़ी चुनौती होगी. खास बात यह भी है कि भारतीय दल में 300 से ज्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कदम रख रहे हैं. उन्हें यह साबित करना है कि भारत की नई पौध दबाव में बिखरती नहीं बल्कि निखरती है. औपचारिक रूप से 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले इस खेल महाकुंभ में हमारे एथलीटों की नजरें एशिया के टॉप 3 देशों में जगह बनाने और कई खेलों में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का टिकट पक्का करने पर भी टिकी हैं. भारत जिन खेलों में भाग ले रहा है उनमें तीरंदाजी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, ट्रैक एंड फील्ड की अलग अलग स्पर्धाएं, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कैनोइंग, क्रिकेट, साइकिलिंग, घुड़सवारी, ई स्पोर्ट्स, तलवारबाजी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, कुराश, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, रोइंग, रग्बी सेवंस, सेलिंग, सिपकटेकरा, शूटिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्क्वाश, सर्फिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, सॉफ्ट टेनिस, टेक बॉल, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, घुड़सवारी और वुशु जैसे खेल शामिल हैं. एशियन गेम्स में इस बार भी एथलेटिक्स में सबसे अधिक भारतीय खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं. 70 से अधिक सदस्यों वाले एथलेटिक्स दल में 30 से अधिक पुरुष और करीब 40 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. पिछली बार भारत ने 6 स्वर्ण समेत 29 पदक जीते थे. इस बार भी ढेर सारी उम्मीदें हैं. एथलेटिक्स में 100 मीटर स्प्रिंट के भारत की बड़ी उम्मीद गुरिंदर वीर सिंह बिल्कुल तैयार है. दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद उन्होंने एशियन गेम्स की संभावनाओं को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं.
3: हर कंपटीशन एक जर्नी का पार्ट होता है. हमारा फाइनल गोल, हमारा फाइनल जो रेस है एशियन गेम्स है, हमको वहाँ अच्छा करना है. ये प्रिपरेशन है, ये फिटनेस ट्रायल है और हम अच्छा भागे हैं. बट हाँ, होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे और मेडल जीतेंगे.
2: महिला ट्रिपल जंपर निहारिका वशिष्ठ भी पूरी तरह से तैयार हैं और उन्होंने गोल्ड का लक्ष्य रखा है.
4: देखिए, एशियन गेम्स के लिए मेरा टारगेट है कि मैं 14 मीटर्स के ऊपर ही लगाऊं, तो उस चीज को माइंड में रखते हुए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और अपना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश करूंगी.
2: हैमर थ्रोअर तानिया चौधरी ने दिल्ली में नेशनल रिकॉर्ड बनाया और उसके बाद एशियन गेम्स के लिए पूरी तरह कॉन्फिडेंट है.
5: अभी अपना पीवी किया है तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ. अब वहाँ पे जाके थ्रो लगाने के लिए अच्छा करेंगे.
2: भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमें इस बार न सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल की बड़ी दावेदार हैं. दोनों टीमों के पास गोल्ड जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका भी है. हॉकी में भारत की उम्मीदों के बारे में हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी ने बात की भारत के पूर्व कप्तान जफर इकबाल से.
6: जफर साहब, भारत 4 बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीत चुका है, 2026 में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा. इस बार चुनौती कितनी अलग होगी, खासकर जब गोल्ड के साथ टीम 2028 का सीधे ओलंपिक का टिकट हासिल करेगा?
7: देखिए, इम्पोर्टेंट तो ये सब गेम्स हैं दोनों मेन एंड वुमेन के लिए, और जो भी जीतेगा नेचुरली वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा ओलंपिक गेम्स के लिए. तो वो एक बहुत बड़ा सबके दिमाग में होगा, ना कि ओनली हिंदुस्तान की टीम इस बात को सोच रही होगी, क्योंकि जापान इज द होस्ट कंट्री, ऑल्सो द पाकिस्तान भी है उधर, मलेशिया इज ऑल्सो देयर, साउथ कोरिया इज ऑल्सो देयर. तो मेरे ख्याल में सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा, दिस इज द गोल्डन चांस एनीबॉडी हु विंस द गोल्ड. तो वो मेरे ख्याल में अच्छा कंपटीशन है एशियन गेम्स का. मगर अगर एक ये बात कहें कि वर्ल्ड कप या ओलंपिक गेम्स, उसका स्तर अलग है
6: जी.
7: यहाँ का स्तर अलग है. मैं कहूंगा कि बिल्कुल हिंदुस्तान की टीम, ये तो मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि वी आर स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, बहुत मजबूत टीम है हमारी. बट ये भी

0: नहीं कह सकते कि बिल्कुल हम जीत के गोल्ड ही लेके आएंगे, लाना चाहिए भी, बिकॉज विद द सेम मेंटेलिटी अगर आप जा रहे हैं तो यू कैन डू इट. हमारा अपर हैंड तो है, देयर इज नो डाउट अबाउट, और हमें मुझे बहुत उम्मीद है कि हम गोल्ड जीतेंगे इसमें, मगर खेलों की दुनिया में यू नेवर नो के व्हाट विल हैपन. तो इसमें मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम स्ट्रांग है और हम लोगों को मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहिए, फिजिकली, और हम लोग को एक्सपीरियंस भी है. वर्ल्ड कप जब कोई खेलता है तो उसकी प्रिपरेशन हायर लेवल पे चली जाती है, बिकॉज यू हैव टू मीट ऑल दी हाई रैंक टीम, चाहे वो बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया है, हॉलैंड है, जर्मनी है. तो यहाँ पे अच्छा मुकाबला रहेगा, वी शुड विन द एशियन गेम्स.
1: महिला टीम पिछले दिनों से काफी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है एशियन गेम्स में. सबसे बड़ी हालांकि चुनौती चीन, दक्षिण कोरिया ये है, लेकिन वर्तमान में जिस तरह टीम खेल रही है, जिस तरह वर्ल्ड कप में भारत ने चीन को बराबर पर रोका था, उसको देखते हुए महिला टीम के बारे में क्या कहेंगे, कितनी संभावना है?
0: नहीं, अच्छी संभावना है कि मेडल पोडियम पे ये आ सकती है, क्योंकि जब वर्ल्ड कप में फिफ्थ पोजीशन लेके आए हैं तो इट्स बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन्स टीम.
2: वेटलिफ्टिंग में एशियन गेम्स में इस बार सिर्फ महिला वर्ग में भारतीय चुनौती है. भारतीय वेटलिफ्टिंग दल की अगुवाई 49 किलो भार वर्ग में मीराबाई चानू करेंगी. उनके सामने अपने पिछले रजत पदक का रंग बदलने का बड़ा दबाव होगा, लेकिन हर दबाव से निकलकर निखरने के लिए भारतीय वेटलिफ्टिंग दल तैयार है. भारतीय टीम की सदस्य ज्ञानेश्वरी, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, वो बता रही हैं कि मुश्किलें तो होंगी, लेकिन अच्छा करने का लक्ष्य इस बार तय कर रखा है.
3: मैं चाहूंगी कि अपना बेस्ट प्रदर्शन करूं. एशियन कंट्रीज, चाइना और बाकी अदर कंट्रीज भी आती है तो थोड़ा टफ रहता है.
2: हरजिंदर कौर, जो 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय दल की उम्मीद होंगी, वो बताती हैं कि वो अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
4: टारगेट मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट दे के आऊं परफॉर्मेंस, जैसे मैंने कॉमनवेल्थ गेम में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था.
2: और अब बात शूटिंग की. इस बार पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर की मौजूदगी में भारतीय शूटिंग टीम के सामने हांगझू के 22 पदकों के रिकॉर्ड को पार करने की बड़ी चुनौती है. टीम कितनी तैयार है और क्या उम्मीदें हैं, बता रहे हैं ट्रैप शूटर केनन चिनाई. केनन, इस बार फिर से मेंस ट्रैप इंडिविजुअल इवेंट और मेंस ट्रैप टीम इवेंट में आप उतरने जा रहे हैं, हांगझू की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए इस बार कैसी तैयारी है?
5: सर, हमारा तैयारी तो बहुत अच्छा रहा इस बार. पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ. तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में. इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा, अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा. तो देखी जाएगी सर वहाँ जाके कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए.
2: और पिछली बार टीम इवेंट में तो गोल्ड आया था, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल दूर रह गया था. पिछली बार वो कौन सा पहलू रह गया था जिसमें सुधार कर इस बार गोल्ड जीतकर तिरंगे को सबसे ऊपर फहराने का टारगेट आपने तय किया हुआ है?
5: सर, वो तो कभी भी ड्रीम है, वो तो दिल में कभी भी रहता है. जो भी कंपटीशन पे गए तो वही दिल में रहता है, वही दिमाग में रहता है. लास्ट टाइम मैंने ब्रॉन्ज जीता था इंडिविजुअल में, तो अच्छा था सर. वो मेरा सेकंड गेम्स था, ये मेरा तीसरा गेम्स है, तो कोशिश तो पूरा करेंगे सर.
2: आपके ट्रैप इवेंट में मुख्य रूप से किन एशियाई देशों की तगड़ी चुनौती होती है और उससे निपटने के लिए आपने अपने कोच अंशर सिंह के साथ और चेक कोच डेविड कोस्टेलिंकी के साथ क्या खास प्लानिंग की है?
5: ऐसे तो प्लानिंग नहीं करे कौन सी नेशन को हराएंगे, मगर ऐसे प्लानिंग करे कि हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आएगा, हमारा बेस्ट एफर्ट कौन सा, टारगेट्स पे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बंदूक यूज करना है, कौन सा एमिनेशन यूज करना है, वो सब डिस्कशन होते रहते.
2: और किरण, पिछली बार भारतीय शूटिंग दल ने 22 मेडल जीते थे, बहुत बड़ी संख्या थी. इस बार कितनी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आप तो टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कैसी परफॉर्मेंस चल रही है वो भी चर्चा होती होगी, तो ओवरऑल क्या लग रहा है?
5: सर, ऐसा है कि हमारा राइफल पिस्टल टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है वर्ल्ड में, तो आई थिंक दे विल डू रियली वेल. आई थिंक दे हैव अ वेरी वेरी गुड चांस इन बीटिंग अ लॉट ऑफ द कंट्रीज एंड गेनिंग मेडल्स फॉर आवर कंट्री. शॉटगन टीम ऑल्सो इज कमिंग अप वेरी वेल, वी हैव अ यंग टीम गोइंग दिस टाइम. सो I think what I've seen at least in the camps and in the preparation to the games, that everybody is putting their best foot forward. बहुत ज़्यादा effort दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा training कर रहे हैं, तो कुछ तो positive आएगा.

0: का मुक्केबाजी दल हमेशा मेडल का बड़ा दावेदार रहा है। पिछली बार लवलीना बोरगोहेन के सिल्वर समेत भारतीय दल ने 5 पदक जीते थे। इस बार उससे आगे निकलने का इरादा है। पदक जीतने की कितनी उम्मीदें हैं और पिछली बार से कितना बेहतर भारतीय दल कर सकता है, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग दल के पूर्व चीफ कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त एसआर सिंह।
1: देखिए, हमारे पास इस टाइम 6 लड़के और 5 लड़कियां जो है टीम में गई हैं और काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कि एक्सपीरियंस टीम है, जो पीछे कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। स्पेशली लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और लड़कों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडलिस्ट थे उसमें, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन है अच्छा प्रदर्शन करें।
0: आईची नागोया में भारतीय कुश्ती दल से देश को कई पदक जीतने की मजबूत उम्मीद है। भारतीय दल की बात करें तो पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सहरावत हैं, सुजीत कलकल हैं, सागर जगलान, दीपक पूनिया और रजत रोहल की चुनौती होगी। महिला फ्री स्टाइल में अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, दीपांशी 50 किलोग्राम और प्रिया मलिक 72 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। ग्रीको रोमन में भी हमारे 3 पहलवानों की चुनौती होगी। दीपांशी कहती है कि गोल्ड जीतने के लिए इस बार पूरी तैयारी है।
2: तैयारी बहुत ही अच्छी है, जाएंगे कॉन्फिडेंस से और मेडल लेके आएंगे वहाँ से।
3: कितना जोश है?
2: फुल 100 of 100।
3: कितने मेडल आएंगे?
2: जितने हम बच्चे जाएंगे रेसलिंग से उतने ही मेडल आएंगे हमारे।
0: 68 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी चुनौती पेश करने जा रही निशा बता रही है कि तिरंगा लहराने का इस बार लक्ष्य तय कर रखा है।
2: तिरंगा ही लहराना वहाँ जाके, मेरा तो एम यही है।
0: पहलवान प्रिया मलिक का कहना है कि किसी का डर नहीं है, भारत बेस्ट है।
4: प्लान तो यही है सर कि अपना बेस्ट देना है, सब यही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपना 100% देंगे और अच्छा करेंगे।
3: तो जापान कोरिया की जो डर था वो निकल चुका है, उनकी लड़कियां बड़ा मजबूत है।
4: नहीं सर, कोई डर नहीं है, हम ही सबसे बेस्ट है, इंडिया सबसे बेस्ट है।
0: पुरुष वर्ग में सुनील कुमार इस बार मेडल की उम्मीद कर रहे हैं।
5: पिछली बार मैंने ब्रोंज मेडल जीता था, अब की बार मेडल का रंग चेंज करूंगा, गोल्ड मेडल लेके आऊंगा देश के।
3: इस बार क्या ज्यादा फोकस किया है इस एशियन गेम्स के लिए, जो तैयारियां की, किन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है?
5: ग्राउंड रेसलिंग पे ज्यादा फोकस किया।
3: क्या लग रहा है इस बार कितने पदक कुश्ती से आएंगे?
5: कम से कम 10 मेडल देंगे कुश्ती के।
0: भारत के पारंपरिक खेल कबड्डी में पहले कोई खास चुनौती नहीं दिखती थी, लेकिन अब पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों में ईरान की कड़ी चुनौती सामने आती है। भारतीय पुरुष टीम के सदस्य पवन इस बार की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
6: बिल्कुल मेडल लेके आएंगे और कबड्डी से हमेशा एक्सपेक्टेशन रही है कि मेडल लेके आई है, और आज तक ऐसा हुआ नहीं कि कबड्डी बिना मेडल के आई हो। 2018 में ऐसा हुआ था कि जो थर्ड पे फिनिश किया था, लेकिन अभी 2022-23 में जब भी हम मेडल लेके आए थे, गोल्ड लेके आए थे, और डेफिनेटली अभी गोल्ड लेके आएंगे।
0: क्रिकेट की बात करें तो इस बार भारत अपनी सेकेंड ग्रेड टीम नहीं बल्कि मुख्य टीम को मैदान पर उतार रही है। पुरुष टीम कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरुआत करेगी। महिला वर्ग में कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम अपने स्वर्ण पदक की रक्षा के लिए उतर रही है। भारत ने अपना क्वार्टर फाइनल मैच जापान के खिलाफ जीत लिया है, अब सेमीफाइनल मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 20 सितंबर को होगा। अपने पारंपरिक खेल तीरंदाजी में हमें अक्सर बहुत उम्मीदें रहती हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एशियन गेम्स में कंपाउंड इवेंट में हम सुपर पावर साबित हुए थे और 5 के 5 गोल्ड मेडल जीते थे। कंपाउंड और रिकर्व श्रेणियों में कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। पहले सुन लेते हैं कंपाउंड आर्चर प्रतीका प्रदीप संभावनाओं को लेकर क्या कह रही हैं।
7: मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपने शूटिंग पर फोकस करूंगी और इंडिया के लिए मेडल लाने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट अस होप फॉर द बेस्ट कि सारे ही मेडल आए। इस बार सब अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वही तैयारी चल रही है, सो विल डू आवर बेस्ट।
0: रिकर्व टीम से भी इस बार बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं, ऐसा रिकर्व टीम की सदस्य कुमकुम महोत भी मान रही हैं।
8: एशियन गेम्स में उम्मीद, मतलब मैं मेरा बेस्ट दूंगी, मेडल तो आएगा 100% आएगा, और मेडल टीम का भी हो सकता है, मिक्स टीम का भी हो सकता है और इंडिविजुअल का भी हो सकता है।
0: वॉलीबॉल कभी हमारा ताकत वाला खेल नहीं रहा है, फिर भी इस बार हम उलटफेर के लिए तैयार हैं। एशिया के शीर्ष देशों की मौजूदगी में बेहतर प्रदर्शन इस बार हमारा एकमात्र लक्ष्य है। बैडमिंटन में एशियाई टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शुमार हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है, लेकिन सच ये भी है कि 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु अपने शिखर से ढलान की तरफ हैं, वहीं युवा सनसनी लक्ष्य सेन के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखाई

0: देती है। आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा जैसे कुछ युवा चेहरे जरूर कुछ प्रभावित करने में सफल रहे हैं। हालांकि डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मेंस डबल्स जोड़ी इस बार भी कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है। संभावनाओं को लेकर चिराग शेट्टी खुद क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
1: एशियन गेम्स के लिए आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट या वी आर द पेयर टू बीट अ वीक और टू इन मिड बिफोर द एशियन गेम्स। आई वुडंट से दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर गुड पेयर्स एज वेल। वी जस्ट वांट टू गो आउट देयर एंड हैव एज मच फन एज वी नॉर्मली डू ऑन अ बैडमिंटन कोर्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट आई थिंक वी विल बी एबल टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट एंड That's the only thing we want to do, like not really think too much about the results. When we are able to keep the results aside and take one match at a time, I think we do really well.
0: चीन और जापान जैसे देशों की मौजूदगी में टेबल टेनिस में पदक तक पहुंच पाना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है, लेकिन मानुष शाह, मानव ठक्कर, हरमीत देसाई, श्रीजा अकुला, दिया चितले, सिंड्रेला दास और पायस जैन जैसे युवा खिलाड़ियों से इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस के गोल्ड मेडलिस्ट पायस जैन क्या कुछ कहते हैं इस बारे में वो जानते हैं।
2: तैयारियां काफी अच्छी चल रही है एशियन गेम्स के लिए, और जो हमारा पास्ट परफॉर्मेंसेस है टेबल टेनिस का एशियन गेम्स में एंड अभी इस साल में, फिर बात करूँ कि डबल्स है, मिक्स डबल्स है, सिंगल्स है, आई फील कि हम सारे अच्छे कर रहे हैं एंड या वी आर रेडी जो भी चैलेंजेस आने वाले एशियन गेम्स के लिए, एंड रियली हैप्पी एंड ऑनर्ड एशियन गेम्स जाने के लिए। लेट्स सी हाउ इट गोस, वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई कैन नॉट पिन पॉइंट कि कितने आएंगे, कैसे आएंगे, यू कैन नॉट, मतलब स्पोर्ट्स है, बट आई फील कि या इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लास्ट टाइम।
0: स्क्वाश में अनाहत सिंह ने हाल में कई चौंकाने वाले परिणाम दिए हैं, अपने से कहीं ऊंची रैंकिंग वाले खिलाड़ियों को कई मौकों पर मात दी है। साथ ही जोशना चिनप्पा और अभय सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस बार भारतीय टीम में शामिल हैं, तो पदक की पुख्ता उम्मीदें हैं। पदक की संभावनाओं को लेकर क्या कहती हैं युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह?
3: I'd love to change the color of the medal. It'll be great to, you know, be able to go up a step. But of course, the competition's a lot. There's a lot of different players from different countries who are in the top in the world right now. But I mean, hopefully, I'm able to do something and I'm able to train hard towards the Asian Games and do well.
0: भारतीय मार्शल आर्ट्स के लिहाज से वुशु हमेशा से एक ऐसा साइलेंट परफॉर्मर रहा है जिसने वैश्विक स्तर पर देश को लगातार गौरव दिलाया है। इस बार भी भारत को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कोच अमित पाल टीम की संभावनाओं के बारे में बता रहे हैं।
4: अभी एशियन गेम्स के लिए हमारी टीम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, और लास्ट ईयर हमने एक सिल्वर मेडल लिया था, बट इस बार मे बी होप हम 7 एथलीट्स जा रहे हैं और मे बी हम 5-6 के आसपास में मेडल सिक्योर करेंगे। इस बार पूरा कॉन्फिडेंस है हमें।
0: जूडो में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल किया। इस बार भी अस्मिता डे, यामिनी मौर्या और आई तखिलबम की मौजूदगी से टीम से बहुत बढ़िया प्रदर्शन की संभावना है, ऐसा खुद अस्मिता डे मान रही हैं।
5: अभी मैं यही माइंडसेट करके जा रही हूँ कि मुझे गोल्ड जीतना है फिर से देश के लिए, अपने देश के लिए एशियन गेम्स में भी, तो इसीलिए मैं अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ। बाकी तो भगवान के ऊपर है, मैं जरूर लेके आऊंगी।
0: भारतीय तैराकों से पदक की उम्मीद से ज्यादा एशियन गेम्स के कड़े पूल्स में टाइमिंग सुधारने और फाइनल में जगह बनाने की कड़ी चुनौती होगी। देखना है इस बार भारतीय तैराक उन उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। वर्चुअल स्पोर्ट्स के दौर में भारतीय ई स्पोर्ट्स टीम ने अब तक एशियन गेम्स में सिर्फ एक कांस्य पदक जीता है, इस बार उससे बेहतर की उम्मीद है। भारतीय ई स्पोर्ट्स के महासचिव लोकेश सूजी कहते हैं कि चारों इवेंट में इस बार हम पदक जीतेंगे।
6: की बार हमारे चार गेम टाइटल्स के लिए हमारे ई स्पोर्ट्स एथलीट जा रहे हैं, टोटल 15। पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारे एक्चुअली चारों के चारों जो टाइटल्स हैं उसमें हमारे मेडल आएंगे।
0: पोकेमॉन यूनाइट में पदक को लेकर आशान्वित हैं टीम के सदस्य अदनान।
7: I have been playing since 5 years. मैं 5 साल में से 4 साल जीता ही हूँ ये गेम में, एंड यस एज एन ऑफिशियल इंडिया को रिप्रेजेंट करना फर्स्ट टाइम है। हम तो गोल्ड का ही ट्राई कर रहे हैं, पूरी कोशिश रहेगी। अभी रिसेंट में एक इवेंट हुआ था उसमें हम लोग सेकंड आए थे एशिया में ही, तो वी आर गोना ट्राई फॉर गोल्ड दिस टाइम।
0: एशियन गेम्स में टेक बॉल का डेब्यू हो रहा है, ये खेल नया है लेकिन भारत का दावा तगड़ा है। इस बात की झलक क्यूमसी डिसूजा के प्रदर्शन से मिल गई है। उन्होंने विमेन्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचकर अपनी पदक की दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने पहले मैच में कंबोडियन प्रतिद्वंदी को हराया, फिर जापान की वर्ल्ड नंबर 7 युइना साकामोतो को हराया। अब वो पदक से सिर्फ एक जीत दूर रह गई है। कल सुबह उनका सेमीफाइनल मैच इंडोनेशिया की

सुमाया से होगा। हालांकि मिक्स डबल्स में अपने साथी अनस इमरान के साथ वियतनामी जोड़ी के हाथों क्वार्टर फाइनल में हार से उनकी चुनौती समाप्त हो गई है। आईचिन अगोया एशियन गेम्स में भारत की तैयारियों और संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात ये कि एशियन गेम्स 2026 में शूटर और ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट मनु भाकर और एशियन गेम्स में शॉटपुट के गोल्ड मेडलिस्ट तेजिंदर पाल सिंह

0: फ्लैग बेरर एक देश के लिए बनना, वो किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना बड़ा एक मौका है, एक गर्व की बात है। और जब इनको, जैसा आपने पूछा कि इन दोनों को चुना गया, ये कितनी अच्छी बात है। मनु क्योंकि जैसा आपने कहा डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्पेशली यंग जनरेशन के बीच, तो मुझे लगता है उसका सिलेक्शन जेंजी को भी बहुत ज्यादा प्रेरित करेगा ये खेल देखने के लिए। और तेजिंदर पाल तूर का तो बहुत बड़ा फॉलोइंग है स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हमें पता है कि हरियाणा पंजाब इस इलाके के जो बच्चे हैं वो खेल में काफी रुचि रखते हैं, शायद इंडिया में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि एक बहुत ही इनकरेजिंग मोमेंट होगा जब वो देखेंगे उनमें से कोई जो है इंडिया का फ्लैग बेरर बनके आईची नगोया में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
1: और इस बार संख्या की बात करें तो भारत का दल छोटा है, लेकिन पदक की जो उम्मीद है वो पिछली बार से ज्यादा की जा रही है, इसकी आखिर क्या वजह है?
0: देखिए, जब एक कंटिंजेंट जाती है हमेशा यही सोच रहता है कि पिछली बार से ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स लेके आएंगे, पर खेल एक ऐसी चीज है जिसमें कहना बहुत मुश्किल है कि पिछली बार से ज्यादा होगा या कम। इस बार जैसा कि आपने कहा कि कंटिंजेंट छोटी है, पिछली बार के मुकाबले ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा एथलीट जो है इस बार हम कम भेज रहे हैं, 501 का टोटल कंटिंजेंट है। तो जब कंटिंजेंट कम होती है हम कभी सोचते हैं कि शायद फिर इसके साथ के मेडल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, नंबर ऑफ मेडल ज्यादा या कम ये कहना मुश्किल होगा, ये जरूर कह सकती हूँ कि जिस तरह का हमारा तैयारी है, जो पिछली बार हमने जीता था उसके आसपास तो हम लोग जरूर लेके आएंगे। अगर आप देखें तो जो एथलीट टू मेडल रेशियो होता है कि कितने एथलीट आपने भेजे और आपके देश ने कितने मेडल्स जीते, वो इस बार जरूर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कि अगर पिछली बार 800 के करीब बच्चों ने मिलके 100 से थोड़े ज्यादा मेडल जीते थे, और इस बार अगर वही नंबर 500 बच्चे ले आते हैं, तो एथलीट टू मेडल रेशियो इस बार हम जरूर कह सकते हैं कि ज्यादा होगा। और उम्मीद तो देखिए यही है कि 100 से थोड़ा ज्यादा, पर मुझे लगता है कि ये नंबर्स कह के एथलीट पे प्रेशर हम क्रिएट ना करें, उनके लिए चीयर करते रहे, चीयर फॉर भारत जैसा हम कहते हैं। मेडल्स ज्यादा जरूर होंगे या उसी के करीब होंगे, बट जो भी होंगे हमारे एथलीट्स उनके 100% देके आएंगे।
1: और भारतीय दल में इस बार 300 से अधिक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहद युवा हैं और पहली बार इतने बड़े मंच पर उतर रहे हैं, इस बारे में सोच क्या रही है?
0: देखिए, ये स्पोर्ट्स फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जब भी हम इंडियन स्पोर्ट के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं तो कोई वही चार गिने चुने नाम आते हैं हर स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में कि बस यही लोग हैं जो शायद मेडल ले आ पाएंगे। बट इस बार जैसा आपने कहा कि 501 में से 310, विच इज लाइक अराउंड 63% ऑफ द टोटल कंटिंजेंट आर गोइंग टू द एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो जा रहे हैं। तो इससे ये दर्शाता है कि हमारा जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो किसी भी एक इवॉल्विंग स्पोर्टिंग नेशन के लिए बेहद जरूरी है, तो इसी कारण से मुझे लगता है कि नए जो युवा, जैसे आप देखिए अनाहत स्क्वाश में हम हमेशा वही रहता है, जोशना चिनप्पा, सौरव घोषाल, यही लोग शायद कुछ कर पाए हमारे लिए, बट इस बार अनाहत का बहुत बड़ा चांस है। हर एक स्पोर्ट में जो टीम्स है वो यंगर होती जा रही हैं, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एज अ कंट्री कि हम सही दिशा में जा रहे
1: जी।
0: हैं।
1: और सरकार ने भी और तमाम खेल संघों ने भी इस बार एशियन गेम्स के लिए खुले हाथ से खर्च किए हैं, और कहें तो खिलाड़ियों पर जो सुविधाएं उनको चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज चाहिए, सब पर बहुत ज्यादा खर्च किया गया है। इस बारे में भी कुछ बताएं आप।
0: देखिए, 2014 के बाद जब 2019 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का लॉन्च हुआ और उसके बाद खेलो इंडिया का लॉन्च हुआ, तभी से लेके सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में जो बजट है वो बढ़ाया ही जा रहा है ताकि टैलेंट को मौका मिले। इस बार का जो खेलो इंडिया का बजट है वो 10 टाइम ज्यादा करके 36,000 करोड़ कर दिया गया है। तो पैसा तो डेफिनेटली खर्चा किया जा रहा है, इस बार का भी जो हमारा बजट है वो 702 करोड़ रुपए है, पर मुझे लगता है कि पैसा खर्चा कर रहे हैं ये तो सही है, पिछले कुछ 10 सालों से कर ही रहे हैं, पर सही जगह पैसा खर्चा करना, जो एथलीट की नीड है वहां पे सपोर्ट देना और सही टाइम पे देना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। CWG में भी किया था, जिसके वजह से आपने मेडल्स का टैली आपने देखा कितना बड़ा। एक एथलीट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तभी उनको समझ में आता है कि दूसरे देशों के एथलीट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में मुझे बताते खुशी है कि

0: जो बजट है वो इस साल का कुछ सिर्फ एशियन गेम्स के लिए कुछ 40 करोड़ रुपए का था। अलग अलग एथलीट्स अलग अलग जगहों में जाके ट्रेन किया, जैसे एथलेटिक्स वाले थे वो यूएसए में बहुत लंबे समय तक रहे, पोलैंड में रहे, स्पाला में। टेनिस के जो बच्चे थे उनको भी हमने भेजा सियोल साउथ कोरिया में। वेटलिफ्टिंग वाले बर्मिंगहम में थे, रेसलिंग रशिया और उज्बेकिस्तान, क्योंकि स्पारिंग पार्टनर वहां पे सबसे ज्यादा बढ़िया मिलता है। शूटिंग वाले इटली में थे। तो इस तरह से बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनली अपने आप को ट्रेन कर रहे थे। और जब हम कहे कि इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे थे, क्या इसका मतलब है कि भारत में ट्रेनिंग अच्छी नहीं है? बात वो नहीं है, बात हमेशा यही होती है कि इंटरनेशनली ट्रेन करते हैं तो हर एक देश के एथलीट के साथ वो मुकाबला करते हैं और वो उनको वो कॉन्फिडेंस देती है कि एक मल्टीनेशनल स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में जाके वो परफॉर्म कर पाए। एथलीट के लिए कोच एक बहुत अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा हम कह सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट, डाइट, फॉरेन एक्सपोजर सब कुछ एक जगह पर, जो कोचिंग है वो अगर उनको सही नहीं मिले फिर चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दे वो उस तरह का टेक्निक वो सीख नहीं पाएंगे, वो
1: जी
0: परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो साइकी कोचेस है, जो इंडियन कोचेस है, वो तो उनको ट्रेन पूरे साल कर ही रहे हैं, पर साथ में हम लोग इस बार 50 से ज्यादा फॉरेन कोचेस लेके आए हैं, जिसमें से मान लीजिए 14 जो है वो एथलेटिक्स में है। कारण उसका यही था कि फॉरेन कोचेस, जस्ट लाइक फॉरेन एक्सपोजर, जब वो लोग जाके इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। फॉरेन कोचेस उनके इंटरनेशनल टेक्निक्स लेके आते हैं और इस तरह से चूज किया जाता है कि जिस देश का जो कोच सबसे अच्छा है इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन उनको हम लेके आते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि फॉरेन कोचेस का एक अहम भूमिका इस बार भी रहेगा।
1: और एक सवाल ये भी तो होता है कि इस बार हमने खिलाड़ियों को वैसी कंडीशंस दी ट्रेनिंग के लिए जैसा कंडीशन हमें आईची नागोया में मिलेगा खिलाड़ियों को अपना खेल प्रदर्शित करने के लिए, और ठहरने के भी कुछ ऐसे इंतजाम किए गए जैसे कंटेनर में और क्रूज में ठहराने की जो व्यवस्था है जापान में, उस पर भी काफी कुछ किया गया।
0: देखिए, एथलीट का जो मेंटल स्टेटस है ना वो हमेशा डिसाइड करती है एथलीट का परफॉर्मेंस, क्योंकि वही बात है कि हम एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर होके तो गए, पर एग्जामिनेशन हॉल में अगर मान लीजिए बहुत गर्मी हो या इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहां पे हम लिख ही नहीं पा रहे हैं पेपर,
1: जी
0: उसी पे हमारा ध्यान चला जाए तो हम शायद परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो एथलीट के लिए भी चीज वही है। हमें पता था बहुत पहले से कि नगोया के कुछ बहुत यूनिक चैलेंजेस रहेंगे। नगोया बहुत ज्यादा कोई बड़ा शहर नहीं है, एक इंडस्ट्रियल हब है, और नगोया के लिए भी इतने सारे एथलीट्स को एक साथ रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उन्होंने पहले ही बोला था कि होटल्स हमारे पास इनाफ नहीं है, तो हम इसलिए जो एथलीट्स है उनको कंटेनर्स में रखेंगे, हट्स में रखेंगे, क्रूजेस में रखेंगे। तो ये जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हमें लगा कि ये बहुत जरूरी है कि एथलीट को भी हम वो ट्रेनिंग दे कि उस सिचुएशन में जाके उनको ये ना लगे कि ये मेरी बेड बहुत छोटी है, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है कंटेनर के अंदर, तो वही सोच सोच के उनका जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ जाए। इसलिए साई बेंगलुरु का जो मेन सेंटर है एथलेटिक्स और बहुत सारे वहां पे प्रशिक्षण होते हैं, पटियाला आप जानते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग और कुछ एथलेटिक्स के भी वहां पे एथलीट्स हैं, ये दो मेन जगहों में हमने कंटेनर्स बनाए जो एकदम उसी स्पेसिफिकेशन का था जो उनको जापान में मिलेगा। तो बेड्स थोड़ी छोटी थी, चलने फिरने का जगह थोड़ा छोटा था, पर हमने उनको इस तरह से ट्रेन किया ताकि उनको उन्हीं कंटेनर्स में उनको रखा गया, वही वो लोग सोते थे, वही वो लोग जो अपना है उठ के जो थोड़ा सा वार्म अप करना होता है कभी, तो वो सब वो लोग वहां पे करते थे ताकि वहां पहुंच के उनको नहीं लगे कि अरे ये हम कहां आ गए।
1: हेमिका, स्टूडियो में आने के लिए, आकाशवाणी से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: एशियन गेम्स में पदकों की जद्दोजहद में आगे निकलने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। औपचारिक उद्घाटन में सिर्फ कुछ घंटे बाकी रह गए हैं, फिर मेडल टेबल में देशों और खिलाड़ियों के नाम दर्ज होने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है पदकों की सूची में भारत का नाम भी शीर्ष देशों में शुमार होगा। एशियाई खेलों पर विशेष कार्यक्रम के साथ कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज, स्वाति और मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं रोजगार समाचार, तत्पश्चात गौरव गान।

पहले सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अंतर्गत पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम द्वारा योग्य भारतीय नागरिकों से पायलट ऑफिसर के एक पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 2,50,000 रुपये प्रति माह का कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा। पायलट ऑफिसर पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का अपना रिज्यूम 20 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक जमा कराना होगा। रिज्यूम चीफ पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड श्री विजयपुरम 744101 के पते पर भेजना होगा। अभ्यर्थी अपना रिज्यूम ad.pmb@and.nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कार्यालय में शैक्षणिक योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों का वेरिफिकेशन 1 सितंबर 2026 से सभी कार्य दिवसों में दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक किया जाएगा। शनिवार और रविवार को वेरिफिकेशन नहीं होगा। इस पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता अनुभव आयु सीमा तथा अन्य पात्रता मानदंड विस्तृत जानकारी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के आधिकारिक वेबसाइट के vacancy/announcement सेक्शन में उपलब्ध है। वैकेंसी नोटिस से प्राप्त की जा सकती है। और अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली द्वारा प्रतिनियुक्ति डेपुटेशन के आधार पर योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भर्ती के अंतर्गत ग्रुप ए के 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सलाहकार संचार के एक एक पद रिक्त है। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी तथा सहायक सलाहकार संचार पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर 11 के अनुसार होगा। नियुक्ति राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नई दिल्ली में की जाएगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, रक्षा बल अथवा अन्य सरकारी विभाग के समकक्ष पद पर नियमित रूप से कार्यरत हो अथवा वेतन स्तर 9 में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। सहायक सलाहकार सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी अथवा दूरसंचार में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता तथा सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। वही सहायक सलाहकार संचार पद के लिए उपरोक्त विषयों में स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता के साथ रक्षा बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, पुलिस वायरलेस एवं संचार अथवा दूर संचार परियोजनाओं के संचालन में 5 वर्ष का अनुभव अपेक्षित है। दोनों पदों के लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन, आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अवर सचिव प्रशासन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण A1 सफदरजंग एनक्लेव नई दिल्ली 110029 के पते पर भेज सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इसी विज्ञापन के संदर्भ में पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है। और अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी 1 अगस्त 2026 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर देख सकते हैं। और इसी के साथ

अभी आप गौरव गान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब अगला प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और STT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी भंडारण सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन की। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में निरंतर सहयोग और समन्वय की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति नाहयान ने भारत की सफल ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस परिणाम प्राप्त करने में UAE के सहयोग और साझेदारी की सराहना की। श्री नहयान ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने सऊदी अरब की संप्रभु क्षेत्रीय सीमा में हुए हमलों की निंदा की है। श्री जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा कमजोर करते हैं और बाब अल मंदब जल डमरू मध्य से आवागमन की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान नौसेना के एक पोत और भारतीय युद्धपोत INS कोलकाता के बीच हुई टक्कर के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस मामले में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के दावों को खारिज करता है।
1: हमने अपने द्वारा दर्ज कराए गए विरोध पर पाकिस्तान का जवाब देखा है। हमने वे लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। पाकिस्तान पक्ष को एक बार फिर से यह सलाह दी गई है कि किसी भी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए उनके सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतने और दोनों पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करने की जरूरत है। इस घटना में INS कोलकाता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने नेपाल में हाल में आई बाढ़ में जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक की है। दोनों नेताओं ने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक समझौते को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई सवाल पूछे। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात।

0: आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना को हल्के लड़ाकू विमान तेजस और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 प्रशिक्षण विमान सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह में उपस्थित थे। इस अवसर पर HAL ने भारतीय वायुसेना को पवन हंस लिमिटेड को 4 ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर भी सौंपे। HAL ने भारतीय वायुसेना को पहला STT-40 प्रशिक्षण विमान भी सौंपा। रक्षा मंत्री ने इस विमान का नाम अंकुर रखा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज देश ने 3 प्रमुख उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: आज हम एक साथ 3 इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के साक्षी बने हैं। पहला, इंडिजनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर को DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन प्रदान कर हैंड ओवर किया गया है। दूसरा, LCA फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस यानी FOC ट्रेनर के अंतिम बैच को इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है। और तीसरा, 40 बेसिक ट्रेनर सीरीज प्रोडक्शन का पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया है।
1: निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंदी गुटों को अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए हैं। इससे ममता बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुटों को नए नामों से उपचुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। अरूप रॉय के नेतृत्व वाले गुट का नाम लोकतांत्रिक तृणमूल कांग्रेस और चुनाव चिन्ह लिफाफा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का नाम ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फुटबॉल खिलाड़ी चुनाव चिन्ह है। दोनों गुट अब अगले महीने की 6 तारीख को नंदीग्राम और रेजी नगर में होने वाले उपचुनाव अपने नए नामों और चिन्हों के साथ लड़ सकेंगे। त्रिपुरा राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की मसौदा सूची जारी कर दी है। इस सूची में 784 मतदान केंद्र हैं। मतदान केंद्रों की अंतिम सूची 25 सितंबर को प्रकाशित होगी। सरकार ने बड़े उपभोक्ताओं के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। ये छूट इस शर्त पर दी गई है कि मौजूदा 15 दिन की सीमा से अधिक चीनी की मात्रा केवल अग्रिम प्राधिकरण योजना और टैरिफ दर कोटा के अंतर्गत आयातित चीनी से ही प्राप्त की जानी चाहिए। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि खुले बाजार से चीनी की खरीद के लिए भंडारण सीमा केवल 15 दिन की खपत तक ही सीमित रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत ने 10 वर्ष में 85,000 सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि 4 वर्ष में 70,000 इंजीनियरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया में एक ही देश की लगभग 30 कंपनियां विभिन्न पवेलियनों में भाग ले रही हैं।
3: वेरी गुड रिस्पॉन्स,
4: काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। गोलमेज बैठकों में कई देशों ने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भाग लिया है। जापान और सिंगापुर के पवेलियन में 30 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। दक्षिण कोरिया और कई यूरोपीय देशों की कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। इनमें नीदरलैंड और स्वीडन प्रमुख हैं। इससे आगे की संभावनाएं काफी अच्छी नजर आ रही हैं।
5: लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड जर्नी अहेड।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों के जीवन को बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
6: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया। इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। शासी परिषद प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाती है। स्टेट सपोर्ट मिशन के तहत नीति आयोग की टीमें राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है। वहीं आकांक्षी जिला कार्यक्रम मापे गए परिणामों के आधार

0: पर जिलों की रैंकिंग करता है और इन परिणामों को सार्वजनिक करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं, नीतियों को लागू करने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और केंद्र राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीतिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे। अब ये थिंक टैंक की तरह काम करता है।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। मजबूत राज्य अब मजबूत राष्ट्र की स्पष्ट नींव बन चुके हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने आज पठानकोट जिले से राज्यव्यापी नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने माधोपुर से यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का समापन 30 सितंबर को जलंधर में होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने छात्र संघ चुनाव के दौरान लिंगदो समिति की सिफारिशों के बार बार उल्लंघन को देखते हुए ये निर्देश दिए। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हो गया, मतगणना कल होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी एनटीए की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में आज एक मस्जिद के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई। घटना में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार घटना स्थल पर बचाव कार्य चल रहा है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि यह संशोधन पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती दर्शाता है। एशियाई खेलों की महिला क्रिकेट स्पर्धा में आज भारतीय टीम ने जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। सलामी बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने हरफनमौला प्रदर्शन और स्पिनर श्री चरणी की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने जापान को 8 विकेट से हराया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों से सेंसेक्स में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में 20 अंक की गिरावट देखी गई और ये 74,295 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 76 अंक की बढ़त के साथ 23,346 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे बढ़कर 95.88 रुपए पर बंद हुआ।
3: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में कल तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। भारत ने लाल सागर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की, सऊदी अरब पर हमले की निंदा की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 2 सीट वाला तेजस और HTT-40 प्रशिक्षण विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग अलग नाम और चुनावी चिन्ह आवंटित किए। और एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम जापान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।

0: Fez.
1: This is Akashvani. In the weekly program,

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं।

नमस्कार दोस्तों, संदेश आते हैं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं और अपने मनचाहे गीतों को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से हमें गीत के बोल, फिल्म का नाम और अपना नाम व पता लिखकर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000। अब फरमाइशों के सफ़र पर चलते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे भेजा है टुगापुर मायबंदर से दीपिका, रितेश और रोहेल ने। इनकी पसंद पर सुनते हैं अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत।

अब सुनिए बरगद लाइन श्री विजयपुरम से पूनम, पिंकी, समीर और रजत की फरमाइश पर तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत।

गोविंद नगर, स्वराज द्वीप से अमित, उर्मिला, मनोज, मनीषा, अनीता और बॉबी की पसंद पर अगला गीत सुनते हैं, फूल और अंगार फिल्म से।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। जनसेवाओं को चेतावनी में कहा जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के एक दो स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और कहीं कहीं पर गरज के साथ बिजली चमकने की आशंका है। जबकि मछुआरों को विशेष चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के समुद्री क्षेत्रों में हवा की गति 40 से 50

50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिसके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। अतः मछुआरों को 22 सितंबर तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:32 और 1 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:25 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: आप 14 सेकंड हुए हैं।
1: माइक वन, माइक टू। इस समय सवेरे की 4:55 और 22 सेकंड हुए हैं। 1, 2, 3, 4।

माइक वन, टाइम इज 4:59, 21 सेकेंड, 22, 23, 24, 25. माइक टू 4:59, 35 सेकेंड, 36, 37, 38, 39, 40.

रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। हमारे सभी कंट्रोल रूम इस समय ऑपरेशन में है, सभी थाने से हम संपर्क में है और किसी भी तरह की कोई भी घटना पर नजर हमारी बनी हुई है। जो टूरिस्ट इस समय पोटले में है या जो हैवलॉक और नील में है उनके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। तो मैं सभी को फिर से

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:28 व 34 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: अनमोल विचार।
1: किसी ने क्या खूब कहा है, दूसरों की कमियां खोजने से पहले अपने भीतर झांकना सीखिए। आत्म परीक्षण हमें अपनी गलतियों